FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई 2026। इस समय सुबह के 8:54 और 35 सेकंड हुए हैं। आज की हमारी प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण विवरण। अब से ठीक बाद यानी 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। हिंदी में प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन दोपहर 1 बजे और शाम 6:30 पर भी होंगे और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे 6:45 पर। राष्ट्रीय हिंदी समाचार होंगे शाम 6 बजे और समाचार संध्या 8:45 पर। फिल्म संगीत आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं सुबह 10 बजे। उसके बाद 10 बजे के कार्यक्रम में होंगे गाने पुराने जमाने के और 10:30 पर फिल्म संगीत में आप सुनेंगे गाने नए तराने नए। इसके अलावा फिल्म संगीत होगा शाम 6:05 पर, 7:30 पर और रात 9 बजे फिल्म संगीत में होगा दर्द भरे गीत। युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी शाम 5 बजे और महिलाओं का कार्यक्रम पणिहारी 5:30 पर होगा। राजस्थानी लोक गीतों का कार्यक्रम माटी के स्वर शाम 6:20 पर और लोक संगीत का कार्यक्रम चिरमी 8:30 पर होगा। खेती बाड़ी शाम 7 बजे। हिंदी फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश आप सुन सकेंगे 8 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम ग्राम पांचला सिद्धा में आयोजित नशा मुक्ति शिविर की रेडियो रिपोर्ट आप हमारे केंद्र से सुनेंगे शाम 4:30 पर, जिसके प्रायोजक हैं श्री देव जसनाथ ट्रस्ट श्री जसनाथ आसन पांचला सिद्धा खींवसर। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। सुबह के 9 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में प्रगणक आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और गणना करेंगे। स्वगणना में राज्य के 15 लाख परिवारों ने अपनी सूचनाएं दर्ज की। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस आज, जन जागरूकता के साथ ही मच्छरों के नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं।

0: समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में कल नीदरलैंड्स पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात से नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उन्होंने आबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: नीदरलैंड्स के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल राज उन्नति की बैठक में 33,039 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने प्रोजेक्ट्स को तय टाइमलाइन के अनुसार पूरा करने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को अपने जिले की पीने के पानी से जुड़ी शिकायतों को तत्परता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि राष्ट्र हित में ईंधन की बचत और ऊर्जा संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके लिए परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर जल्द ई बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए संबंधित शहरों में डिपो और चार्जिंग स्टेशन बनाने के काम को पूरा किया जाए। बैठक में बताया गया कि शहरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार के लिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा सहित अन्य प्रमुख शहरों में ई बसें चलाई जाएंगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद जयपुर में इस महीने होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को स्थगित कर दिया गया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एनटीए ने पिछले 24 घंटों में देश भर में अनेक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मामले में अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से एसआई भर्ती 2021 परीक्षा 20 सितंबर को दोबारा होने जा रही है। इसके लिए अभ्यर्थी आज से 30 मई तक आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पते को अपडेट कर सकेंगे। गौरतलब है कि इस परीक्षा में वही 3,83,097 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे जो पहले दोनों प्रश्न पत्रों में शामिल हुए थे। नए आवेदकों को इस परीक्षा में अवसर नहीं दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में आज से प्रगणक घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। 14 जून तक चलने वाले इस चरण में मकानों का सूचीकरण और गणना की जाएगी। प्रगणक मकान की निर्माण सामग्री और सुविधाओं को लेकर 33 सवाल पूछेंगे। आर्थिक और सांख्यिकी निदेशक विनेश सिंघवी ने बताया कि प्रदेश में 1 मई से शुरू हुआ स्वयं गणना का काम कल पूरा हुआ। इसमें राज्य के लगभग 15 लाख परिवार

0: उन्हें खुद अपनी सूचनाएं दर्ज कराने के विकल्प का उपयोग किया है। आज शनि जयंती है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा, अभिषेक, हवन और भजन कीर्तन के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस मौके पर 12 जिले के सीताबाड़ी में मेला भर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मेला सहरिया जनजाति का लघु कुंभ कहा जाता है।
1: आदिवासी लघु कुंभ के नाम से प्रसिद्ध सीताबाड़ी के धार्मिक मेले का शुभारंभ आज होगा। ये मेला सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसे सहरिया जनजाति का लघु कुंभ कहा जाता है। ये मेला ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित होता है और पौराणिक मान्यता के अनुसार ये वही पवित्र स्थान है जहाँ माता सीता ने निर्वासन के दौरान वाल्मीकि आश्रम में निवास किया था। ये मेला रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ 7 पवित्र कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूरज कुंड आदि है, जिनमें ज्येष्ठ अमावस्या को स्नान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है जहां लवकुश का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यहां समुदाय अपनी परंपराओं का जश्न मनाता है और उनके पारिवारिक विवाह भी होते हैं। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12।
0: आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। इसका उद्देश्य मॉनसून से पहले डेंगू रोग के प्रति लोगों को जागरूक करना और मच्छरों के नियंत्रण के प्रयास करना है। ये बीमारी एडीज मच्छर के काटने से होता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए मच्छरों के नियंत्रण के विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सौरभ जैन ने बताया कि समय पर पहचान और इलाज नहीं मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
2: विश्व डेंगू दिवस पर आप सभी से अपील है कि डेंगू से बचाव के लिए सजग रहें, अपने घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें, कूलर, गमले और टंकियों की नियमित सफाई करें, पूरी बांह के कपड़े पहने और मच्छरदानी या रिपेलेंट का उपयोग करें। याद रखें, डेंगू का इलाज नहीं, बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। आइए मिलकर स्वच्छता अपनाएं और डेंगू मुक्त समाज बनाएं।
0: राज्य में कल से तापमान में बढ़ोतरी और हीट वेव का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। पिछले 2-3 दिन से कई हिस्सों में जारी आंधी बारिश से पारे में 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। गर्मी के कल से फिर जोर पकड़ने के आसार हैं। इस बीच कल फलौदी और चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया। अन्य स्थानों पर पारा सामान्य के आसपास या उससे नीचे रिकॉर्ड हुआ। वहीं जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग तथा शेखावटी अंचल में कहीं कहीं तेज रफ्तार हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। आईपीएल क्रिकेट में मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रात चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। 38 गेंद में 90 रन की पारी खेलने के लिए मिशेल मार्श को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में प्रगणक आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और गणना करेंगे। स्वगणना में राज्य के 15 लाख परिवारों ने अपनी सूचनाएं दर्ज की। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस आज, जन जागरूकता के साथ ही मच्छरों के नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस।

श्री राम के हाथों जब पल भर में शिवजी का धनुष टूट गया तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्गलोक में सुयश फैल गया कि श्री राम ने शिव का धनुष भंग करके सीता का वरण कर लिया है। देवलोक भी नृत्य गीत के स्वर से झंकृत होने लगे। सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता से ऐसा करते नहीं बनता। उन्हें गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का स्मरण हो आया और वो मानो भयभीत हो गईं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री राम मन ही मन मुस्काने लगे, किंतु उपस्थित राजाओं में से अनेक ईर्ष्या द्वेष से जल उठे। किसी ने कहा कि दोनों कुमारों को बांधकर सीता को छीन लो, हमारे जीते जी सीता को अन्य कैसे ब्याह सकता है। किंतु वास्तविकता तो ये थी कि वे गाल बजा रहे थे। उनका बल, प्रताप, वीरता, तेज सभी तो धनुष भंग होते ही लुप्त हो गए थे। उनकी ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो उनके चेहरों पर कालिक पुत गई। राजाओं के दुर्वचन सुनकर लक्ष्मण के नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय धनुष भंग का निनाद सुनकर क्रोधी परशुराम वहां आ पहुंचे।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब सुनते हैं कार्यक्रम वंदना। शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह की इस भक्ति रचना से।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: वंदना कार्यक्रम में अब सुनते हैं नरेंद्र चंचल को।

0: आकाशवाणी नागौर के सिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 01582401168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
1: वंदना कार्यक्रम में फिर से एक बार सुनते हैं नरेंद्र चंचल को।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना एफएमएंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब सुनते हैं साजों पर धुन। इस कार्यक्रम में हम फिल्मी गीतों के केवल धुन सुनते हैं और आप उसके साथ गुनगुनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आवारगी के इस धुन के साथ।

अगला म्यूजिक जो हम आपको सुना रहे हैं वो आप पर छोड़ रहे हैं कि आप इसके साथ गुनगुनाइए और पता लगाइए कि हमने इसे किस फिल्म से लिया है, और बाद में हम आपको बताएंगे कि आप सही थे या गलत।

साजों पर धुन कार्यक्रम में हम सुन रहे हैं कुछ फिल्मी गीतों के धुन और आप भी साथ साथ गुनगुना रहे हैं। तो अब सीआईडी फिल्म के इस गीत के साथ भी आप गुनगुनाइए। बहुत सुंदर सा गीत आपके लिए भेज रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे साजों पर धुन, FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब सुनते हैं फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के। शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर के गाए इस गीत से। फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अब सुनते हैं मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है दिल दे के देखो।

0: आर्थिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: अब सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों को फिल्म मिली में।

0: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।
1: कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत फिल्म मोम की गुड़िया में लता मंगेशकर और आनंद बख्शी को सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने ज़माने के, FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब सुनते हैं गाने नए तराने नए। आज पहला गीत मोहब्बतें फिल्म से।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कभी खुशी कभी गम फिल्म में अब सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति, सुब्रमण्यम, अलका याग्निक, अमित कुमार, उदित नारायण और सोनू निगम को।

अभी आप सुन रहे हैं गाने नए तराने नए, अपने साथ ही आनंद पुरोहित के साथ। अगला गीत हमने लिया है फिल्म कल हो ना हो से, सोनू निगम और उदित नारायण की आवाजें हैं।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: अभी आप सुन रहे थे गाने नए तराने नए एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

देश में निकला होगा चांद और मधुर मन में गीत गाता होगा। सुनते हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में भरत व्यास का लिखा ये गीत। संगीत रमेश नायडू का है।

आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटनी शो। मैटनी शो में आज बातें और गाने उन फिल्मों के जो अपनी रिलीज के बरस के मुताबिक आज उम्र के खास पायदान पर जा पहुंची हैं, यानी साल 2026 में या तो पहुंच चुकी हैं या पहुंच जाएंगी। रिलीज से अब तक 25 बरस या 50 बरस का सफर पूरा कर चुकी हैं या कि आने वाले महीनों में पूरा कर लेंगी ये फिल्में। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म लगान की। साल 2001 में रिलीज हुई ऐतिहासिक खेल ड्रामा फिल्म लगान, निर्माता आमिर खान और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर। इस फिल्म की पृष्ठभूमि थी ब्रिटिश शासनकाल, जिसमें एक छोटे से गांव के लोग करों के बोझ से दबे हैं और उस पर सूखा पड़ जाता है। ऐसे में एक घमंडी ब्रिटिश अधिकारी उनके सामने क्रिकेट खेलने की शर्त रखता है। गांव वालों के लिए ये बिल्कुल नया खेल है, उन्हें क्रिकेट सीखना भी होगा और जीत के लिए खेलना भी होगा। फिल्म की कहानी आशुतोष गोवारिकर ने लिखी थी और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी आमिर खान और ग्रेसी सिंह ने। चुनौतीपूर्ण कहानी को फिल्म का रूप देने में कई चुनौतियां आईं और आखिरकार ये फिल्म 15 जून 2000 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई। देखते ही देखते साल 2001 की सफलतम फिल्मों में शुमार होने लगा फिल्म लगान का और जल्द ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक खास मुकाम बनाया इस फिल्म ने। साथ ही मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे के बाद एकेडमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की कैटेगरी में नामांकित होने वाली फिल्म भी ये बन गई। गीत संगीत बहुत मधुर था, चलिए इस गीत की एक झलक सुनते हैं।

मायूसी के वक्त में करुण पुकार बनकर ऊपर वाले को पुकारने वाली ये प्रार्थना वाकई बहुत हिट हुई और साथ ही फिल्म लगान भी आज भी प्रासंगिक है और इसके गीत तो और भी धूम मचाते रहे हैं। फिल्म का संगीत दिया था AR रहमान ने, तो आइए अब सुनते हैं ये गाना।

उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह और श्रीनिवास की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा यह गीत आपने सुना और हमने जैसा कि बताया था एआर रहमान का संगीत था इस फिल्म में। और अब अगर हम बात करें तो बात हो रही है उस फिल्म की जो जून में ही रिलीज हुई थी, 15 जून 2001 को, और काफ़ी हिट हुई थी। ये फिल्म थी गदर। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित यह फिल्म शक्तिमान तलवार की कहानी पर आधारित थी, जिसमें ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा का ताना बाना बुना गया था। 1947 की पृष्ठभूमि में घटित होती घटनाओं के बीच तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी कैसे परवान चढ़ती है और कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचती है, यही इस फिल्म में दिखाया गया था। मुख्य भूमिकाएं निभाई थी सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, विवेक शौक, लिलिट दुबे और उत्कर्ष शर्मा ने। 25 बरस पहले रिलीज हुई ये फिल्म, इसके संवाद आज भी लोगों की जुबान पर हैं और साथ ही इसके गीत भी अक्सर गुनगुनाए जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

और ये जो गाना आपने सुना गदर फिल्म का, उदित नारायण, अलका याग्निक और निहार की आवाजों में था, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत था और उत्तम सिंह का संगीत था। 2001 से अब चलते हैं 1976 की ओर। फिल्म चरस, एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे निर्माता निर्देशक रामानंद सागर ने बनाया था। फिल्म में धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जोड़ी का जादू सिर चढ़कर बोला और साथ में नजर आए अजीत, अमजद खान, अरुणा ईरानी और असरानी। नशे की तस्करी के काले पहलू को दर्शाती हुई ये फिल्म बहुत हिट रही और इसका संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनते हैं ये गाना।

ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, आनंद बख्शी की आवाज शुरू में गीत के आपको सुनाई दी होगी। और आनंद बख्शी का ही लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत था। 1976 की फिल्मों की बात हो रही है तो कई फिल्में इस साल रिलीज हुई थी, नागिन, लाला मजनू, कभी कभी, 10 नंबरी, हेरा फेरी, चरस की तो हमने बात की अभी, फकीर।

हीरा कालीचरण माँ दो अनजाने नहले पे दहला शंकर दादा बारूद चिच्चोर छोटी सी बात ये सभी फिल्में काफी हिट रही थी। हालांकि फिल्में तो बहुत सारी रिलीज हुई थी लेकिन हम उन फिल्मों की बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी भीड़ बटोरी थी। अब बात कर रहे हैं फिल्म बारूद की जो 2 अप्रैल 1976 को रिलीज हुई थी। बारूद फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे अशोक कुमार ऋषि कपूर शोमानंद अजीत और रीना रॉय और इस फिल्म का संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

बारूद फिल्म का ये गाना बना आज के मैटिनी शो की आखिरी पेशकश। अब इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लोग पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। प्रवासी भारतीयों ने भोजपुरी गीत से प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदायों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना जताई है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गोसीफे की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आमने सामने फिल्म के इस गीत से। मोहम्मद रफी की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

आनंद बख्श का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ अगला गाना मस्ताना फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं।

शोर मचाते मनमोर के अंदर एक सवाल। आसरा फिल्म का ये गाना लेकर आ रहा है लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

यादों की महफिल प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ उपहार फिल्म का गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आए दिन बहार के फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, बोल आनंद बख्शी के थे, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब इसी जोड़ी का एक और गीत सुनवा रहे हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में।

किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में आपने सुना फिल्म राजपूत का ये गाना, और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहंदी अली खान के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

यादों के महफिल कार्यक्रम में चलते चलते राजा जानी फिल्म का ये गाना सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, बोल आनंद बख्शी के, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: इस गीत के साथ ही अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। दोपहर के 1 बजने को है, कुछ ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे। विभिन्न आयु वर्ग, क्षेत्रों और धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय समुदाय के सदस्य पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी समुदाय की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में आज से प्रगणक घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। 14 जून तक चलने वाले इस चरण में मकानों का सूचीकरण और गणना की जाएगी। प्रगणक मकान की निर्माण सामग्री और सुविधाओं को लेकर 33 सवाल कर रहे हैं। उधर झुंझुनू में आज विधायक राजेंद्र भांबू ने जनगणना टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री भांबू ने कहा कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का काम है। पहले चरण की जनगणना का मूल निवास से कोई संबंध नहीं है। जहां लोग वर्तमान में रह रहे हैं उन्हें वहीं पर जनगणना में शामिल होना चाहिए। उन्होंने लोगों से प्रगणकों का सहयोग करने की अपील की। इस बीच प्रदेश में 1 मई से शुरू हुआ स्वयं गणना का काम कल पूरा हुआ। इसमें राज्य के लगभग 15 लाख परिवारों ने खुद अपनी सूचनाएं दर्ज कराने के विकल्प का उपयोग किया है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से इस बीमारी की रोकथाम के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए जागरूकता बढ़ाना और स्वच्छ तथा सुरक्षित वातावरण बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण और चिकित्सा सुविधाओं के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूती से जारी रखे हुए है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्वच्छता, सतर्कता और समय पर इलाज को डेंगू से बचाव के प्रभावी उपाय बताया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वस्थ और स्वच्छ राजस्थान के निर्माण में सहभागिता निभाने का आग्रह किया है। हनुमानगढ़ जिले के खेतों में फिर से सफेद सोना यानी नरमा की फसल लहलहाएगी। कृषि विभाग ने सीजन के लिए 1,85,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नरमा बुवाई का लक्ष्य तय किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 65,000 हेक्टेयर अधिक है। पिछली बार गुलाबी सूंडी कीट के प्रकोप से फसल को हुए नुकसान को देखते हुए इस बार प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत 19 प्रमाणित कंपनियों के बीटी कॉटन बीजों को ही मान्यता दी गई है। और अब मौसम। राज्य में अगले 1-2 दिनों में गर्मी दोबारा से प्रचंड रूप ले सकती है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। इससे हीट वेव का असर फिर देखने को मिल सकता है। वहीं पिछले 2-3 दिन

लखनऊ से कई स्थानों पर जारी आंधी बारिश की गतिविधियों से लोगों को हीट वेव से राहत मिली है। कई शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ, जो सामान्य से कम है। हालांकि उमस और गर्मी का असर बना हुआ है। उधर फलौदी और चित्तौड़गढ़ में कल अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार मापा गया। उदयपुर और कोटा में दिन भर गर्म हवाओं का असर बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज 6 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट बताया गया है। राजधानी जयपुर में भी बादल छाए रहने और अंधड़ की संभावना है। आज शनि जयंती है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा, अभिषेक, हवन और भजन कीर्तन के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस मौके पर 12 जिले के सीताबाड़ी में मेला भर रहा है। ये मेला सहरिया जनजाति का लघु कुंभ कहा जाता है। वहीं अनेक महिलाएं वट सावित्री का व्रत कर रही हैं। इस अवसर पर वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं को लेकर एक नोटिस जारी किया है। इसमें सीबीएसई ने कहा है कि अपने नतीजों से संतुष्ट नहीं होने वाले छात्र छात्राओं को दो चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का फायदा ले सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
1: FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। फिर से सुनते हैं विविध भारती केंद्र मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम।
2: रोशनी एक उपहार है, अगर ये ना हो तो जीवन कैसा हो जाए। और बाकी सब तो परीक्षा है। ये डर, ये मंजिल तक पहुंचने की सुगबुगाहट, रोशनी को जीवन से जोड़ने का हुनर सीखिए। कभी कभी ये रिश्तों को संजीवनी देने का भी काम करती हैं। क्या बात कही। तो अब कार्यक्रम का ये गाना बताइए, किनके स्वरों में ये गाना है।

0: ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम।
1: बहुत खूब जवाब आ गया। परिणय फिल्म का गाना, जयदेव का संगीत और शर्मा बंधु की आवाजें थी ये इस कार्यक्रम में। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, धूप ज्यादा है, गर्मी बहुत है, मगर काम तो करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे बॉर्डर पर हमारे सैनिक हमारी और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जैसे हमारे किसान हमारे लिए खेतों में अनाज उगाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और हमें खाना मिले इसलिए किचन में हमारी माँ बहन बेटी और पत्नी इतनी गर्मी में खाना पकाती है। वाकई गर्मी तो बहुत है। अब सवाल के जवाब की बारी है। हमने पूछा था कि बिजली के आविष्कार के पहले दिए के अलावा कुछ चीजें और भी जलती थीं, और कई चीजों के नाम हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। एक श्रोता कह रहे हैं मिट्टी के तेल पर चलने वाला कंदील, एक साथी ने लिखा है डिबरी जलती थी, लालटेन की रोशनी एक साथी का जवाब है, और एक और श्रोता ने बताया कि लालटेन, और लालटेन के पहले थी चिमनी कांच की बोतल में थोड़ा सा घास लेट भरकर एक नाड़ी की बत्ती बनाकर जलाते थे, सुबह उठते थे तो उसका धुआं हमारी नाक पर जम जाता था, इसे ही शायद डिबरी कहते हैं, है ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जब बिजली नहीं थी तब विकल्प में लालटेन, पेट्रोमैक्स और मशाल से रोशन किया जाता था। भाई ये तो बात है ही है कि कई बार जब हमें वो पुरानी चीजें याद आती हैं, लालटेन जलाने में जो मशक्कत करनी पड़ती थी, कई बार बत्ती चली जाने के बाद, जब बिजली चली जाती थी उसके बाद जब लालटेन जलाई जाती थी तो उसका भी एक अलग ही अनुभव होता था। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है? एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की गर्मी को शीतल चांदी ठंडा कर सकता है, वैसे ही जीवन में ऐसे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाने में धन्यता मानते हैं उन्हें शांत और संयमित रहकर शांत कर देना चाहिए। संदेशों की बात करें तो एक और संदेश है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ धूप या रोशनी जीवन के अनुभवों और संघर्षों का भी प्रतीक है जो इंसान को

उभारती है। रोशनी हमें स्पष्टता देती है, जैसे भौतिक रोशनी में हमें चीजें साफ दिखाई देती हैं। वैसे ही ज्ञान की रोशनी हमें सही और गलत में अंतर करने और जीवन के सही फैसले लेने में समझ देती है। एक बड़ा सा संदेश है, काफी सारगर्भित बातें लिखी हैं, हम समय की कमी के चलते थोड़ा छोटा करके पढ़ेंगे। ये अंधेरे और उजाले का क्रम अपने जीवन के सुख दुख के समान ही लगता है, उनके बीच भेद केवल सामयिक के साथ ही अनुभूति परक ही है। दूसरे महत्वपूर्ण भेद जो नजर आते हैं वो ये है कि एक अंधेरे को दूर करने के लिए हमें दीपक जलाने जैसे प्रयास स्वयं करने पड़ते हैं, दूसरे में स्वस्थ प्रकृति से स्वस्थ ऋतु चक्र के चलते सामयिक षड ऋतुओं का चक्र सतत चलता रहता है। आगे लिखते हैं ये कि जब हम ही अपने अज्ञान परक अंधेरे को दूर करने के प्रयास की तरह ही पर्यावरण को प्रदूषित करते रहने का कार्य संपादित करते रहते हैं, फिर भीषण गर्मी जैसे ग्लोबल वार्मिंग का सामना भी तो हमें ही करना पड़ेगा। भाई, कृत्रिम दीपक जलाकर उजाले रूपी आनंद लेने के क्रम में भी तो हम ही हैं। अपने वैदिक संस्कृति में तो सायंकाल में ही शयन और उषा काल में ही चारपाई छोड़ देने का विधान है। आगे लिखते हैं कि हम अपने ही पोषक स्वस्थ प्रकृति को अस्वस्थ करते रहने के ही प्रयासों में ही हैं। ऐसे में स्वयं की अज्ञानता से जनित ग्लोबल वार्मिंग के दंश को झेलते रहने में गुरेज कैसा। वाकई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी अपनी बात के साथ साथ वो शब्द भी लिखे हैं जिनसे गाने हो सकते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की तरह तो सब चमकना चाहते हैं पर उसकी तरह जलना किसी के बस की बात नहीं। सुबह सुबह निकलता सूरज किरणों को फैलाता है, जब किरणें धरती पर पड़ती सारा जग खिल जाता है, चिड़िया चहकती, कलियां महकती, फूल भी खिल जाता है, आसमान पे नीला बादल अपना रंग दिखाता है। तो चलिए जरा ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। और हाँ, ये बताइए कि क्या लालटेन जलाई है आपने कभी।

बहुत बहुत शुक्रिया, एकदम सही जवाब आया। हमराज फिल्म का ये गाना सुनील दत्त साहब का नाम भी लिखा है हमारे कुछ साथियों ने। महेंद्र कपूर की आवाज, साहिर के बोल, रवि का संगीत। और बात कर रहे हैं हमारे साथी कांच से निर्मित लैंप, जिस पर कांच का ही कवर होता था फ्लेम को हवा से बचाने के लिए। इसके अतिरिक्त पेट्रोमैक्स लैंप भी चलते थे बचपन में हमारे घर में। एक और श्रोता ने कहा है, जब बिजली नहीं थी तब अंधेरी रात में लालटेन काम आता था। मैंने छुट्टियों में दूर गांव ननिहाल में लालटेन के उजाले में दिन गुजारे हैं। इसके अलावा पड़ती, समई, चिमड़ी, दिवटी, पलिता, मशाल, दीपमाल, मोमबत्ती, ये भी साधन प्रकाश देते हैं। क्या बात है। एक और श्रोता बता रही हैं कि लालटेन और केरोसिन के पहले महुआ के फल से तेल निकालकर घरों में उसी को जलाया जाता था। और याद किया है एक श्रोता ने उस जमाने को, जब कोई शादी या ऐसे कोई प्रसंग होते थे तो पेट्रोमैक्स चलाकर रोशनी की जाती थी। शीशे वाले लैंप की याद दिलाई है हमारी एक श्रोता ने। और एक और श्रोता बता रही हैं कि जी जलाई है और उसका शीशा भी साफ किया है। इन्होंने लालटेन की बात कही है। और कितने शीशे तोड़े और डांट खाई पापा की। फिल्म हमराज का नाम भी इन्होंने पहचान लिया। एक और श्रोता ने कहा है कि गांव में पोस्टिंग के दौरान नियमित शाम को बिजली कटौती होती थी, तब हम लालटेन ही चलाते थे। शाम होते ही उसे साफ करके तैयार कर लेते थे। और हमारे जो कविता लिखने वाले श्रोता हैं, उन्होंने एक लंबी सी कविता लिखी है, बहुत खूबसूरत कविता है, लेकिन उस कविता का थोड़ा सा अंश हम पढ़ रहे हैं। जलता रहा वो उम्र भर, मगर किसी ने ये ना पूछा कि जो सबको उजाला देता है उसके हिस्से में आखिर कितनी रातें आती हैं। नीले गगन ने जब कहा तुम अकेले नहीं हो रोशनी के रखवाले, तो सूरज हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान के पीछे सदियों की थकान छुपी थी। आगे इन्होंने लिखा है कि मैं जलता हूं तब किसी बच्चे की हंसी में चमक आती है, किसी माँ की दुआ में उजाला रहता है, किसी मुसाफिर को रास्ता मिलता है, किसी उदास चेहरे पर उम्मीद की किरण उतरती है, मगर मेरी किस्मत देख जिसे भी रोशनी मिली वो उसी का हो गया, कोई मेरा ना हुआ। इतना कहकर सूरज चुप हो गया। उसकी तपिश में अब दर्द पिघलने लगा था। आसमान भी खामोश था, क्योंकि पहली बार उसने देखा जो पूरी दुनिया को रोशन करता है उसके भीतर कितना गहरा अंधेरा था। दिल को छू लेने वाला संदेश, बहुत सुंदर। तो अब अगले गीत की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उसके पहले संदेश भी हैं। श्रोता ने, एक श्रोता लिखते हैं कि गर्मी ने तो अप्रैल में ही मई जून की याद दिला दी थी, सो अब भी गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना। फिल्म जवाब का इन्होंने गीत याद किया है। और बहुत सारे गाने भी इन्होंने बताए हैं, सूरज को लेकर, नीले गगन को लेकर, और बहुत सारी गानों की बात की है। ऐसे ही हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि रोशनी चाहे चांद की हो या सूरज की, दोनों का ही अपना अलग जादू और सुकून है। जहां सूरज की रोशनी हमें ऊर्जा, गर्मी और नया दिन जीने की प्रेरणा देती है, वहीं चांद की रोशनी हमें शीतलता, सुकून और रात का ठहराव देती है। और सौर ऊर्जा की बात की है हमारे एक और साथी ने। लिखते हैं कि जगत भर की रोशनी के लिए सूरज जलते रहना रहता है, और अब सौर ऊर्जा का जमाना आया है, वो भी सूरज पर ही निर्भर है। अब हम बिजली का चालू रखने के लिए इन्वर्टर चलाते हैं, उसको रिचार्ज मेंटेन करना पड़ता है। चांद और सूरज हमारे रोशनी के नैसर्गिक साधन है। आज हमें अपना सुरीला सफर गीतों से रोशन करके पूरा करना है, और इन्होंने कई गीत याद किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये गाना आपकी लिस्ट से मैच करता है या नहीं। शब्द है माना जनाब। फिल्म का नाम बताइए और आवाज पहचानिए किनकी है।

0: सही जवाब आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उन सभी श्रोताओं का। पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज है, और हम बता देते हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था। एक श्रोता कह रहे हैं कि सोच लो, अगर सूरज दादा न होते तो पृथ्वी एक बेजान अंधेरी बर्फ का गोला बन जाती, न पेड़ पौधे होते, न हम होते, न पशु पक्षी होते। शुक्र है सूर्य नारायण देव का कि जिनकी कृपा से आज पृथ्वीवासी हर जीव अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और एक और श्रोता ने याद किया है, काइन फल निकलता था इसको मशीन में तेल पिराकर, और घी के समान उसका तेल निकलता था, उसे भी घर में दिया बत्ती के रूप में जलाया जाता था। एक और श्रोता ने याद किया है हमराज फिल्म के गाने का की बात करते हुए कि मैं बिहार से हूँ और आज के जमाने में बिहार में ऐसा समय आया जब 15 सालों तक हमारे गांव में 1989 से 2005 तक बिजली नहीं थी। तब लालटेन ही एक सहारा थी हमारे लिए, फिर मैंने सोलर लालटेन खरीदा। क्या बात है। एक साथी ने खुश होकर कहा है कि रोज रोज ध्यान लगाते हुए आज एक गाना मेरा लिस्ट में आया है, क्या बात है। और एक श्रोता कह रही है कि लालटेन के शीशे को उपले की राख से साफ करना पड़ता था, साफ करते समय बहुत एहतियात बरतना पड़ता था, ज्यादातर घर के बड़े लोग ही इसे शाम को करके रख देते थे। एक और श्रोता ने याद किया है कि दुकान में शाम होते ही लालटेन जलाते थे और कांच को साफ करना पड़ता था, बाती मिट्टी का तेल चिमनी भी बेचते थे, आज ये सब बंद हो गए हैं बिकने। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी से दिन निकलता है, चांद की रोशनी से रात का एहसास होता है, ज्ञान की रोशनी से जीवन संवरता है, वैसे ही अच्छे जीवन साथी से जीवन रोशनदान हो जाता है। क्या बात है। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उससे पहले एक संदेश सुन लिया जाए।
1: आएगी जरूर।
2: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत।

0: 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मन चाहे गीत कार्यक्रम, विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मन चाहे गीत, विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: सुहाने सुरीले सफर की बात जब हो रही है तो हमारी एक श्रोता ने याद किया है, हमें एक हल्की सी याद है कि गलियों और सड़कों पर लैंप पोस्ट हुआ करते थे, जिसमें एक सरकारी आदमी आता था जो लैंप पोस्ट में तेल भरता था और जला देता था। रात भर लैंप पोस्ट जलता था, सुबह अपने आप बुझ जाता था, तब सूरज की रोशनी से काम चलता था। जी हाँ, वो भी एक जमाना था। एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारी मम्मी दादी नानी ने लालटेन की रोशनी में कढ़ाई और सिलाई भी की है। हाँ वाकई, और बहुत सुंदर कशीदाकारी की है। अब सवाल जरा गौर से सुनिएगा, गाना पहचानना है आपको और फिल्म का नाम बताना है। कुछ इस तरह की लाइनें हैं कि चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। तो पहचानिए कौन सा गाना है ये और किस फिल्म का है। और हम जब संदेशों की बात करते हैं तो एक बड़ा ही प्यारा सा संदेश दिख रहा है। जीवन की छोटी छोटी खुशियों और शांति मन से है, जो अकेलेपन या बड़ी मुश्किलों के बावजूद मन को सुकून देती हैं। अकेले होने पर भी क्या छोटी सी बात से माँ को मन को सुकून दे जाते हैं। विशाल रोशनी की गर्मी में भी एक छोटी सी छांव मिल जाए तो वो मन को सुकून देती है। नीले गगन की विशालता में जब कोई एक चिड़िया चहकती है तो ये अकेलापन दूर कर देती है। जीवन की यही बड़ी बड़ी चुनौतियों के बीच किसी अपने का एक छोटा सा प्यार भरा शब्द या एक मुस्कान मन को शीतलता और राहत प्रदान करती है। यही जीवन है कि विपत्ति में भी छोटी छोटी सकारात्मक बातों को ढूंढ लिया जाए, जग ही नहीं मन भी रोशन हो जाए। क्या बात है। और अब अगला गाना जरा सुनिए और बताइए ये आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं। हंसने की बात है

पारस मणि फिल्म का ये गीत आपने बताया और हमारे एक श्रोता ने कहा कि अगला गीत बचेगा हंसता हुआ नूरानी चेहरा, और वो बच गया, क्या बात है। और जो हमने पहेली पूछी है, हमारे एक श्रोता ने कहा है कि गीत तो कुछ कुछ याद आ रहा है मगर शब्द नहीं आ रहे। एक श्रोता कह रहे हैं कि पहेली के इंद्रजाल ने उलझा दिया। ओ हो, उलझिए मत, हम सुलझाए देते हैं। चलिए हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं। जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगन विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया, और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ, कभी किसी की समझ में, किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। एक संदेश है, सूर्यदेव की महिमा निराली है, जब से यह धरती अस्तित्व में आई है सूर्यदेव की कृपा बनी हुई है। दिन और रात होते हैं, वनस्पति को जीवन मिलता है, हमारे यहाँ प्रतिदिन सूर्यदेव को पूजा जाता है। सूरज और रोशनी की बातचीत की कल्पना अद्भुत है। एक और श्रोता ने कहा है कि जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब साल 1960 से मैं विविध भारती के शरण में आया, मेरे आकाशवाणी राम। बहुत सुंदर। जैसे जगत भर की रोशनी के लिए सूरज को जलते रहना जरूरी है, उसी तरह जगत भर के श्रोताओं के मनोरंजन के लिए विविध भारती का चलना जरूरी है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम वो गीत की लाइनें एक बार फिर से बता देते हैं। गाना है अंतरे की लाइनें हैं, चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। बताइए कि ये कौन सा गाना है और किस फिल्म का है। और अब ये अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, ये देखिए आपके लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और फिल्म का नाम बताना है आपको। जहां शब्द से ये गाना,

0: ख्याल जाता है वहाँ वहाँ तुम्हें को पाता है।
1: ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ मुझे, ये कब हुआ, ये क्यों

0: गवाता है, जहाँ जहाँ ख्याल जाता है वहाँ वहाँ तुम्हें को पाता है।
1: ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ मुझे, ये कब हुआ, ये क्यों हुआ।
2: तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उस पहेली की जो हमने गाने के रूप में पूछी थी। बिल्कुल सही जवाब दिया है और इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई पहले उसी का जवाब। आपने अभी जो पहेली पूछी, गाने के शब्द याद नहीं आ रहे, पर ऐसा लग रहा है कि फिल्म चिराग कहाँ रोशनी कहाँ का गाना है, बड़ा बेदर्द जहाँ है यहाँ इंसाफ कहाँ है, कुछ इस तरह की इन्होंने बात कही है। बिल्कुल सही बात है, अजब है मालिक तेरा जहां, चिरा कहां रोशनी कहां, ये है गाने की पहली लाइन। बहुत बहुत शुक्रिया। पारसमणि फिल्म के गाने के गीतकार और संगीतकार का नाम हमने पूछा था, सही जवाब आया पारसमणि फिल्म की का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत रचना असद भोपाली की।

गीता रॉय और मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने जो गाना सुना, उसको सुनकर हमारे कुछ श्रोताओं को लगा कि हमने पहली बार सुना है ये गाना। ये गाना बड़े सरकार फिल्म का है, जैसा कि हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के साथ तुरंत अपना संदेश भेजने के लिए। और अब अगला गाना आपकी लिस्ट से मैच होता है या नहीं, बताइए हमें गाना मंजिल शब्द पर।

0: गजब कमाल, बड़ा ही दिलचस्प। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मंजिल शब्द पर फिल्म संजोग से ये गाना आपकी लिस्ट से मिल गया, मैं डिस्टिंक्शन में पास हो गया। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। एक श्रोता ने बताया है प्रदीप कुमार और अनीता गुहा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं, और एक और श्रोता कह रहे हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। एक साथी ने याद किया है, जहां तक मुझे याद है पुराने जमाने में शादी की बारात में लालटेन गैस बत्ती से उजाला किया जाता था और बारात ले जाई जाती थी, और गांव की पंचायत में भी गैस बत्ती का उपयोग किया जाता था। इसको पंच बत्ती कहा जाता था। इस दृश्य को राज कपूर की एक फिल्म में भी दिखाया गया था। कौन सी फिल्म थी वो, याद है आपको? शोले फिल्म में जया भादुड़ी को लालटेन जलाते और उसको धीमा करते हुए याद किया है एक श्रोता ने, और अंदाजा लगा रहे हैं एक और साथी कि ये जिंदगी के साथ ये अगला गाना बच सकता है। तो देखिए भाई कि ये गाना आपकी बात आपके लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं। हमें यह भी बताइए कि किसी की छोटी सी बात ने आपका जीवन क्या कभी बदला, या आपकी किसी छोटी सी बात ने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई और आपको याद रह गया।
1: छोटी सी ये दुनिया।

सही जवाब आया, बहुत बहुत शुक्रिया। रंगोली फिल्म गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, स्वर और अभिनय किशोर कुमार। क्या बात है, पूरा जवाब। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी सी ये दुनिया पहचाने लगते हैं। श्रोता जो विविध भारती फेसबुक पेज से जुड़कर मिले हैं, हर रोज मिल रहे हैं। और एक और श्रोता ने कहा कि ये गीत मेरी लिस्ट में था। एक श्रोता ने अंधेरे की बात की है और अंधेरे को विसंगतियों और असमानता का प्रतीक बताया है। रोशनी के लिए सूरज एकमात्र पर्याय नहीं, भौतिकवादी संसार के संदर्भ में या फिर मनुष्य के अंतर्मन में गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, सच्ची भक्ति और आंतरिक प्रेम ही एक दिव्य रोशनी है जो अंतर्मन में व्याप्त अंधेरे को दूर कर मार्ग प्रशस्त करती है। सृजन और कला के माध्यम से भी रोशनी प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए कि सृजन और कला या आपकी किसी छोटी सी बात से किसके जीवन में रोशनी आई या किसी ने आपके जीवन में इस तरह से रोशनी भर दी, एक पल के लिए लगा जैसे उजाला ही उजाला हो गया, याद हो तो बताएं। और अब ये गाना सुनिए और हमें ये बताएं कि फिल्म में फिल्म का नाम क्या है और प्रमुख कलाकार कौन है।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: कर रही हैं ये। हाँ भाई, छोटी सी दुनिया है, आवाजें भी मिल जाती हैं, अंदाज भी मिल जाते हैं। और एक और श्रोता ने गुस्सा जताया है कि 60 और 70 के दशक के गानों में ही सिमट कर रह गया है कार्यक्रम। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम और गाने भी शामिल करते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब बात हो रही थी, जिस तरह के विषयों की बात हो रही थी, जिस तरह के शब्दों की बात हो रही थी, तो जो गाने अच्छे लगे और जो गाने हिट रहे, ज्यादा सुने गए, उन्हें ही हमने छांटा है। तीसरी कसम फिल्म और हरियाली और रास्ता में लालटेन दिखाई गई है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात हो रही थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे की, लेकिन उसके पहले हम सोचते हैं कि ये गाना जल्दी से सुन लिया जाए। हम आपको बताते हैं इसका जवाब भी। ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम पहचानिए, आवाजें पहचानिए किनकी है।

कई संदेश आए हैं लता मंगेशकर और प्रेमलता की आवाजों में। बड़ी बहन फिल्म का ये गाना आपने सुना था, सही जवाब। एक श्रोता ने कहा है कि हमें एक बूढ़े माली की मुस्कान याद आ गई। हमारे घर के सामने छोटा सा पार्क बना हुआ है पानी की टंकी के चारों तरफ, और उसमें इतनी गर्मी में रोज एक बूढ़ा माली छतरी लगा करके घास काटते हैं। हम एक गिलास नींबू पानी देने गए तो इतनी गर्मी में मानो उन्हें तड़क मिल गई। उनकी मुस्कान से हमें जो खुशी मिली नहीं बता सकते। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता ने बताया है किशोर कुमार और कुमकुम, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे के।

ये प्रमुख कलाकार। और एक और श्रोता ने कहा है कि पत्नी, धर्मपत्नी के आगमन से 1975 में मेरी किस्मत बदल गई। उसके पहले शून्य में था, वो आई तो आगे एक लग गया, यानी 10 बन गया। ये पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई ना? बिल्कुल आ गई। और मुस्कान के साथ साथ वक्त की ये घंटी भी आ गई कि अब आपसे इजाजत लेनी है। तो सुरीला सफर कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम, फिर मिलेंगे। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।

नमस्कार दोस्तों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन मनाया जाता है गंगा दशहरा का पावन पर्व। ये दिन माँ गंगा के पृथ्वी पर आगमन का प्रतीक है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए हिमालय में कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर गंगा जी धरती पर आने को तैयार हुई। जब गंगा धरती पर उतरी तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि उसको संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। इसीलिए इस दिन शिव जी की पूजा भी की जाती है और माना जाता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान और पूजा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा न केवल एक पवित्र नदी है बल्कि इसे भारत का हृदय भी कहा जाता है। शांति और अच्छाई की प्रतीक गंगा नदी के बहते पानी में हजारों दीपक प्रवाहित किए जाते हैं। देश के कई प्रदेशों में बड़ी धूमधाम से गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है, लेकिन हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी में ये एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है।

ना सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की भी पवित्र नदियों में से एक कहलाती है। गंगा के निर्मल और पावन जल पर समय समय पर बहुत सारे शोध भी किए गए हैं और विज्ञान की हर

कसौटी पर गंगा का जल भी खरा उतरा है। विज्ञान भी मानता है कि गंगा जल में कीटाणुओं को मारने की क्षमता है। इसका जल हमेशा ही पवित्र रहता है। लेकिन जिस प्रकार आजकल न सिर्फ गंगा नदी बल्कि अन्य बहुत सारी नदियों का पानी भी दूषित हो रहा है, इसे रोकने की जरूरत है। हमें समझने की आवश्यकता है कि गंगा केवल एक जलधारा नहीं बल्कि जीवनकाल और लोक संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। गंगा सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ साथ विकास की जननी भी रही।

दोस्तों, भारत को नदियों का देश माना जाता है। भारत में सिर्फ गंगा को ही नहीं बल्कि अन्य नदियों को भी माता के रूप में पूजा जाता है। ये सदा से ही हमारे लिए जीवनदायिनी रही है। नदियाँ धरती पर जीवन के लिए एक आशीर्वाद हैं। हमें अपने जीवन में गंगा नदी की बहती धारा से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस प्रकार वो अपने गंतव्य की ओर पहुंचने के लिए बहुत सारी रुकावटें आने के बाद भी निरंतर आगे बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सी रुकावटें आती रहती हैं, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही रहना है। हम गंगा को माँ कहते हैं, लेकिन उसे माँ मानने का हमारा व्यवहार सिर्फ उसकी पूजा मात्र तक ही सीमित है। असल व्यवहार में हमने गंगा को कचरा और मल ढोने वाली मालगाड़ी मान लिया है। इसके कारण गंगा का जल प्रदूषित होता है, वो अपना संतुलन भी खोती है। वर्तमान में जल संकट एक गंभीर समस्या है। हम अपने दैनिक जीवन में जल को दूषित करेंगे, जल का संरक्षण नहीं

करेंगे तो हमारा मन भी अशांत होगा और हमारा जीवन भी अशांत होगा। इसीलिए गंगा को प्रदूषण से बचाकर हम अपने मन को भी प्रसन्न और स्वस्थ रख सकते हैं। गंगा की सफाई और स्वच्छता में भी हम अपना सहयोग कर सकते हैं। हमें गंगा के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलकर उसे संवारना होगा और उसे प्राथमिकता देनी होगी, ताकि गंगा का दोहन बंद हो सके और सही मायने में यही माँ गंगा की सच्ची सेवा और उपासना है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलेम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए

0: सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
1: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सग्रम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
4: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
5: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर

0: से दो दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेस्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टागन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीफ अली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

देख कबीरा रोया फिल्म का ये गाना मन्ना डे के स्वर में आपने सुना। राजेंद्र कृष्ण के बोलों को संगीत से सवारा था मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला कालजयी गीत स्कूल मास्टर फिल्म से लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें हैं, प्रदीप के बोल हैं और वसंत देसाई की धुन।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की रेशमी आवाजों में प्यार बरसाता ये कालजयी गीत आपने सुना स्कूल मास्टर फिल्म से। और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो भाई भाई फिल्म से है। लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण की बोल, मदन मोहन की तर्ज।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, इस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी का गाया फिल्म जिद्दी का ये गाना, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, सुरों में पिरोया है सचिन देव परमन ने।

बोलो कुछ तो बोलो बोलो बोलो हे बोलो कुछ।

चाचा जिंदाबाद। इस फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ फिल्म आवारा का गाना। शैलेंद्र के बोलों को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

ये महकती किलकती शिकायत आरजू फिल्म से हसरत जयपुरी की लिखी हुई लिखे हुए इस गीत में आपने सुनी मोहम्मद रफी की आवाज में। धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आखिरी नगमा बंदिनी फिल्म की से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत रचा है सचिन देव बर्मन ने।

0: रही देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मन चाहे गीत,
0: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

आपके मनचाहे गीतों के साथ हाजिर हूं मैं राजुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म दाग के इस गाने से, जिसे पसंद किया है शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा ने। राजनांदगांव से नारायण लाल साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू, कुलवंतिन साहू, नेहा देवी, कुमारी टिकेश्वरी, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू ने। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दाग का ये गाना, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

मोहब्बत से लिपटा ये दिल का अफसाना आपने सुना फिल्म दाग से। और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना शंकर हुसैन फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर के बोल और खयाम की संगीत रचना है। सुनना चाहते हैं? रामेश्वर नगर रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता और शशांक गुप्ता। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू।

फासलों की खुशबुओं में महकती नज़दीकियों का ये तराना आपने शंकर हुसैन फिल्म से सुना, और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, हरिपाल कौर और मीनाक्षी तिवारी। सुन रहे हैं फिल्म उलझन का ये गाना किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में।

जी हशमत के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म मिस्टर नटवरलाल से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं, इस गाने को सुनना चाहते हैं। जूना तार फैल अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन और नेहा। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आनंद बख्शी का लिखा और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गाना।

ये थिरकता हुआ सा गीत मिस्टर नटवालाल फिल्म से सुना। और अब अगला मनचाहा गीत, बड़ी प्यारी सी पसंद, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। इसी गाने को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर दो चोर फिल्म का ये गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। ये मीठी सी नोकझोंक मजरूह सुल्तानपुरी का गीत बना है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख ने पसंद किया है ये गीत फिल्म साजन का। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। समीर के बोलों को संगीत में सवारा है नदीम श्रवण ने, तो सुनते हैं ये मीठा सा गाना।

0: दिल के इस सुरीले हाल का ये आपने सुना गीत साजन फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत था और यही गीत बना आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मनचाहेगी यह है विविध भारती। नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। शकुंतला, रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: हिरण ने तो हमें थका ही डाला।
1: चिंता न करें महाराज, कुछ ही क्षणों में हिरण आपके बाण की परिधि में होगा।
0: रथ को और तेज चलाओ सारथी।
1: महाराज ये धरातल ही कुछ ऊंचा नीचा है, समतल के आते ही हम हिरण को पकड़ लेंगे।
0: हाँ, रास बिल्कुल ढीली छोड़ दो सारथी।
1: ये लीजिए महाराज, आपका शिकार आपके सामने है।
0: अब इस हिरण के प्राण मेरे बाण से बच नहीं सकते।
1: ये आंखें वर्षों से आपके धनुष कौशल की साक्षी रही है महाराज,
0: तो आज एक बार और देखो इस कौशल को। ये
2: नहीं राजन, नहीं, ये आश्रम का हिरण है, इसे मत मारिए। दया कीजिए इस पर राजन,
1: इस पर दया कीजिए।
0: अरे ये कौन लोग हैं?
1: ये आश्रम के तपस्वी हैं महाराज।
0: रथ को रोको सारथी। हिरण का पीछा करते करते हम किसी आश्रम के निकट आ गए हैं।
3: हाँ राजन, तपोवन की शांत भूमि पर धनुष पर चढ़ा हुआ ये बाण शोभा नहीं देता।
4: आपके शस्त्र तो दुखियों के दुख दूर करने के लिए हैं राजन, निरपराधों को मारने के लिए नहीं।
3: उस निर्दोष हिरण के प्राणों का पीछा छोड़ दीजिए राजन।
0: तपस्वियों का आदेश शिरोधार्य है, लीजिए मैंने अपना बाण लौटा लिया।
4: पुरु वंश में उत्पन्न आप जैसे श्रेष्ठ राजा के लिए यही उचित है।
3: ईश्वर करे आपको अपनी ही तरह गुणवान, प्रतापी और चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
0: आशीर्वचनों की वर्षा करने वाले मुनि कुमारों का परिचय जान सकता हूँ?
3: हम कुलपति कर्ण के शिष्य हैं राजन, मेरा नाम शारंग्रव है।
4: और मैं हूँ शारद्वत।
0: महर्षि कर्ण के शिष्य हैं आप लोग?
3: हाँ राजन, मालिनी नदी के तट के समीप ही उनका आश्रम है।
4: यदि आप लौटने की जल्दी में ना हो तो वहां पधार कर आतिथ्य स्वीकार करें राजन।
0: अवश्य, कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन वंचित रहना चाहेगा।
3: कुलपति तो अभी आश्रम में नहीं है राजन, किसी काम से बाहर गए हुए हैं।
0: फिर?
4: किंतु आपके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।
3: हाँ, इस दायित्व के निर्वाह के लिए वहाँ शकुंतला उपस्थित है।
0: शकुंतला
4: हमारे कुलपति की कन्या है राजन।
0: कुलपति कब लौटेंगे?
3: उनका लौटना तो निश्चित नहीं है,
4: किंतु आप संकोच ना करें, सारा आश्रम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा।
3: आप आश्रम में पधारे राजन, हम अभी समिधा लेकर उपस्थित होते हैं।
0: ठीक है, इस पुनीत आश्रम में कुछ क्षण विश्राम कर हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहेंगे।
4: हम कृतज्ञ हैं राजन।

0: कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है। वृक्षों के नीचे निश्चिंत पक्षियों की ये मनोहारी क्रीड़ाएं, निर्भय हरिण शावकों का ये सहज विहार, मन में शांति का संचार करने वाली हवन की ये पवित्र सुगंध, नवीन पल्लवों की ये आकर्षक लालिमा। सारथी, रथ को यहीं रोक दो, हम यहां से पैदल ही जाएंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: सारथी, तपोवन की इस पवित्र भूमि में ये धनुष और ये आभूषण बोझ से लग रहे हैं, यहां हमें विनीत भाव से ही जाना चाहिए। लो, इन्हें संभालो।
1: लाइए लाइए महाराज।
0: मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर अभी आता हूं, तब तक तुम अपने घोड़ों को विश्राम करा लो।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: अरे, ये मेरी दाहिनी भुजा क्यों भड़क रही है, वो भी आश्रम जैसे शांत स्थान में? यहां इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है? विधाता भी न जाने कैसे कैसे विचित्र खेल दिखाता है। अरे, ये मधुर स्वर लहरियां कहां से आ रही हैं? चलो उस वाटिका की ओर चलकर देखूं। क्या रूप, क्या सौंदर्य है! आश्रम बालाओं के इस लावण्य के सामने बहलों की महक तो कुछ भी नहीं। वन लताओं का यह अनूठा आकर्षण बड़े से बड़े उपवन में भी कहां दिखाई देता है। कुछ देर यहीं छुपकर

0: इस रूप राशि को निहारना अनुचित ना होगा।
1: प्रियंवदा, इस वाटिका के वृक्षों को तो हमने सींच लिया, चलो चलो अब उधर की लताओं की प्यास बुझाएं।
2: ऐसी भी क्या जल्दी है शकुंतले, इतना काम किया है, कुछ देर विश्राम ही कर ले।
3: प्रियंवदा ठीक ही कहती है शकुंतला।
1: तुम दोनों को तो हर समय विश्राम ही सूझता है। अरे समय पर पानी ना मिले तो लताएं रूठ जाएंगी।
3: लताएं भी रूठती हैं क्या?
1: हाँ, अगर उन्हें आत्मिया की तरह पाला जाए तो रूठती भी हैं और प्रसन्न भी होती हैं। समझी?
2: मैं तो कुछ और ही समझी हूँ।
1: क्या समझी है तू?
2: यही कि पिता कण्व तुझसे भी अधिक इन पेड़ पौधों को चाहते हैं।
1: वो कैसे?
2: तभी तो तुझ जैसी कोमल कन्या से इनकी सेवा करवा रहे हैं।
0: सचमुच कुलपति कण्व कितने विवेकहीन हैं, ऐसे सुकोमल स्वाभाविक सौंदर्य से ऐसी कठोर तपस्या। शमी के वृक्ष को काटने का काम कमल के पत्ते से।
1: अरे अनुसुईया, ओह सरा इस कंचुकी को ढीली तो कर दे, बहुत कस कर बांधी है इस प्रियंवदा ने।
2: ए, मुझे क्यों दोष दे रही है?
1: क्यों, तेरा दोष नहीं है क्या?
2: दोष न मेरा है न इस बेचारी कंचुकी का, दोष तो तेरे यौवन का है।
0: सच ही तो कह रही है प्रियंवदा, नए पल्लव की लालिमा लिए हुए आकर्षक अधर, सुंदर शाखाओं से सजी सुकोमल बाहें, पूर्ण पके हुए फल की गरिमा से युक्त उन्मत्त अंग अंग में समाया हुआ यौवन।
1: प्रियंवदा, एक अच्छी बात कहूँ?
2: तेरे मुंह से तो बुरी से बुरी बात भी अच्छी लगती है रे।
1: परिहास ना कर।
2: अच्छा नहीं करती, बता।
1: देख वो सामने देख, कलियों से लदी माधवी लता कितनी जल्दी पड़ी हो गई, नहीं
2: तेरी तरह।
1: फिर परिहास।
2: अच्छा नहीं करती परिहास। अब मैं भी एक अच्छी बात बताऊं?
1: हाँ बता।
2: जल्दी ही तेरा विवाह होने वाला है।
1: थत, तेरा तो सिर घूम गया है।
2: सच, मैंने अपने कानों से सुना है।
1: अच्छा,
2: पिता कण्व कह रहे थे कि माधवी लता का मुकुलित होना तेरे लिए मंगलकारी है।
3: अच्छा, तभी इतना ध्यान रखा जा रहा है माधवी लता का।
1: क्यों ना रखूं ध्यान, मेरी बहन जो है।
4: ये भौरा कहाँ से आ गया?
1: अरे भगाओ ना इसे, तुम लोग हंस रही हो, भगाओ ना इसे। अरे अरे मेरा पीछा छोड़, भाग। अरे भाग ना, भगाओ ना इसे। क्या
2: हम लोग तुम्हारी रक्षा करने वाली कौन होती है?
3: इसके लिए तो राजा दुष्यंत का नाम लो।
2: हाँ वही रक्षा कर सकते हैं तुम्हारी।
1: अरे बचाओ, बचाओ ना।
0: अब मुझे सामने आ ही जाना चाहिए।
5: पृथ्वी पर पुरवंशी राजा का शासन चलते शांत सरल तपस्वी बालाओं को कौन भयभीत कर रहा है?
2: भय का कोई कारण नहीं आर्य, हमारी सखी शकुंतला को एक दुष्ट भ्रमर दुखी कर रहा था।
3: आपके आते ही भाग भी गया।
2: आप खड़े क्यों हैं आर्य? विराजी ना,
3: मैं अभी कुटिया से आपके लिए फल।
5: नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, आतिथ्य सत्कार के रूप में आपके मीठे मीठे वचन ही पर्याप्त हैं।
2: सप्तपर्ण की इस वेदी पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए आर्य,
3: इसकी घनी छाया आपकी सारी थकान हर लेगी।
5: आप लोग भी तो वृक्षों को सींचते सींचते थक गई होंगी, बैठिए ना आप लोग भी।
1: ना तुम लोग बैठो, मैं भी।
2: अब बैठ भी जा।
1: इन्हें देखते ही मेरे मन में आश्रम विरुद्ध विचार क्यों प्रबल हो रहे हैं? और ये मेरे मन को क्या हो रहा है?
2: हम लोग अपनी अतिथि के बारे में जानने को उत्सुक हैं आर्य।
3: किस राजर्षि के वंश को अलंकृत कर रहे हैं आप?
5: मैं अब क्या बताऊं इन्हें, मैं महाराज दुष्यंत का एक धर्माधिकारी हूँ, पवित्र आश्रमों को देखते देखते इस तपोवन में आ पहुंचा हूँ।
2: आज यदि पिता कण्व यहाँ होते तो आपका सत्कार कुछ और ही ढंग से होता।
5: और ही ढंग से?
3: हाँ आर्य, अपने जीवन का सर्वस्व सौंपकर वे आपको कृतार्थ कर देते। क्यों शकुंतला?
1: तुम लोग चुप नहीं रह सकती क्या?
5: आपकी सखी का परिचय जान सकता हूँ?
2: क्यों नहीं, इसका नाम है शकुंतला।
3: बहुत मीठा है इसका गला,
2: करती रहती है सबका भला,
3: इसने आज तक किसी को नहीं छला।
2: जितनी सुंदर है उतनी ही संकोची है।
3: कुलपति कणु की सबसे लाडली बिटिया है।
5: किंतु कुलपति कणु तो शाश्वत ब्रह्मचारी हैं।
2: आपका आश्चर्य अस्वाभाविक नहीं है आर्य, वैसे तो इसके पिता राजर्षि कौशिक हैं, किंतु उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर पिता कण्व ने इसका पालन पोषण किया है।
5: त्याग दिए जाने पर? मैं कुछ समझा नहीं।
3: मैं बताती हूँ आर्य, बहुत दिन हुए जब राजर्षि कौशिक अपनी चरम तपस्या में लीन थे तो देवताओं को अपना आसन डूलता हुआ दिखाई देने लगा।
5: फिर
3: क्या, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वसंत ऋतु के रमणीय समय में उन्होंने एक अप्सरा को वहां भेज दिया मेनका के उस मादक रूप को देखकर।
5: अब समझा इस अलौकिक सौंदर्य का रहस्य। किंतु
2: क्या आर्य?
5: कुछ नहीं, यूं ही विधि की विडंबना के बारे में सोच रहा था। अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी आपकी सखी को तपस्विनी के धर्म का पालन करना पड़ रहा है।
2: यह तो कुछ ही समय का अनुष्ठान है आर्य, पिता कण्व तो इसे किसी उपयुक्त वर को सौंपने की कामना रखते हैं।
1: अब मैं जाती हूँ और आर्या गौतमी से कहूंगी तुम्हारी इन ऊटपटांग बातों के बारे में।
2: अतिथि का सत्कार किए बिना ही चली जाओगी?
3: चली कैसे जाओगी, हमारे दो वृक्षों को सींचने का ऋण कौन चुकाएगा?
5: वृक्षों को सींचने का ऋण?
2: हाँ आर्य, हम प्रतिदिन 10-10 वृक्षों को सींचती हैं, किंतु कल इस कोमलांगी ने 8 ही वृक्षों को पानी दिया था।
3: इसके शेष 2 वृक्षों की सेवा हमने की थी, उसके ऋण की बात है आर्य।
5: ठीक है, मैं चुका देता हूँ इनका ऋण।
2: आप
5: ये लीजिए
2: अंगूठी। किंतु इस पर तो राजा दुष्यंत का नाम अंकित है।
3: आपके पास ये अंगूठी?
5: ये अंगूठी मुझे महाराज ने दान में दी थी।
2: तब तो इस अंगूठी को आप ही के पास होना चाहिए।
3: आपको ऋण मुक्त करने के लिए तो आपका कहना ही पर्याप्त है।
5: मैं आभारी हूँ।
4: तपोवन के जीवों के प्राण संकट में है, उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकारी राजा दुष्यंत दुश्मन में आ चुके हैं, सावधान सावधान।
5: लगता है मेरी खोज में निकले सैनिक तपोवन में घुस आ रहे हैं।
1: हे भगवान, अब क्या होगा?
4: सावधान, वन के जीव जंतुओं के कान के रूप में एक उच्छृंखल हाथी भी उत्पात मचाता आ रहा है। सावधान सावधान।
1: चलो चलो चलो, उस हाथी के यहाँ आने से पहले ही कुटिया में लौट चले।
3: हाँ हाँ चलो, आर्या गौतमी भी चिंतित हो रही होंगी।
5: आप लोग निश्चिंत होकर जाए, मेरे रहते आश्रम वासियों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है।
1: चलो शकुंतला। हाँ हाँ चलो
5: चलो, मैं भी सैनिकों को देखूं। किंतु किंतु मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा? शकुंतला की छवि को निहारते निहारते यहीं स्थिर होकर रह गया है। चलो तन से ही चलो, इस संकट का समाधान तो करना ही होगा।

0: हे भगवान, मैं तो दुखी हो गया इस जीवन से। न दिन को चैन न रात को नींद, बस घूमना घूमना और घूमना। दिन भर तीखी तेज दोपहरी में मारे मारे फिरो, प्यास लगने पर पहाड़ी नदियों का सड़ा हुआ पानी पियो, भूख लगे तो जाने अनजाने पशुओं का पका अनपका मांस खाओ। भगवान, अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना, गधा घोड़ा बैल मक्खी मच्छर कुछ भी बना देना, किंतु किसी शिकारी राजा का मित्र मत बनाना। और अब तो करेले पर नीम भी चढ़ गया है, शिकार करते करते राजा स्वयं शिकार हो गया है, अब उसके प्रेमी रूप को भी झेलना पड़ेगा।
1: माधव्य,
0: लो, नाम लेते ही प्रकट भी हो गए। चलो मित्र माधव्य, फिर किसी नए जंगल में भटकने के लिए तैयार हो जाओ।
1: माधव्य, अरे इस तरह मुंह क्यों लटका कर बैठे हो?
0: वाह, क्या भंगिमा है, आंखें फोड़कर पूछा जा रहा है कि आंसू क्यों बह रहे हैं।
1: ये तुम क्या कह रहे हो माधव्य?
0: तुम कैसे समझोगे, अच्छा भला राजकार्य और वैभव विलास छोड़कर बहेलिया जो बन गए हो।
1: हाँ माधव्य, बहेलिए का ये रूप तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है।
0: भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे।
1: शिकार के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते मैं भी थक गया हूं माधव्य। अब तो कुछ समय के लिए यहीं इसी पवित्र तपोवन में विश्राम करना चाहता हूं।
0: भगवान तुम्हें और लंबी आयु प्रदान करे।
1: अब तो प्रसन्न हो माधव्य?
0: अंधे को दो आंखों के अतिरिक्त और क्या चाहिए महाराज?
1: किंतु माधव्य, तुम तो आंखें रहते हुए भी अंधे हो।
0: हैं? वो कैसे?
1: दो बड़ी बड़ी आंखों के रहते हुए भी सबसे अधिक दर्शनीय वस्तुओं को देखने से वंचित जो हो।
0: आपको देख तो रहा हूं।
1: मैं अपनी नहीं, इस आश्रम के अलंकार की बात कर रहा हूं।
0: आश्रम का अलंकार?
1: हाँ, शकुंतला है उसका नाम।
0: किंतु वो तो तपस्वी कन्या है, उसको देखने से क्या लाभ?
1: माधव्य, पूर्णिमा के चंद्रमा को निर्निमेश क्या किसी लाभ के लिए ही देखा जाता है? और एक विशेष बात तो तुम जानते ही नहीं।
0: विशेष बात?
1: हां, शकुंतला तपस्वी बाला है अवश्य, किंतु उसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ है।
0: अप्सरा की कोख से और आश्रम में?
1: उसकी भी एक कथा है माधव्य।
2: महाराज की जय हो। दो तपस्वी कुमार आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज।
1: उन्हें तुरंत यहां भेज दो।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: महाराज की जय हो।
1: हमारा प्रणाम स्वीकार करें मुनिजन।
4: हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं महाराज।
1: मैं आपका आदेश सुनने को उत्सुक हूं मुनिजन।
4: आप तो जानते ही हैं आर्य कि कुलपति कण्व इस समय यहां नहीं है।
5: उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं यार।
4: अब आप ही इस आश्रम को आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं आर्य।
1: आप लोग चिंता ना करें। रेवतक,
2: आज्ञा महाराज।
1: सारथी से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को यहां ले आए।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: आप लोग निश्चिंत होकर पधारें, मैं अभी आता हूं।
4: आर्य की जय हो।
2: महाराज की जय हो। राजधानी से एक दूत आया है महाराज।
1: राजधानी से? वहां सब कुशल तो है?
2: वहां सब कुशल मंगल है महाराज। माता ने आपके नाम एक संदेश भिजवाया है।
1: माता ने भिजवाया है? उसे तुरंत यहां भेजो रेवतक।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: माता का संदेश?
6: महाराज की जय हो।
1: क्या आदेश है माता का?
6: आज से 4 दिन बाद पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास होना है महाराज। माता उस दिन आपकी उपस्थिति की आशा रखती है महाराज।
1: इधर तपस्वियों की सुरक्षा की समस्या है और उधर माता की आज्ञा। क्या करूं, कैसे जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता माधव्य।
4: बात तो सचमुच दुविधा की है मित्र।
1: एक काम हो सकता है माधव्य।
0: मैं यहां राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा करूं?
1: नहीं माधव्य, ये काम तो मुझे ही करना है। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे स्थान पर तुम राजधानी लौट जाओ।
0: मैं तुम्हारे स्थान पर?
1: राजा के स्थान पर नहीं, बेटे के स्थान पर। तुम्हें भी माता ने बेटे के समान ही माना है। उन्हें यहां की व्यवस्थाओं के बारे में समझा कर तुम ही पुत्र के दायित्व पूरे कर देना।
4: ठीक है,
7: महाराज दुष्यंत के छोटे भाई के रूप में जाने में तो सुखी सुख है।
1: और हाँ, इन सब सेवकों को भी अपने साथ ही ले जाओ, यहां तपोवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
0: वाह, अब तो ठाट से लौटूंगा युवराज बनकर।
1: एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा युवराज।
0: कहिए महाराज।
1: यही कि मैं यहां तपस्वियों की सेवा के लिए ही रुका हुआ हूं, समझे? शकुंतला वाली बात तो मैंने यूं ही मन बहलाने के लिए कह दी थी, उसे सच न समझ लेना।
0: ठीक है, जब तुम झूठ बतला रहे हो तो मैं सच क्यों मानने लगा?
1: मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र। जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं भी तपोवन को राक्षसों से मुक्त कराते ही पहुंच जाऊंगा।
0: जो आज्ञा महाराज।
1: जाओ युवराज।

0: प्यारी पवन चल रही है, अब तो कुछ आराम मिल रहा होगा शकुंतला।
1: क्या कह रही हो अनसुया?
2: प्रियंवदा, मुझे तो स्थिति कुछ गंभीर दिखाई देती है।
0: हाँ अनसुया, मुझे भी यही चिंता है। जब से उस राजर्षि के दर्शन हुए हैं, तब से
2: तेरी आशंका बिल्कुल ठीक है प्रियंवदा, तभी से इसकी ये दशा हो गई है।
0: इसी से पूछकर देखें?
2: हाँ, यही उचित रहेगा।
0: शकुंतला, एक बात पूछूं?
1: पूछो, क्या पूछना चाहती हो?
0: अपनी अस्वस्थता का कारण तुम स्वयं जानती हो?
1: कारण तो जानती हूँ प्रेमवदा, किंतु उपचार नहीं।
2: उपचार है क्यों नहीं, तुम बताओ तो? इस तरह दिन रात घुलते रहने से तो उपचार नहीं होगा।
1: जानकर भी क्या करोगी सखी, कष्ट ही होगा तुम लोगों को।
0: अपने लोगों में दुख बांटने से सहना सरल हो जाता है शकुंतला।
2: हाँ शकुंतला, संभव है हम कुछ सहायता कर सकें।
1: सखी, आश्रम की रक्षा करने वाले वो राजर्षि जब से इन आंखों में समाए हैं, तभी से
2: हमारा अनुमान सही है प्रियंवदा।
1: उनकी कृपा ही मेरे शरीर में प्राणों का संचार कर सकती है।
0: तुम्हारी कामना तुम्हारे गौरव के अनुरूप ही है शकुंतला।
2: समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ मिल सकती है?
1: मिलन की कामना तो प्रबलतम होती जा रही है सखी, किंतु कुछ उपाय नहीं सोचता।
0: इसकी दशा तो सचमुच बहुत गंभीर है अनुसुया।
2: हाँ प्रियंवदा, कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही होगा।
0: हाँ, किसी न किसी गुप्त रीति से इसकी अभिलाषा को शीघ्र पूरा करना होगा।
2: गुप्त रीति ही कुछ कठिन है प्रियंवदा, शीघ्र तो बहुत सरल है।
0: वो कैसे?
2: स्वयं राजर्षि भी शकुंतला की ओर कम आकर्षित नहीं है।
0: हाँ जी, पिछले कई दिनों से वो भी खोए खोए से दिखाई देते हैं।
2: मुझे एक उपाय सूझा है।
0: क्या?
2: ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग कामलिपि में एक प्रेम पत्र तैयार करते हैं,
0: फिर
2: उसे फूलों में छिपाकर देव पूजा के बहाने से उस राजर्षि तक पहुंचा देंगे।
0: मुझे तो उपाय बहुत अच्छा लग रहा है अनुसुया, एक बार इस शकुंतला से भी पूछ लो।
2: क्यों शकुंतला, हमारे उपाय से सहमत तो हो?
1: अपनी प्रिय सखियों से असहमत हो सकती हूँ भला?
0: तो ठीक है, अपनी अस्वस्थता को आधार बनाकर तुरंत एक सुललित गीत की रचना करो।
1: सुललित गीत? वो तो मैं लिख दूंगी, किंतु
0: क्या शकुंतला,
1: कहीं उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया तो?
0: अपने गुणों का अपमान क्यों कर रही हो शकुंतला?
2: कौन होगा जो चंद्रमा की शीतल चांदनी को छत्र लगाकर रोकना चाहेगा?
1: ठीक है, जब तुम लोग इतना आश्वस्त कर रहे हो तो मैं प्रयत्न करती हूँ।

0: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।
1: आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।

0: कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से।

प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: और ये मराठी लावणी
1: पाडाला पिकलाय आंबा आला बाई पाडाला पिकलाय आंबा हो नीट बघ पाडाला पिकलाय आंबा
0: और ये हिंदी गाना
1: हो पंख होते तोड़ आती रे।
0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा, हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार मेरे सब विविध भारतीय सुनने वालों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
2: प्रमिला जी, क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
3: जरूर,
2: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशंस आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किसी संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला हो?
3: अन्ना जी के सिवा और वसंत देसाई के सिवाय।
2: अच्छा,
3: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं गाया।
2: अच्छा,
3: मैंने
2: मंच पर आपने प्रस्तुतियां दी हैं।
3: अन्ना जी के गानों का शो करता भुलाए ना बने करके,
2: जी जी,
3: उनका उसका नाम था।
2: हाँ, हाँ।
3: तो हम शो करते थे षण्मुखानंद में, बम्बई में किए, पुणे में किए, ज्यादा नहीं ट्रैवलिंग।
2: जी,
3: तो उनका भी, अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के।
2: जी, जी, जी।
3: यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर आया।
2: हाँ, हाँ।
3: तो एकादी जागा, समझो एक हरकत है कुछ,
2: हाँ।
3: तो आपके गले में नहीं आई।
2: हाँ।
3: तो वसंत जी मतलब ठीक है, आपको ऐसा आता है ना,
2: हाँ।
3: ऐसे गाओ, चलेगा। अन्ना जी नहीं,
2: हाँ।
3: नहीं नहीं, वो वैसा ऐसा ही आना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो उनके साथ भुलाए ना बने कार्यक्रम था हमारा।
2: अन्ना जी मतलब
3: श्री रामचंद्र जी। तो षण्मुखानंद में शो था और उनका प्रोग्राम है तो उनके गाने का जाहिर है, लेकिन कोई लोग खास तौर पे करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये गाना वो गाना दूसरों के गाने के फरमाई दे रहे थे।
2: अच्छा।
3: तो थोड़ी देर एनर्जाइजेशन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे किसी के गाने इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं।
2: अच्छा।
3: इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना दी, फिर वो लोग चुप बैठ गए।
2: अच्छा।
3: एक छोटी गायिका थी, मुझे याद है,
2: हाँ,
3: नाम नहीं बताऊंगी, तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसा गीत गोपाल करके मराठी माडगुळकर जी ने ही लिखा था।
2: जी, जी,
3: वो
2: जी।
3: पूरा रिकॉर्ड भी, रिकॉर्डिंग हुआ है उसका एचएमवी में।
2: अच्छा।
3: तो उसमें वो थी, छोटी थी, तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती थी।
2: Okay.
3: एक समय कालीपास सुर है तो,
2: हाँ,
3: खर्च के जो सुर होते हैं,
2: हाँ,
3: आवाज आती ही नहीं थी गले से। तो उन्होंने ज्यादा ऊंचे ऊंचे सुर में गाना चाहती थी क्योंकि तब, तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं जरा सुर ऊपर ले लूं क्या स्केल।
2: हाँ।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, तू घर जा, सुबह उठ के खर्च का रियाज कर, फिर तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना गाना। तो वो किसी के भी सुन, जो उनको चाहिए चाहिए बस।
2: जी,
3: दोनों में फर्क था, वसंत जी और अन्ना जी।
2: अन्ना जी को यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम याद करें तो इतनी सारी कॉम्पोजिशन है,
3: बहुत,
2: उसमें से कौन सा कॉम्पोजिशन आज आप यहाँ चुनेंगी इस मौके पे?

0: प्रमिला जी, आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थी।
1: जी,
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ,
1: गायकों से,
0: तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसके लिए आपको बुलाया जाना, ये हाँ, तो समझ में आता है।
1: हाँ,
0: कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है?
1: नहीं, नहीं, वो तो
0: ऐसा
1: नहीं,
0: कभी हुआ नहीं,
1: वो दुर्भाग्य रहा मेरा।
0: नहीं
1: हुआ, लेकिन आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के लिए।
0: हाँ, अरे वाह,
1: मराठी फिल्म, बसंत जी का म्यूजिक था
0: जी,
1: और फिल्म का नाम था बयानो नवरे संभाला। उसमें डांस की जुगलबंदी थी, जयश्री टी और एक मधुमती करके डांसर थी, तो उनकी दोनों की जुगलबंदी हुई, दोनों के एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने गाया। मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ करामत करेगी उनके सामने, मैं तो, और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई।
0: अच्छा,
1: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा, तो मैं बहुत ये दबती थी। हाँ, ट्रैक रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थे, उनका असल स्टूडियो था शशांक लालचंद तारदेव में, तो वहां पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ।
0: हाँ,
1: हमारा तो मेरा पार्ट मैंने अलग गाया।
0: अच्छा,
1: लेकिन उनको मालूम था वसंत जी को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, ये भी कुछ करेगी बीच में अपने हिसाब से।
0: अच्छा,
1: तो उन्होंने मुझे ये कहा था, जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का।
0: अच्छा,
1: और कुछ करने का नहीं, मतलब अच्छा आपके हुक्म। आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ माय गॉड, वो गाना था वो भी अशी त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना था।
0: अच्छा अच्छा आशा जी की बात निकली है, तो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगी?
1: उनके गानों से ऑफकोर्स, और गानों की वजह से, और हर तरह का गाना, जो मैं बताने की जरूरत नहीं है कहने की,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हर तरह का गाना उनको, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना,
0: प्राण जाए पर वचन जाए, वो नैयर साहब का,
1: नैयर साहब का,
0: क्या बात क्या बात।
1: बहुत सारे, मतलब ये एक ही गाना सुनना तो नाइंसाफी होगी।
0: हाँ,
1: लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत,
0: ये गाना सुन लिया।

0: प्रमिला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें।
1: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
2: किसी ने मुझे आके बताया तो मुझे मालूम पड़ गया कि किसी ने बताया वो प्रमिला दातार जी की लावणी है ना पाड़ाल पिकला हमने वो गाई है, वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई। वो उसकी नहीं, वो मेरी है। तो उसकी उसकी नहीं है। तो मतलब इस तरह से कोई कोई गाने इतने, गुजराती में गुजरात में गुजराती, फिर कर्नाटक में गए तो कानड़ी, फिर मलयालम, ऐसे एक ही थोड़ा थोड़ा तैयार करके रखा। तो वहां के लोकल लोग बहुत खुश होते थे, उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना तो मस्त उनको मजा आता था सुनने में। उसका एक मंदसौर का किस्सा है, मैं आपको बताया कि
0: बिल्कुल
2: मेरे शो मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था, मेरे पीछे बड़ा रिकॉर्ड ऐसा पत्रिका फोल्डिंग स्क्रीन नहीं, ऐसा स्टैंड पे हुआ करता
0: अच्छा,
2: था
0: अच्छा, बहुत बनाया बड़ा
2: कटआउट बनाया था।
0: हाँ।
2: तो पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो बहुत खराब होता था लकड़ा, था पत्रे का बनाया था मेटल का। तो उसके मेरा नाम प्रमिला दातार और सुनहरी यादें, वो मेरे जहाँ एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वही, तो मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं कि वो आपका आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था। तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था, इंदौर के पास मध्य प्रदेश में एक गांव है मंदसौर करके। तो हमारा शो खत्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड उसको हम साइक्लोरामा डालते थे।
0: अच्छा।
2: तो ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही है,
0: रहा।
2: ऐसा
0: अच्छा,
2: लगता
0: अच्छा,
2: था
0: अच्छा।
2: तो ऐसा भास होता था लोगों को। तो एक आदमी बहुत गुस्सा होकर आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको लोगों को ऑडियंस को, मतलब क्या क्या हुआ। मेरी तो जहां तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा गाने की। तो बोले नहीं नहीं, वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो सिर्फ।
0: अच्छा।
2: एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था कि उसको रिकॉर्ड जैसा लगा।
0: क्या बात।
2: लेकिन मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, मैंने उसको बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया कि ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते सामने ऐसा गाना गा। फिर वो शांत हो गया।
0: श्रोताओं की बात निकली है
2: जी,
0: तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में गांव में शो किए हैं और विदेशों में भी किए हैं, हर शहर का श्रोता अलग होता है।
2: बिल्कुल है बिल्कुल। और शुरुआत में नहीं लेकिन अनुभव से आपको मालूम होना चाहिए कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं एक साथ लगो पाठ पांच छह शांत धीमे गीत फिर लोग हाँ करके सामने सामने ये करते हैं।
0: अच्छा, अच्छा।
2: फिर दो गाने के बाद एक रात को डा सफाज गाना, फिर ये मुड़ के गाने के बाद ये मुड़, वो अपने आप हाँ समझना चाहिए, वो सिखा
0: अच्छा।
2: के नहीं आती बात।
0: अच्छा, अच्छा।
2: और जहां तक पहली बार भी गए किसी शहर में किसी गांव में छोटे से गांव में भी
0: जी, जी।
2: तो पहले दो गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को, किस प्रकार के गाने चाहिए।
0: अच्छा।
2: तो वो होने से ज्यादा अच्छा होता है।
0: और भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहां के श्रोता, कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है
2: फर्क? नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे।
0: अच्छा,
2: ये है अच्छा लोग, क्योंकि ये रफी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं तो वो बिल्कुल मतलब ये था, मुझे याद भी नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे। पहला प्रमिला भी अच्छा गाती है, आपने कभी फिल्मों में गाया है क्या, ये सब पूछते थे फिर आके।
0: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा होती थी?
2: वो रफी साहब का गाना एक डुगाना है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे
0: जी, जी,
2: तो
0: जी।
2: वो आगे आके उनको उसको एक बोलते ना, मैं बताती हूँ आपको।
0: हाँ।
2: रफी साहब पहले शुरू करते थे
0: जी।

0: रहेगा फिर जानी विस्की अरे परसो भी रहेगा अरे तरसो भी क्या जानी भाई आप इतना के पूना गाने का लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था मजा आता था लोग मजे लेते
1: जी जी जी तो चलिए इसी गीत के लिए जगह बनाते हैं ये गाना सुन लेते हैं
0: जरूर।

0: होगी, आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक।
0: अच्छा,
1: मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और हाँ, स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है,
1: बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है
0: जी, जी,
1: फिर भी आखिर में क्या आप दूसरों के गाने ही गाते हैं ना,
0: हाँ,
1: ये होता है,
0: हाँ,
1: ये ठपका दोष आता है उनके ऊपर, इसलिए वो अगर होता था। लेकिन मैं मेरे इसमें खुश थी, मैं लोगों को आमने सामने मेरा मुझे दाद मिलती थी लोगों की, तो मैं खुश थी, वही उसमें ही खुश थी। और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ से बहुत अच्छा चला और नाम देने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया कि ऐसा होना चाहिए ऑर्केस्ट्रा। एक पूना के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धंगड़ धिंगा ये वो डांस वो ऐसे नहीं, अच्छी तरह से भी करो तो फिर लोगों को पसंद। तो पुणे के हमारे एक अच्छे जो क्लासेस करके उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने मोराज को देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत अच्छी
0: है,
1: दूसरा कोई कहने की जरूरत ही नहीं है।
0: शो में आपके प्रेजेंटेशन में
1: शालीनता हो
0: तो जरूर, सवाल ही नहीं, बिल्कुल, वो बिल्कुल, बहुत सुंदर होता है। क्या बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगी कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग है और वो शो के लिए आपके आए हैं?
1: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनकी कंपनी के लिए ऐसे भी मेरे, लेकिन अभी ज्यादा नाम मुझे याद नहीं।
0: प्राइवेट शोज भी होते,
1: प्राइवेट शोज भी होते थे,
0: कंपनी के
1: होते
0: लिए
1: थे, कंपनी के लिए किसी, कंपनी के लिए बहुत शो हुए।
0: अच्छा,
1: मतलब बहुत सारी ठाणा इंडस्ट्रियल स्टेट मुंबई के आसपास और बाहर गांव में भी
0: जी, जी।
1: बहुत सारी कंपनी, उनके लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे, नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया, कॉन्टेक्ट किया।
0: जी जी, प्रमिला जी, अलग अलग संगीतकारों के गाने आपने मंच पर प्रस्तुत किए हैं, सबका अपना अलग अंदाज होता है, अपना स्टाइल होता है, ये तो नहीं पूछूंगा कि किसका गाना गाते समय आपको ज्यादा आनंद आया, मजा आया, सबका गाने में अलग उनका अपना ढंग होता है और
1: उनकी सही बात
0: विशेषता होती है, फिर भी आप क्या फर्क महसूस करती हैं हर तरह के संगीत, पुराने जमाने के जितने संगीतकार हुए, आप मुबारक बेगम के गाए गाने प्रस्तुत करती थी, शमशाद बेगम जी के प्रस्तुत, वो जो एक वहां से पूरा दौर आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशंस गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ,
1: किन
0: कंपोजिशंस में ज्यादा चैलेंजिंग लगा?
1: हाँ, यही मैं कहने वाली थी कि पुराने जमाने के जो कंपोजिशंस थे वो चैलेंजिंग थे।
0: अच्छा,
1: अभी आज का जमाने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता है ऐसे आज के जमाने के, ऐसा मुझे लगता है।
0: अच्छा,
1: मेरी राय होगी और शायद गलत भी हो सकती है, लेकिन पुराने जो गाने थे उसमें अगर जो म्यूजिक भी था बीच का, वो म्यूजिक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूजिक का टुकड़ा उधर आना चाहिए नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा, इस तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है, ऐसा चिल्लाते थे जरा भी। मैं इसका एक किस्सा बताती हूँ, मेरा अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक है, उन्होंने शुरुआत करियर की मेरे शो से की थी।
0: अच्छा,
1: तो वो सेमी क्लासिकल रफी साहब कैसे मधुबन में राधिका नाचने गाने, तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा।
2: अभी आप सुन रहे थे देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम। श्रोताओं, हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के 4:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए ग्राम पांचला सिद्धा में आयोजित नशा मुक्ति शिविर की रेडियो रिपोर्ट। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री देव जसनाथ ट्रस्ट, श्री जसनाथ आसन, पांचला सिद्धा खीमसर। वाचक एवं प्रस्तुति सहायक है मोहम्मद शरीफ शिपा और प्रस्तुत करता है अशोक कुमार गोयल।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीदेव जसनाथ ट्रस्ट, श्री जसनाथ आसन, पांचला सिद्धा।

नमस्कार, आज हम आपको लिए चलते हैं ख्यूंसर के निकट बसे ग्राम पांचला सिद्धा में श्री जसनाथ आश्रम में, जहां समाज को नशे की गिरफ्त से मुक्त करने के लिए श्रीदेव ट्रस्ट द्वारा आयोजित दिनांक 15 मई 2026 को नशा मुक्ति शिविर का भव्य समापन हुआ। ग्राम पांचला सिद्धा की पावन धरा पर पिछले कई दिनों से चल रहा नशा मुक्ति शिविर आज एक प्रेरणादायक संदेश के साथ संपन्न हुआ। इस शिविर में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और नशा छोड़ने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में अनेक वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। शिविर के दौरान नशा छोड़ने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया, जिससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिली। इस शिविर में दिल्ली विश्वविद्यालय से आए रिसर्चरों ने अपनी सेवाएं दी।

0: कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत करते हुए आप हैं बाड़मेर जिले के जिला रसद अधिकारी श्री कंवराराम।
1: थोड़ा इस धाम के बारे में बताएं, आसन के बारे में।
2: श्री जसनाथ जी महाराज का जो अवतार स्थली है वो बीकानेर के पास कतरियासर है, और जसनाथ जी महाराज ने सम्वत 1539 में जो अवतार लेकर के और जसनाथ संप्रदाय की उसके पश्चात में स्थापना की थी, और जसनाथ जी महाराज के शिष्य भोज जी महाराज ने यहाँ 5 लाख आकर के और जसनाथ संप्रदाय की एक पीठ की स्थापना करी, जो लोग 350 वर्ष से अधिक समय से स्थापित हैं। और जसनाथ संप्रदाय के जो मुख्य जो नियम है, आचार विचार हैं, उनमें पर्यावरण का संरक्षण और नशा, इन दो बातों पे विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ में समाज के उत्थान में, मानव सर्वांगीण विकास में आसन काम करता है, लेकिन विशेष रूप से जो नशा मुक्ति का जो काम है वो जसनाथ संप्रदाय में होता है। और वर्तमान जो श्री जसनाथ आसन 5 लाख सिद्धा के जो पीठाधीश्वर है श्री सूरजनाथ जी महाराज, उनका जो योग के संबंध में उनकी जानकारी और उनके आधार पर उन्होंने नशे को जो है समाज से मुक्त करने के लिए अपना विशेष प्रयास किया है। और गुरु महाराज ने स्वयं जो है नशे के संबंध में अपना जो 2 वर्षीय जो पीजी कोर्स किया है योगा में, उनमें भी इनका जो है योग के माध्यम से नशा कैसे छोड़े उसके बारे में आपने विशेष रिसर्च किया है और समाज सुधार के लिए अपना प्रयास किया है। उसी के क्रम में 5 लाख आसन में प्रतिवर्ष नशा मुक्ति का शिविर आयोजित किया जाता है गर्मियों के समय में, और उसी क्रम में इस वर्ष भी अब 11 अप्रैल से आवासीय 1 माह का जो है शिविर है वो चल रहा है, जिसमें लगभग 150 लाभार्थी जो है उन्होंने अपना हिस्सा लिया था। और इसके अंदर जो है लगभग 6 चरण है नशे को पूर्णतः छोड़ने के लिए, और उन 6 चरणों को लगभग आज 45 लोगों ने पूर्ण किया है और नशे को जो है प्रवृत्ति को पूर्ण रूप से आज त्याग किया है।
1: सर, आप कितने समय से जुड़े हुए इस आसन से?
2: मैं इस आसन से मेरे जन्म से जुड़ा हूँ, केवल मैं ही नहीं, मेरे पूर्वज भी इसी जसनाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे, इसी कारण से मेरे दादा परदादा सभी लोग जुड़े हुए थे, और उनके साथ ही मैं आसन में जो बाल्यकाल से ही आना मैंने शुरू किया था। और गुरु महाराज और मेरी जो आयु है वो लगभग सेम है, इसलिए पढ़ाई में, शिक्षा में और प्रत्येक जो कार्य है आसन के उसमें लगभग हम भागीदार रहे हैं और लंबे समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ।
1: आज वैसे शिविर का समापन है, और उसमें इस शिविर के बारे में थोड़ा बताएं।
2: नशा मुक्ति का जो शिविर है वो गुरु महाराज की प्रेरणा से निशुल्क, जो भी यहाँ पे नशा छोड़ने के लिए आते हैं उन लोगों के लिए निशुल्क जो है आवासीय शिविर रखा गया है। और इसमें किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे अफीम का हो, चाहे डोडे का हो, चाहे अन्य जो प्रवृत्तियां हैं उनमें से धूम्रपान का हो या कोई और भी एडिक्ट होते हैं, तो उन सबको छोड़ने के लिए यहाँ पे 1 महीने का पूर्ण प्रशिक्षण उनको दिया जाता है। और विशेष रूप से यहाँ पे जो कैंप शुरू होता है तो उसमें प्राइमरी रूप से सभी का मेडिकल टेस्ट होता है और रिपोर्ट्स तैयार होती है, उसके आधार पे यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, उनकी भी टीम आई हुई है और पूरा उसके जो मेडिकल जांच है उसका विश्लेषण करते हैं, और जो भी नशा छोड़ने वाला व्यक्ति है उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा उसको तैयार करके, और पूरी ऐसे भी तैयार करते हैं क्या उनका खाना पीना रहेगा, कैसा उसका पूरे दिन का समय कैसे निकलेगा, क्या क्या उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा ताकि वो इस नशे को छोड़ सके। यहाँ पे किसी प्रकार के दबाव से किसी नशे को नहीं छोड़ा जाता या कोई मेडिकल के सहयोग से नहीं छोड़ा जाता। यदि कोई किसी भी जो प्रतिवादी है उसका अगर मान लो कोई समस्या है तो ही उसको ड्रिप या ऐसे कोई दवा दी जाती है, अन्यथा किसी प्रकार के कोई मेडिकल का जो उपयोग नहीं करके योग के माध्यम से और गुरु महाराज के आशीर्वाद से नशे को छोड़ने का प्रयास यहाँ करवाया जाता है।
1: यहाँ जो लोग नशा की प्रवृत्ति के जो आप बता रहे थे कि यहाँ पर है तो निशुल्क भी है, तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं?
2: यहाँ पर विशेष रूप से जो जसनाथ संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनमें बाड़मेर के हैं, जैसलमेर के हैं, जालौर के हैं, जोधपुर के हैं, नागौर के हैं, बीकानेर के हैं, सभी अपने जो राजस्थान के पश्चिम राजस्थान है इसके प्रांतों के लोग हैं। और इसमें केवल जसनाथ संप्रदाय के अलावा और भी जो लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पे विभिन्न जातियों के, धर्मों के, संप्रदाय के सारे लोग यहाँ पे सम्मिलित हैं और सबने यहाँ पे जो अपना एडमिशन लिया है और नशे का त्याग किया है।
1: डीएसओ साहब, वैसे नशे की प्रवृत्ति आजकल देखने में आती है युवाओं में ज्यादा होती है, यूथ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: यूथ को लेकर के हमारे जो जसनाथ जी महाराज के जो जागरण होते हैं और सूरजनाथ जी महाराज प्रत्येक जागरण में जो लगभग महीने में 20 दिन आपका प्रबोधन होता रहे, तो प्रवचनों में भी गुरु महाराज यही संदेश देते हैं सभी हमारे जसनाथ संप्रदाय के लोगों को और अन्य सभी लोगों के लिए कि भी नशे की प्रवृत्ति से आप दूर रहें। अगर आपके जीवन को आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहला जो नियम है, काम है, वो यही है कि किसी प्रकार का नशा नहीं करें। अगर आप नशे से दूर होते हो तो केवल आप नहीं, अपने परिवार को, समाज को, देश को, राष्ट्र को, सभी को आप अच्छा करते हो, विकसित करते हो और उसमें विकास होता है। तो मेरा सभी लोगों के लिए यही संदेश है कि भाई नशे की जो प्रवृत्ति है उसे आप दूर रहें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू वेरी मच।

0: हर दिल में उजाला हो, हर घर में हो प्रकाश, नशा मुक्त हो भारत, यही है सच्चा प्रयास। अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के अध्यक्ष श्री प्रकाश बेनीवाल ने हमें बताया।
1: प्रकाश जी, आप क्या करते हैं?
2: वैसे मैं सामाजिक संगठन जो है हमारे जाट महासभा, अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा, उसमें प्रदेश अध्यक्ष पद पे अभी वर्तमान में कार्य कर रहा हूँ। और पीछे गहलोत साहब की सरकार में स्टेट कमेटी के अंदर राजस्थान राज्य खेल परिषद राजस्थान सरकार का मैं डायरेक्टर भी रहा हूँ और माइनिंग विभाग का भी मैं सदस्य रहा हूँ पाली डिस्ट्रिक्ट का।
1: आप रहने वाले कहाँ के?
2: मेरा गाँव शिली पड़ता, छोटा ही गाँव है, जोधपुर जिले का लास्ट गाँव पड़ता है और नागौर का बॉर्डर लगता है हमारा।
1: आज यहाँ इस जसनाथ जी के जो आसन में ये एक नशा मुक्ति का शिविर का समापन हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं और इस आसन के बारे में बताएं।
2: ये वैसे हम लोग परंपरा से जसनाथ जी महाराज के जुड़े हुए हैं और हम पांचला सीधा जो धाम है हमारे, ये जैसे हम जैसे जसनाथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, ये परंपरा से हमारी पीढ़ियों से हम इसी धाम से जुड़े हुए हैं और हम ये कह सकते हैं कि हम बड़े भाग्यशाली है कि भाई हम इस जसनाथ परंपरा के अंदर और जसनाथ संप्रदाय के अंदर हमें ये अनुयायी बनने का अवसर मिला और बहुत भाग्यशाली है। और ये प्रत्येक साल यहाँ जो गुरुजी अपने आसन के खर्चे पे जो कैंप करवाते हैं, ये एक मेरे हिसाब से राजस्थान नहीं अपने संपूर्ण भारत कह सकते हैं, इस प्रकार का कैंप कहीं हमने नहीं देखा। हम सामाजिक संगठन के माध्यम से बहुत पश्चिमी राजस्थान के अंदर आना जाना रहता है और जोधपुर में हम रहते हैं तो काफी जो नशा मुक्ति शिविर नशा मुक्ति कैंप चलाते हैं उन लोगों को वहां जाने का अवसर मिलता है, परंतु यहाँ जो व्यवस्था और जिस प्रकार छोड़ाने का जो योग के माध्यम से प्लस जिस प्रकार जो एक पूरा एक पैराग्राफ तैयार करके भाई किस आदमी को कैसे छोड़ाया जाता है, ये बड़ा एक अलग उदाहरण है। और यहाँ 100% जो आदमी रह गया मन बना के उस वो आदमी छोड़ ही देता है। हम काफी सालों से मैं यहाँ आता हूँ और मैं भी काफी मेरा यहाँ रहता है और मैं मेरी तरफ से भी काफी ये जो लोग आते हैं यहाँ पे तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है और इस बात के लिए मैं पूरे प्रदेश

0: के लोगों, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना भी चाहता हूं कि अगर यहाँ इस आपको अवसर मिलता है इस धाम में, अगर मान लो नशा मुक्ति शिविर में नशा छोड़ने का, तो उन लोगों को 100% आना चाहिए। यहाँ की जो तपोभूमि है संतों की, यहाँ जीवित समाधियां भी है, इस धाम के रिलेटेड 7 जीवित संतों की समाधि है, तो सब लोगों को मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सब लोगों को यहाँ आके इस शिविर में भाग लेना चाहिए प्रत्येक साल के अंदर।
1: और क्या कहना चाहेंगे आप?
0: बस बाकी तो मैं आप पधारे और आपने एक बहुत बड़ा एक इस प्रकार का ये जो संदेश जो आपके माध्यम से जाएगा, ये मैं बहुत अच्छी बात मानता हूँ। और बाकी आप भी समय समय और सभी लोगों से भी निवेदन है मेरा कि आप भी यहाँ इस पवित्र धाम पे आएं, और कहीं न कहीं अगर मान लो जो नशा जो फैल रहा है विशेष तौर से ग्रामीण इलाके के अंदर ज्यादा फैलता है, वो लोग यहाँ आएंगे ना उनको महसूस होगा कि अपने को नशा नहीं करना चाहिए, और यहाँ उनको ऐसी एक एनर्जी मिलेगी तो नशा ऑटोमेटिक इंसान की वो होगी। तो ये मेरा निवेदन है कि भाई ये आप लोगों को यहाँ आना चाहिए और यहाँ आके और इस प्रकार की एक मुहिम में साथ देना चाहिए।
1: विशेष रूप से आज की जो युवा पीढ़ी है उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
0: युवा पीढ़ी को विशेष मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, और जो नशे की प्रवृत्ति जो अभी फैली है, जो नशा अभी पीछे 11 तारीख को कैंप चालू हुआ था तो मैं 3 दिन यहाँ रुका था, तो यहाँ क्या बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए थे जो अफीम डोडा, ये तो एक नशा चलो ठीक है, उसके अलावा जो सिंथेटिक जो नशे है वो युवाओं को खत्म कर रहा है बिल्कुल। तो यहाँ कुछ एक विशेषज्ञ थे, उन लोगों से मेरी डिस्कशन हुई थी, उन लोगों ने ये कहा था कि ये ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल से ज्यादा ये लोग जी नहीं पाएंगे, कुछ लोग ऐसे भी थे। तो मेरा युवाओं से निवेदन है कि आप किसी भी हालत में, चाहे आप पढ़ाई भी नहीं करें, अपना खान पान भी, चाहे नशे के अंदर आपको नहीं पड़ना, किसी हालत में नशे से दूर रहें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार।
1: श्रोताओं, ये जो आसन है जसनाथ जी महाराज का, तो इस आसन के, इस धाम के जो मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है उन्हीं के जो पदाधिकारी हैं उनसे हम चर्चा करते हैं। सर, आपका नाम?
2: किशनलाल बेनीवाल।
1: किशनलाल जी, आप क्या काम देखते हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है यहाँ पे?
2: देखो, वैसे तो हमारे कोई विशेष जिम्मेवारी नहीं है, बट गुरु महाराज की कृपा से कुछ हम यहाँ पे, गुरु महाराज जैसे आदेश होता है तो हमारे एक भोजनशाला समिति बनी हुई है, माँ प्यारल भोजन सेवा समिति, उसमें देख रेख का काम मैं देखता हूँ, जैसे कोई व्यवस्था के अंदर बारे में, क्योंकि हमारी भोजनशाला जो है वो 24 घंटे निःशुल्क भक्तों को सेवाएं उपलब्ध कराती है। हमारे यहाँ पे आश्रम में रुकने की व्यवस्था है, और आना जाना कोई भी भक्त आता है, छत्तीसगढ़ कौम का कहीं से भी आता है दूर दराज से, उनके लिए निःशुल्क चाय पानी भोजन रहने की सारी व्यवस्था निःशुल्क रहती है।
1: आज की इस जो नशा मुक्ति का जो शिविर है जिसका समापन है, उसके बारे में आप जानकारी दें।
2: वैसे तो नशा मुक्ति का शिविर हमारे गुरु महाराज के सामने में हमेशा लगता है, हर साल लगता है, करीब पिछले 5-6 साल से कंटिन्यू लग रहा है, और उसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं। स्टार्टिंग में जैसे 150-200 आदमी स्टार्टिंग में आते हैं, तो अभी लास्ट समापन है, तो इसमें जैसे हमारे बड़े बड़े अधिकारी भी आएंगे और उनको मोटिवेट करेंगे और उनको कुल भेंट देंगे या गुलदस्ता देंगे, उनको सम्मानित करेंगे।
1: ये जो नशा मुक्ति का जो शिविर है यहाँ पे, इनके जो साथ में रहते हैं उनको भी आप फ्री सेवा देते हैं खाने पीने की?
2: हाँ, इनके साथ में जैसे कोई इनके भाई है, बंधु है, परिवार को रहना चाहता है, रहते भी हैं, उनकी सारी सुविधा निःशुल्क रहती है।
1: अगर कोई नहीं रहता है तो फिर उनकी क्या व्यवस्था रहती है, क्या अकेले व्यक्ति को छोड़ सकते हैं जो नशा करता है?
2: हाँ बिल्कुल, बेधड़क होकर छोड़ सकते हैं, गुरु महाराज सामर्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे जो विशेष टीम है इनके ऊपर वो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, सरकारी डॉक्टर्स हैं, बाहर से भी है, फॉरेनर्स भी है इनके देखरेख में, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।
1: कुछ फॉरेनर्स भी आते हैं रिसर्च करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं।
2: देखो, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बट आते जरूर हैं, और गुरु महाराज के सामर्थ्य में वो यहाँ पे सेवाएं देते हैं, और अभी भी है ना शायद 1-2 फॉरेनर्स है जो कंटिन्यू जो नशा मुक्ति है ना उनके संपर्क में है, उनको सुबह शाम योगा भी कराते हैं, मेडिटेशन भी देते हैं और उनके स्वागत भी करते हैं।
1: योगा सुबह कितने बजे होता है?
2: करीब 6:30 बजे, 6:30 से 7:30।
1: उसके बाद में क्या दिनचर्या रहती है?
2: ये दिनचर्या फिक्स है यहाँ पे, सुबह जैसे पहले योगा हो गया, फिर नाश्ता पानी हो गया, फिर रेस्ट हो गई, फिर छोटा मोटा व्यायाम हो गया, फिर दिन को जो भी एक्टिविटी होती है हमारे आश्रम की तरफ से इनके लाइक वो सारी होती है।
1: आजकल नशा हर व्यक्ति में देखने को, ज्यादातर देखते हैं युवा साथी जो है वो ज्यादा इसका सेवन करने लग गए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखो, मैं इस बात से भलीभांति जानकार हूँ क्या, क्यों मैं सिटी में रहता हूँ, नशा इतनी खतरनाक बीमारी है जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते, और उसका जो नुकसान है ना उसको आप किसी भी एंगल से पैमाने में नहीं नाप सकते, इतना खतरनाक नुकसान है। जो युवा है वो तो बिल्कुल ही अपने मतलब समझ लो जीते जी, माँ बाप को समझ लो मतलब घायल कर देते हैं, खुद भी मरे जैसे हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है, नशा बिल्कुल ही बेकार है, कोई काम करने। इसी क्रम में गुरु जी हर साल लाखों रुपए लगा के अपना टाइम दे के इनको सुधारने के लिए जगह जगह प्रवचन भी देते हैं, जगह जगह लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं।
1: कोई व्यक्ति पूरी तरह से नशा छोड़ देता है तो उसके जीवन के बारे में थोड़ा बताएं, वो क्या वापस अपने अनुभव लेकर आता है यहाँ पर इस धाम में?
2: देखो, जिसने पूर्ण तरह का नशा छोड़ दिया ना, वो तो 3 पीढ़ी गुण गाता है, उनके पूरा परिवार, उनके माँ बाप, उनके पड़ोसी।

0: उनके रिश्तेदार इतना दुआएं देते हैं कि भगवान गुरु जी का भला करें, आश्रम का भला करें कि हमारा एक नरकी जिंदगी से मुक्ति मिल गई।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर, थैंक यू।
2: एक कदम जागरूकता का और बदल गई कई जिंदगियां। श्रीदेव जसनाथ ट्रस्ट द्वारा चलाए गए नशा मुक्ति अभियान ने आज अनेक घरों में फिर से खुशियां लौटाई हैं। अब समय है इस सफर को आगे बढ़ाने का। आइए शामिल हों श्री जसनाथ ट्रस्ट श्री जसनाथ आसन पांचला सिद्धा में। छोड़ दो ये जहर, अपना लो नई राह, नशा नहीं अब जीवन बने चाह, नशे को अलविदा और जिंदगी को सलाम। इसी दौरान जिन्होंने नशा मुक्ति शिविर में जिन प्रतिभागियों ने भाग लिया और नशा छोड़ा, उनमें से ओम सिंह जोधा ने अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए।
3: 7-8 दिन हम पागल की तरह थे, ऐसे ऐसे थे, कभी सोचते मर जाएंगे, कभी सोचते ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद में जब योगा टीम ने, ये जो डॉक्टरों की टीम है, यहाँ पर आई हुई बहनें हैं हमारी, इन्होंने पूरा हमें वो प्यार दिया जो एक माँ प्यार देती है, और इन्होंने जो भाइयों ने हमारे को प्यार दिया, और उसमें उसके बाद में गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला। 4th दिन मेरे को यहाँ पर, मैं खुद आपके सामने मेरी साझा बात बताता हूँ, कोई तपोभूमि में झूठ नहीं बोलूंगा। 4th दिन मेरे को गुरु महाराज के दर्शन हो गए थे सूरजनाथ जी के, और मैंने मेरी टीम को कहा, और अर्जुन सर की टीम है, जो अर्जुन सर की टीम को है, मैं बार बार इनको दंडवत प्रणाम करता हूँ, मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरी पूरी टीम कर्मी और योद्धा की टीम से, जिन्होंने 4th दिन मेरे को ये पता चल गया कि एक योगा एक ऐसी क्लास है और ये तपोभूमि एक ऐसी चीज है, और जो गुरु महाराज सूरजनाथ जी का आशीर्वाद है, उस वो मन में ठान लेगा वो नशा क्या है, और ऐसा मार्ग पर चलेगा कि आने वाले पीढ़ियां और आने वाले युवाओं को संदेश देंगे कि ये नरक का मार्ग है मेरे युवाओं, और नरक में जब युवा जा रहे हैं, ये बूढ़े बुजुर्ग और मेरी बहनें नहीं जा रही है, मेरे जैसे युवा 17-18 साल के, 20 साल के, मैं मेरी 20 साल 18 साल की उम्र में अफीम सीख गया था, और आज मैंने 25 साल बाद में नरक से मैं स्वर्ग में जब आया, जब इस आसन की पवन धरा में मैं रहा, यही हूँ, जन्मा यही हूँ, लेकिन मेरे को भी भाई ज्ञान नहीं हुआ। जब आसन के अंदर प्रवेश किया और 4 दिन रहा और यहाँ के जो सिस्टम देखे, मैं मेरी आत्मा से मैंने सोचा कि मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ। मैंने 46 साल में कोई कंधे कर्म किए पीछे भूमि में, पिछले जन्म में किए होंगे, लेकिन 46 साल बाद में जब तपोभूमि और गुरु महाराज का आश्रम और यहाँ पूरी टीम का और जो योगा क्लास का उनका मेरे को आशीर्वाद मिला, पूरी टीम को, उन्होंने हमें ऐसे गुरु मंत्र दिए, ऐसी ऐसी बातें सिखाई जो हम कभी भी जिंदगी में 46 साल में कभी भी नहीं सीख पाए।
2: जसनाथी पंथ में सत्य, अहिंसा और संयम को सर्वोच्च माना गया है। यह संप्रदाय समाज में नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और नैतिक जीवन का संदेश भी देता है। यहाँ की हर रेत में भक्ति बसती है और हर लहराती लौ में विश्वास झलकता है। आप हैं डॉक्टर भेराराम बेनीवाल।
4: मैं बेसिकली जोधपुर के शिली गांव का निवासी हूं और वर्तमान में कॉलेज शिक्षा में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत।
1: बहुत अच्छी बात है, तो आप थोड़ा बताएं, अनुभव बताएं अपना, आपने इस पे रिसर्च किया।
4: जी सर, मेरा रिसर्च जोधपुर के हिंदी विभाग जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से रहा है, और वहाँ मैं पहले से ही तय करके गया था कि रिसर्च मुझे करना है तो जसनाथी संप्रदाय पे ही करना है। इसकी मूल वजह है कि इस संप्रदाय की कुछ शिक्षाएं ऐसी है जो आम पब्लिक के सामने अभी तक उजागर नहीं हुई, तो और दूसरी बात, मैं इस संप्रदाय से जुड़ा हुआ हूँ पारंपरिक रूप से, तो मेरा भावनात्मक जुड़ाव भी था। और इस रिसर्च में मैंने पांचला सिद्धा, बमलू, लिखमा देसर, मूल धाम जो कतरिया सर है, लील सर है, इन सभी धामों की विजिट की, और हल्का हल्का मुझे साहित्य भी मिला। इस संप्रदाय की सबसे बड़ी, यूं समझें तो एक कमी समझ लें कि लिखित साहित्य बहुत कम है। मुझे यहाँ के जो पीठाधीश है गुरुजी, मेरे आदरणीय गुरुजी सूरजनाथ जी महाराज से बहुत अच्छा सहयोग मिला। यहाँ जो ताम्र पत्र है या जो भी ग्रंथ है, उन ग्रंथ से मेरे साथ घंटों घंटों बैठ के पूरी चर्चाएं की, मेरे रिसर्च में बहुत बड़ा योगदान है। जिन गुरुजी के अधीन मैंने रिसर्च की है, उन्होंने तो कहा कि भाई मैं ज्यादा इस संप्रदाय से परिचित नहीं हूँ, आपको इस पे ज्यादा वर्क करना है, मैं तो फाइनल टच दे दूंगा। और इस संप्रदाय की जो शिक्षाएं हैं उसमें जो वर्तमान के समय में सबसे अधिक जो पॉपुलर है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ इस संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय है, विष्णुओं के जो धर्म गुरु है, जाम्बो जी का जो संप्रदाय है, उन्होंने मूलतः पर्यावरण के संदर्भ में बहुत अच्छा काम किया है। आज भी कई ऐसे पर्यावरण योद्धा है जो अधिक से अधिक पौधारोपण कर रहे हैं, तो ये मूलतः कहीं ना कहीं जाम्बो जी, जसनाथ जी की शिक्षाओं का प्रसारी है।
1: अब बात करते हैं नशा मुक्ति पर, क्या कहना चाहेंगे आप?
4: जी, नशा मुक्ति शिविर यहाँ पर सूरजनाथ जी महाराज, नागौर प्रशासन और केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर के सहयोग से इस बार आयोजन हो रहा है। मैं भी इस शिविर में एक दिन प्रकाश जी भाई साहब के साथ विजिट करके गया। यहाँ जो 50 से अधिक जो साथी यहाँ कार्यरत थे, उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं बताई, और शिविर बहुत अच्छा है, और राजस्थान के मुख्यतः चूरू, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, इन जिलों के जो नशे में पीड़ित युवा है, जिनकी आयु 25 से लेके 45-50 के बीच है,

0: कहते वो यहाँ थे 50+, उनकी जो दिनचर्या सुनी हमने 2 घंटे, बहुत शानदार व्यवस्था है यहाँ प्रशासन की तरफ से और जसना संप्रदाय की तरफ से। और एकमात्र मेडिसिन का तो मुश्किल से 4-5 दिन सहयोग लिया जाता है, बाकी पूरी जो योग के थ्रू उनमें शारीरिक ऊर्जा प्रदान करके जो अफीम डोडा या जो भी नशे हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बेहतरीन कार्य है।
1: अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से?
0: मेरा ये संदेश है कि सबसे पहले तो प्रत्येक घर में जो भी बालक बालिका है वो अच्छे से अच्छे शिक्षा ग्रहण करें, जसना जी की शिक्षाओं को पढ़ें। मेरा खुद का जो रिसर्च है जसनाती संप्रदाय साहित्य साधना और विचारधारा, ये शोध गंगा पर उपलब्ध है, कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। प्लस किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रति बारी 10-15 वृक्ष लगाएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।

0: जब समाज जागता है तो बुराई खुद हार जाती है। नशा मुक्ति की इस मुहिम में आपका साथ ही असली ताकत है। श्रीदेव जसनाथ ट्रस्ट श्री जसनाथ आसन पांचला सिद्धा का एक ही संदेश, नशा छोड़ो जीवन जोड़ो। हिम्मत से जो लड़ जाए वही असली वीर है। नशे को हराने वाला ही सच्चा शेर है। आइए बदलाव का हिस्सा बने और लें एक संकल्प नशे से दूर रहने का। आज युवा शक्ति को बचाने के लिए गांव-गांव ढाणी-ढाणी जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए डॉक्टर अदिति उपाध्याय आईपीएस ने हमें बताया,
1: पुलिस का काम है हम सप्लाई चेन में, जहां से ये नशे के हर मादक पदार्थ सोसाइटी में आ रहे हैं उसको काटे, लेकिन ये एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं है। समाज, इसके सारे के सारे स्टेक होल्डर, सारे प्रतिनिधि जब मिलके अपना दायित्व समझेंगे कि हम सबको मिलके नशे के अगेंस्ट ये लड़ाई लड़नी है, तब जाके नागौर नशा मुक्त होगा। ऐसी लड़ाई जो आज एक महीने आपने लड़ी है, एक लाइन है मैं हर जगह शेयर करती हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है, शाहरुख खान ने कही थी कि मौका पाने के लिए मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन मौका मिलने के बाद मेरे से ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता। आज वो उस मुकाम पे हैं, आज आप भी इसी मुकाम पे हैं, आपको ये मौका मिला है यहाँ तक आने के लिए। जैसे कि ओम प्रकाश जी ने कहा, ओम जी ने कहा कि 7 दिन तो ऐसा लगा अब जान ही निकल जाएगी, पता नहीं क्या हुआ वो 7 दिन। हमें भी थाने पे बहुत कॉल आए कि हमें बहुत मदद चाहिए, जाप्ता चाहिए, यहाँ पे लोगों को बहुत बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये सब कुछ आप इतनी कड़ी लड़ाई लड़ के आए, ये शायद मेरी अब तक की समझ में सबसे आसान सफर था। असली लड़ाई इस 4 दीवारी के बाहर जाके आपको लड़नी होगी, जब समाज में फिर से वो लोग आपके सामने आएंगे जो आपको उसी राह पर वापस लेके जाना चाहेंगे। बहुत ज्यादा समय मेरा तो नहीं है अब खिफसर में बचा, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि नागौर पुलिस हमेशा कोशिश करती रहे, ऐसे लोग जो समाज में अवैध मादक पदार्थ लेकर आ रहे हैं उनके अगेंस्ट हम कार्रवाइयां करती रहे, हम उन्हें रोकते रहे, लेकिन उसके लिए हमें आपके साथ की भी जरूरत है। यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं, अगर आपको इसके बारे में कोई सूचना मिलती है, कोई खबर मिलती है, तो जरूर हम तक पहुंचाएं, क्योंकि ये लड़ाई आपकी हमारी हम सबकी है। और मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज यहाँ से बहुत ज्यादा प्रेरणा लेके जा रही हूँ। लगा था कि बहुत एक औपचारिक तरीके से आऊंगी एक नशा मुक्त प्रोग्राम के लिए, सबसे बातें करूंगी, लेकिन धीरे धीरे नागौर में रह के ये बहुत भावनात्मक जुड़ाव मेरा हो चुका है समाज से, हर तरीके के नशे को दूर करने का, और यहाँ आज मैं बहुत बहुत ज्यादा प्रेरणा लेके जा रही हूँ आप सभी से मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए।
0: जिनकी वाणी समाज को नई दिशा देती है, पूज्य सूरजनाथ जी महाराज जो नशा मुक्त भारत का सुंदर सपना जन जन तक पहुँचा रहे हैं। चेहरे पर सादगी, हृदय में अपार ज्ञान रखते हैं, हर दुखी इंसान के लिए सम्मान रखते हैं। सूरजनाथ जी महाराज जैसा व्यक्तित्व जहाँ मिलता है वहाँ खुद भगवान भी मुस्कान रखते हैं। आप हैं गुरुजी सूरजनाथ जी महाराज, आपने हमें बताया।
2: जैसा कि मैम ने बताया, इस संपूर्ण कार्यक्रम के जो किरदार है, जो मुखिया है, जिनके लिए आयोजन हुआ, ये जो नशा मुक्त होके समाज में उन्हें स्थापित होने के लिए, उन्हें बढ़िया काम करने के लिए जो सम्मुख उपस्थित है, सभी मेरे भाई लोग, बहने, बच्चे, सभी लोग ये कह रहे हैं कि मैं जो है इस काम में कर, लेकिन ऐसी बात नहीं, ये अपन सभी लोगों का काम, और खास तौर से आप लोगों का जो काम है, जो यहाँ पे नशा छोड़ने के लिए उपस्थित हुए हैं, उन्होंने जो है सबसे बड़ा प्रयास किया, क्योंकि आप लोगों के अंदर बहुत बड़ी हिम्मत थी, मृत्यु को जीतने की हिम्मत थी, तब आप लोग इससे उभर पाए, क्योंकि नशा जो है वो बहुत ही गंभीर समस्या है, और उसके साथ में जो स्थिति है वो भी बहुत ही विकट रहती है।

0: क्योंकि लोग जो है अपने परिवार से ही चोरी कर लेते हैं, नशे के लिए उनको पैसा चाहिए लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, जमीन बेच देते हैं। तो आप ये समझिए कि ये कितनी गंभीर समस्या है और कितनी जो है उनको रहती है कि मुझे लेना ही है। तो ऐसी स्थिति में आपने ये निर्णय लिया कि मुझे जीवन को सुधारना है, जीवन को जो है व्यवस्थित करना है और समाज में अपना योगदान देना। तो सबसे बड़ा जो है आप लोगों की ये हिम्मत है कि आपने हिम्मत करके और इस जगह पे उपस्थित हुए, ये बहुत बड़ा निर्णय है। और उसके बाद में जो सारी व्यवस्थाएं हैं, अपने प्रशासन का सहयोग रहा, मैम का सहयोग रहा, अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जो लोग जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनका सहयोग रहा, डॉक्टर साहब यहाँ विराजित है तो डॉक्टर साहब ने 24 घंटे मतलब दिन और रात की बिना परवाह किए हुए हमेशा उन्होंने सेवाएं दी। तो ये अपना जो है सामूहिक प्रयास है, कोई एक व्यक्ति इतना बड़ा काम नहीं कर। तो सबसे बड़ा प्रयास तो जो है आप लोगों ने किया और हम लोगों ने उसमें सहयोग किया, साथ जरूर दिया। तो अपन लोगों ने ये जो यात्रा है नशा मुक्त होने की, ये सामूहिक यात्रा, आप लोगों को जो है बहुत बहुत बधाई है कि आप लोग उस जो काल कोठरी है उससे और बाहर निकलने के अंदर जो चुनौतियां भी बहुत आई। मैम ने जैसा बताया था कि शुरू के अंदर तो ये स्थिति थी कि उनको कुछ होश आवास भी नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी आप अडिग रहे, दृढ़ रहे। और उसमें हमारी जो टीम है यूनिवर्सिटी से, उनके साथ में भी कई बार चर्चा होती है, उसमें सबसे बड़ा जो आशीर्वाद है वो प्रकृति का, परमात्मा का और इस सिद्ध स्थल का रहा कि हम सभी लोग मजबूती से इस काम को कर पाए। अभी जैसे कि जो आपका काम है वो अभी से ही जो है एक स्थिति में दूसरे रूप में प्रारंभ होगा। और आपका ये जो अनुभव है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जिन्होंने इतनी हिम्मत की है वो लोग और ज्यादा बढ़िया तरीके से समाज के लिए उपयोगी हो सकते, आप अपने जीवन के लिए उपयोगी होंगे, परिवार के लिए उपयोगी होंगे और संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी होंगे। आपके साथ में एक अनुभव और जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग जो है सामान्य जो अपने समाज के लोग हैं तो उन्होंने तो क्या है कि एक चीज देखी और आप लोगों ने दो चीजें देखी। आपने अंधेरा भी देखा है, मृत्यु के बहुत करीब देखा है, जो विष है उसमें से आप ऊपर निकले हैं, अमृत की जो यात्रा है, प्रकाश की जो यात्रा है, तो वो चीज आपने देखी।
1: नशा करने वाला व्यक्ति अकेला नहीं हारता, उसके साथ पूरा परिवार टूट जाता है। एक माँ की नींद, एक पिता की उम्मीद और एक बहन की मुस्कान भी बिखर जाती है। नशा मुक्ति स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध समाज की नींव है। यदि हर व्यक्ति ये संकल्प ले कि वो नशा नहीं करेगा और दूसरों को भी रोकेगा तो हमारा देश अधिक मजबूत और जागरूक बन सकता है। कार्यक्रम के अंत में नशा मुक्ति पर संकल्प लेते हुए सभी उपस्थित जनों को शपथ भी दिलाई गई। ये थी श्री जसनाथ धाम पांचला सिद्धार्थ में आयोजित निःशुल्क आवासीय अफीम नशा मुक्ति अनुसंधान शिविर की रेडियो रिपोर्ट। इसमें हमें तकनीकी सहयोग दिया जितेंद्र कुमार ने, वाचक और प्रस्तुति सहयोग मोहम्मद शरीफ छीपा का, प्रस्तुतकर्ता थे अशोक कुमार गोयल। अब इजाजत दें, फिर हाजिर होंगे एक और नए कार्यक्रम के साथ। तब तक नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रीदेव जसनाथ ट्रस्ट श्री जसनाथ आसन पांचला सिद्धा।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे ग्राम पांचला सिद्धा में आयोजित नशा मुक्ति शिविर की रेडियो रिपोर्ट। श्रोताओं, इस प्रायोजित कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रीदेव जसनाथ ट्रस्ट श्री जसनाथ आसन पांचला सिद्धा खिमसर। वाचक और प्रस्तुति सहायक में थे मोहम्मद शरीफ छिपा और प्रस्तुतकर्ता थे अशोक कुमार गोयल। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युवावाणी।

जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी लवली गुड इवनिंग। दोस्तों, आपने ट्यून किया 103.7 MHz पर। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा दिलों की धड़कन युवाणी में अपनी रेडियो दोस्त करीमा सोनी के साथ। दोस्तों, कार्यक्रम है आज शनिवार का। फ़ोन करें और गीत सुनें। तो अगर आप भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो तुरंत अपना मोबाइल उठाइए और डायल कीजिए 015-82-240-168 और अपनी फरमाइश हमें बताइए और सुने अपने कार्यक्रम युववाणी में अपनी पसंद का गीत। हमारी फ़ोन लाइन चालू है 5:10 तक, तो तुरंत उठाइए और फ़ोन लगाइए। दोस्तों, बात करें आज की बात की, तो जल संरक्षण जो है वो समय की बहुत बड़ी मांग है। पृथ्वी पर जीवन के लिए जल अमृत है, और मीठे पानी की अगर बात करें उपलब्धता की, तो दोस्तों ये सिर्फ 3% है, जो कि बढ़ती जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट गंभीर हो गया है। इसलिए पानी बचाना और उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो चुका है। आज हम सभी को बताएं दोस्तों कि जल कितना हमारे लिए आवश्यक है और उसको हमें संरक्षित करना होगा। ये हमारी अगली पीढ़ी के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, जल जो है वो भविष्य की सुरक्षा के लिए हमें बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा भी दोस्तों ऐसी खूब सारी है पॉइंट जिस पे हम चर्चा करेंगे, पर कार्यक्रम है आपका फ़ोन करें गीत सुने। तो उसमें हमें पहला कॉलर हमें कॉल कर रहे हैं राठौड़ी कुआं नागौर से, योगिता का फ़ोन है और वो सुनना चाहते हैं फिल्म सुल्तान का ये गीत।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि जल संरक्षण हमारे समय की, वर्तमान समय की बहुत बड़ी मांग है, और ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो पर्यावरण संतुलन के लिए भी जल की जो बर्बादी रोकने से ऊर्जा की बचत होगी और कार्बन फुटप्रिंट है वो कम होता है। और हम बात करें कृषि और सिंचाई के लिए भी, निरंतर जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए जल संरक्षण

बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसको हम संरक्षित करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? तो सबसे बड़ा उपाय, तो हम बात करें कि हमारे जो एरिया का ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन जा चुका है, हम डेंजर जोन में आते हैं। तो हमें इसको बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, यानी कि वर्षा जल संचयन करना चाहिए। आज हम देखते हैं शहरों में लोग बाग बड़े बड़े घर बना रहे हैं, पर वो उस वर्षा जो वर्षा का पानी है वो उसको इकट्ठा नहीं करते, बाहर ऐसे ही सड़कों पर बहने देते हैं। तो सभी से ये निवेदन है कि वो एक टैंक जरूर बनाएं, जिससे कि वो बरसात का जो पानी है उसको इकट्ठा कर सके और उसको रीयूज़ कर सके। और इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे, जैसे सबके घरों में आरओ लगा होता है, तो उसका जो वेस्टेज पानी निकलता है वो ऐसे ही नालियों में बहा देते हैं, तो उसको भी आप रीयूज़ कर सकते हो, उससे आप पौधों में पानी दे सकते हो, नहीं तो आप साफ़ सफाई में काम ले सकते हो, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, किसी में भी आप काम ले सकते हो। तो अपनी जो ये थोड़ा सा जो जल है उसको संरक्षित करने के लिए छोटे छोटे कदम हमें उठाने चाहिए। दोस्तों, आगे इस पर चर्चा और जारी रखेंगे। अभी हमारे साथ सेकेंड कॉलर जुड़ चुके हैं, वो हैं चांपासर नागौर से फ़ोन कर रहे हैं प्रेम प्रजापत। उनकी फरमाइश है अखियों के झरोके से का ये गीत।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे जल संरक्षण के उपाय की, तो उसमें हमने बात की रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। और इसके अलावा हम देखते हैं कि कई बार ब्रश कर रहे हैं या शेव कर रहे हैं, तो उस टाइम हम देखते हैं कि नल खुला छोड़ देते हैं और पानी ऐसा ही बहते रहता है। तो हमें कुछ छोटी छोटे कदम उठाने हैं कि अगर आप ब्रश कर रहे हो, शेव कर रहे हो, तो कृपया नल बंद रखें, जिससे कि पानी व्यर्थ ना बहे। और हम देखें कि नहाने के लिए भी हम शावर की जगह अगर बाल्टी का यूज़ करेंगे, तो एक लिमिटेड मात्रा में हम पानी को यूज़ करेंगे, नहीं तो हम देखते हैं कि शावर में हम बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट कर देते हैं। तो ये छोटे छोटे कदम हमें उठाने हैं। और साथ ही हम बात करें, खेतों में भी पारंपरिक विधि के बजाय अगर ड्रिप सिंचाई और फव्वारा सिंचाई का इस्तेमाल करें, तो पानी संरक्षित किया जा सकता है। दोस्तों, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं मेड़ता सिटी नागौर से। इनकी फरमाइश है राम गोपाल पूर्वी और ध्रुवित, इनकी फरमाइश है प्यार झुकता नहीं का ये गीत।

दोस्तों अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, डांडेरिया खुर्द से फ़ोन कर रहे हैं कैलाश दानचारण। इनकी फरमाइश है फिल्म हाथी मेरे साथी का ये गीत।

दोस्तों, अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। मुंडवा से हमें फ़ोन कर रहे हैं कैलाश राम। इनकी फरमाइश है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ये गीत।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpress@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।
4: दोस्तों, अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है मोहम्मदपुरा नागौर से। फोन कर रहे हैं मुन्ने खां। इनकी फरमाइश है फिल्म दाग द फायर का ये गीत।

दोस्तों अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है लोहारपुरा तोप चौक से, फ़ोन कर रहे हैं मोहम्मद हसन, और सेम फरमाइश अजमेरी गेट नागौर से इकबाल खां सिंदल की फरमाइश है फिल्म बगावत का ये गीत।

दोस्तों, समय अभाव के कारण हम कुछ फरमाइश नहीं ले पाए, जिनमें लोहारपुरा की द्वई कॉलोनी नागौर से दिलशाद अहमद, लोहारपुरा से ही नियाज पेंटर, शास्त्री नगर नागौर से कुंभाराम चावला, लूणदा से लाडू, राठौड़ी कुआ से नूतन और घटलिया सर नागौर से माणक राम, इनकी हम फरमाइश समय अभाव के कारण नहीं ले पाए।

कनहट या क्या करे, एक शांति प्रिय, तो ऐसा मधुर आवाज वे हर कलाकार री वहीं भी देखो आपरी एक अनूठी पहचान है। चाहे अपना लोक कलाकार है किता है, अपने ठेरी संस्कृति है, अपने ठेरा आचार विचार है, ए भी तो आपरे बुजुर्गों, ए भी तो आपरे परिवारों ही सीखे है। और इन सब सीखने वास्ते एक क्या करे कि प्रक्रिया तो होवे ही होवे है, लेकिन अपना जी का आचार विचार है, अपनी जी की बाता है, अपना जी का मन भावन, कोई भी काम करना है दिमाग हूँ तो वो आपने ज़रूर करना चाहिए। और जो मैं अपने बार बताई कि जी का घर में छुट्टियाँ होया है और सब खुशी हूँ, सब हर्षोल्लास हूँ, सब एक दूसरे आ रहा जा रहा है, तो इनमें बहुत ही खुशी की बात है। और एक छोटो सो समय है अपन वास्ते, जिन टाइम थोड़ा सा बच्चा भी फ्री हो जावे पढ़ाई हूँ, थोड़ा सा माता पिता हो जावे, अब बहना है, भाभियाँ है, कई क्या करें ननंद भाभी, जो भी रिश्तों आपस में है, वे सब अगर थोड़ा दिन खुश हो जाए, अपनी दुख सुख की बात कर ले, तो वही तो परिवार है। इमें ही तो अपने हर चीज़ ने संवारनी है, इन्हों ही तो अपने आगे बढ़ना है। अपनी शिक्षा की बात हो, चाहे अपने संस्कृति हो, चाहे आचार विचार हो, चाहे अपने कोई भी कार्य क्षेत्र हो, उमें आप कोई भी बात करा तो इनसे एक दूसरे ने खुलने कर सका, कटे मन री बात किया करें वहाँ अठे आप कर सका, है ना। तो ऐ सब ने एक अहमियत देनी जरूरी है, रिश्ता री जी अहमियत है उन्हें अपने समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। आज आप मान रहे हैं कि बहुत भागदौड़ की जिंदगी है, चाहे वो बच्चा रही हो, बड़ा रही हो, और तो और आजकल अभी बहुत खुशी की बात है कि बुजुर्ग भी आपरा अच्छा अच्छा सहयोगी मित्र साथी बनावे, जिनसे कि वह भी टाइम पास हुए, है ना, वह भी पार्क में घूमने जावे या अपने खेत खलिहान के बारे हताई करे या क्या करे कि वह आप चाहे कोई भी टॉपिक हो, कोई भी बात हो, पर थोड़ा सा आचार विचार वे बात रहा समझने तरीको, या वह आपकी जिकी एक्सपीरियंस वह जिका वह बताता रहे कि भाई माने मैं यूँ करिया वो करिया, तो हो सके उनमें अपने कोई नई तकनीक ध्यान पड़ जा, कोई नई अड़ी टेक्नोलॉजी जिको आप सोच रहे हैं और वह वे पहले ही ध्यान हो, तो कितनी बड़ी बात, कितनी गर्व की बात और कितनी खुशी होया कर अपने कि किन तरीकों आप बात निकाली हाँ और वो बात अपने वास्ते कितनी समझ रही बात है। और सबों बड़ी बात है कि रिश्ता की अहमियत जदई है जद आप एक दूसरा ने समझोला, खाली एक दूसरे की बुराइयाँ या एक नकारात्मक अगर दूसरा प्रति रखोला तो वो आप वास्ते कदे भी संभव नहीं है कि आप इंसान जुड़ पाओला, क्योंकि अगर दिमाग में ही अड़ी बात नहीं है तो मैं आप सोच भी नहीं सका। इन्हें सोचने समझने वास्ते अपना एक संतुलन बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जब तक आप इन संतुलन माते कायम नहीं रह वाला, आप कोई भी काम चाहे वह रिश्ता की अहमियत कड़ी भी हो उन्हें समझने वास्ते समझ ही नहीं पावला। क्यों? क्योंकि विचार ही नहीं मिल रहा। आप छोटी सी बात में कहता नहीं नहीं नहीं मानो विचार नहीं मिले, अरे विचार मिलन रो कोई कारण हो, कई बता रही हो जी कि आपकी समझ ऊपर है, कई बात अगले वाला रही हो जी की समझ ऊपर है, तो ये छोटी मोटी बात है जिको कि आपने कई बार आप कहवानी अरे छोड़ो कोई नहीं कह दियो तो कोई बात, कई तो वो कहवे नहीं कि राई रूपाड़ बना दे, नहीं कियो तो कियो की कर, तो ये सब बात रिश्ता टूटिया करे, अहमियत खत्म होया करे और जिकी बात जिका संस्कार अपन दियोड़ा वह एक सेकंड में समाप्त हो जावे। उनरो कारण कही है कि आप समझनी नहीं चाहवा या दूसरा अपन समझनी चाहवे। इनू बहना सबों बड़ी बात है रिश्ता रे बात अगर आप करा तो हर समय आप बात क्या करे कि कॉम्प्रोमाइज करो या हर समय आप तत्पर रहवा, तो आप भी उम्मीद करा कि दूसरा ने भी तत्पर रहना जरूरी है, पर फिर भी कई बार आप समझ रहे नहीं, थोड़ा सा आपने मैंने समय देना चाहिए, है ना। और कई गलतियां हैं, एक बार स्वीकार कर लो कि ठीक है, जब अगली बार आप बात हुए तो उन टाइम आप कह सका कि भाई तेरी 5-6 बातों 2-3 बात मैं स्वीकार करी, तुम्हारी भी 2-3 बातों आप स्वीकार करो, तो इमें जिको एक बदलाव है वो आवेला, इमें जिकी दूरी है वह थोड़ी कम होवेला, इमें जिकी समझ है उन्हें एक दूसरा से समझूँ बहुत आगे बढ़ती रहेला, तो आ रिश्ता की अहमियत बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में ज़रूरी है और इन्हें अपन अपनाना और इन्हें स्वीकार करना इन रिश्ता ने बहुत ही ज़रूरी है। तो रिश्ता की बात करता हुआ आप चलना अगले गीत की तरफ, पहले सुना एक संदेश।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों

तो बहना आप सुनियो सीमा और साथिया रगैड़ो, क्योंकि गर्मी है और गर्मी रो एहसास में ओ हो जावे कि अपने साथे साथे हर इंसान, हर जानवर, हर पशु पक्षी ने भी एक ठंडक मिल जावे थोड़ी सी, तो वैने भी एक जीवन रो आसार मिल जावे। और ऐसा समय परिवर्तन है जिका कि उतार चढ़ाव आवे अपने जीवन में, जो ही मौसम है तो धीरे धीरे सब आप अनुसार रंग बतावे। तो बहना आप बातचीत कर रहा, मैं जो आपने बताया भी कि आप कोई भी गलती करा तो उन्हें स्वीकार भी करना अच्छी बात है, स्वीकार भी करना जरूरी है ना। और अब जो अपने देख रहे हैं कि गर्मी रे महीना पर जू बारे निकल रहे हैं, खान पान रो तो आप ध्यान ही रख रहे हैं, आप उन दिन बताए कि कैरी पानो पीनो चीज़ें या अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्याज रो और इनो साथ रखनो चीज़ें जिनसु की लू नहीं लगे, इनके साथ ही आप कोई भी बारे निकला तो सूती वस्त्र रो ज़्यादा उपयोग करें, माथा माथे सूती वस्त्र रख ले, चुनिया ओढ़ ले, वो कर ले जिनसु कही है कि थोड़ी सी ठंडक अपन आवे, क्योंकि माथा शुरुआत है गर्मी पगतलियाँ और जिको शरीर रो है सब ऊपर लो मातो, उनमें अगर बहुत गर्मी पड़ जाए तो शरीर में बिचलो है वो बहुत ही अपने परेशानी रो हो जाए करें। इन वास्ते सूती वस्त्र उपयोग करें, खासकर बहना जिन टाइम रसोई में काम करती है वह कई अपनी आदत है, आप आ नहीं के वहाँ कि भाई मैं भूल जा कर जा कि कोई भी अपने साड़ी रे पल्लाऊँ ओ ना रे पल्लाऊँ की भी साफ कर लिया कटे की कर लिया कि कौन हो छोटो सो मसो तो लाई कौन हो कई एक मिनट लागे, तो वो एक मिनट कई बार जिका दूसरा वस्त्र है बहुत ही गर्म रे कारण परेशानी कराया करे, अपने शरीर में लाया वगैरह ए भी हो जावे, आप कोई चीज़ पकड़ ला कोई चीज़ हाथ लगावा तो भी अपने यूँ लागे। तो सूती वस्त्र जितो वे उतो ही वो पसीना ने सूखे ठंडो करे, और अगर आप बाहर निकल रहे हैं अपने पसीनो आ भी गया तो वो मायने मायने सूख ले, तो से अपने फायदों भी बहुत है ना। तो ऐसा आप और हमारे तो खासकर है ही है कि गर्मी रे मायने लोग सूती वस्त्र देखे कि आ कि तो ठंडो एहसान और दिखण में भी एकदम टपाटप, तो मतलब यूँ लागे कि आप कोई भी काम करा तो अच्छे मनु करा तो अपनी खुशी भी होया करे। और आप अभी सोचा कि नहीं नहीं मौसम के अनुसार अगर आप पहनन वास भी करा तो बहुत ही अच्छा लगा करे, हल्का रंगरा कपड़ा आप पहना क्योंकि चुप तो वो रंग भी एक धूप में बहुत ही नुकसान करया करे, है ना। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखना जरूरी है। तो आप चला एक और प्यारा सो गीत री तरफ।

0: पाणिहारी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है।

0: प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज NEET UG 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.7 MHz पर श्रोताओं, ये है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। ये फिल्म संगीत की पहली पेशकश लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म दिल एक मंदिर से। शैलेंद्र के बोलों को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों के मिले जुले स्वरों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म बाप रे बाप का नगमा। जैनिश अख्तर के बोलों को संगीत से सजाया था ओपी नायर ने।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में फिल्म बारिश का नगमा। शब्द रचना राजेश रोशन की थी, संगीत दिया था सी रामचंद्रन ने। और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। श्रोताओं, FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल।

लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं के बागड़ी और गंगा कलावत।

अभी आप सुन रहे थे गंगा कलावत के स्वर में ये लोक प्रस्तुति कार्यक्रम मार्टी के स्वर में। लीजिए सुनिए के बागड़ी के स्वर में ये अगली लोक प्रस्तुति कार्यक्रम मार्टी के स्वर में।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के छह बजकर तीस मिनट होने को है। कुछ ही पल में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात होंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जनगणना 2027 के तहत राज्य में आज से मकानों के सूचीकरण का काम शुरू हुआ। सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां हुई। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे और प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में। अगले सप्ताह तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से जनगणना 2027 के तहत मकानों के सूचीकरण और गणना का काम शुरू हो गया है। आगामी 14 जून तक चलने वाले इस चरण में प्रगणक घर घर जाकर मकानों की निर्माण सामग्री और उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में 33 सवाल पूछ रहे हैं। भीलवाड़ा जिले में इस कार्य के लिए 4,163 प्रगणक तैनात किए गए हैं। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने आमजन से सही जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की है। उधर पाली जिले में भी 3,000 से अधिक प्रगणक मोबाइल ऐप के जरिए वास्तविक लोकेशन के साथ आंकड़े जुटा रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपित मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच थी। सीबीआई ने कहा कि उन्होंने 14 मई को गिरफ्तार की गई मनीषा वाघमारे के माध्यम से नीट परीक्षा के

0: संभावित उम्मीदवारों को जुटाया और पुणे स्थित उनके आवास पर इन विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं चलाई। इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 5 आरोपियों को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है। कल गिरफ्तार किए गए 2 अन्य आरोपितों को पुणे की अदालत में पेश किया गया और पारगमन रिमांड के बाद दिल्ली भेज दिया गया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने देश भर में 6 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया है और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई के इस दौर में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ही देश की संप्रभुता की एकमात्र गारंटी है। श्री शेखावत आज जोधपुर में रक्षा प्रयोगशाला के 68वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में अब केवल पारंपरिक हथियार ही युद्ध का माध्यम नहीं है, बल्कि पेमेंट गेटवे और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसी तकनीकें भी सामरिक हथियार बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि देश रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री शेखावत ने वैज्ञानिकों से विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
1: और ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह के दौर में विश्व प्रवेश कर चुका है, ऐसे समय में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हमारी सबसे महत्वपूर्ण अंश है। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, आप सबको ईश्वर ने कौशल दिया है, आप सबको ईश्वर ने हुनर दिया है और आप सबको राष्ट्र ने अवसर प्रदान किया है। इस अवसर का उपयोग करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने, देश को विकसित बनाने और देश के इस ट्रांसफॉर्मेशन के वाहक आप सब लोग बनेंगे।
0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब का दौरा कर स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न तकनीकी नवाचारों की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के प्रयासों को देखा। मुख्य सचिव ने एआई और आधुनिक तकनीक पर आधारित शिक्षा से जुड़े स्टार्टअप्स को पीएम श्री विद्यालयों से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली स्तर पर ही बच्चों को उन्नत तकनीक और नवाचारों को समझने का मौका मिलेगा।
2: विजन है कि स्टार्टअप्स का बड़ा फ्लरिशिंग इकोसिस्टम रहे और इसी क्रम में वो आईस्टार्ट के साथ साथ ब्रह्मगुप्त फ्रंटियर टेक्नोलॉजी सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं। आज मेरे समक्ष कई नए टेक्नोलॉजीज प्रस्तुत किए थे, ड्रोन टेक्नोलॉजीज था, मेडिटेक टेक्नोलॉजीज थे, न्यूट्रिशन में, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग में, इसी प्रकार से डिफेंस स्टार्टअप्स थे। तो काफी वाइड रेंजिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है और इसको बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट का कमिटमेंट है अपॉर्चुनिटीज के संदर्भ।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है।
3: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर के मणाई में एक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस पर 51,10,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही बजट घोषणा के अनुसार स्कूलों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपए की लागत से विद्यालय आधारभूत संरचना कोष बनाया जाएगा। श्री पटेल ने बताया कि करीब 400 विद्यालयों को सीएम राय स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के 1,000 स्कूलों में एआई आधारित लर्निंग लैब्स स्थापित की जाएंगी। जयपुर पुलिस पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई नवाचार कर रही है। इनमें एआई आधारित भीड़ सुरक्षा प्रणाली और पिंक गार्ड मोबाइल ऐप शामिल हैं। पिंक गार्ड मोबाइल ऐप के बारे में बताते हुए जयपुर के पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने कहा कि ये बहुभाषी ऐप स्मार्ट नेविगेशन और त्वरित सहायता जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
4: एक तो जयपुर के हमने 20 टूरिस्ट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे टूरिस्ट इनफ्लो ज्यादा है, उन टूरिस्ट स्पॉट्स की समस्त जानकारी इस ऐप में रहेगी। एक SOS बटन होगा जो कि हमारे अभय कमांड कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा। किसी टूरिस्ट को कभी किसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो SOS बटन के जरिए वो हेल्प पा सकता है। इसके अंदर हमने उस टूरिस्ट प्लेस के ऊपर जो भी ऑथराइज गाइड्स हैं उनकी लिस्ट डाली है, उनके फोटोग्राफ डाले हैं, उनके मोबाइल नंबर भी उसमें एंटर किए हैं। इसमें हमने लोकेशन मैप भी डाला है। उस टूरिस्ट स्पॉट से जो नियरेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, थाना है, उनकी भी सूची और नंबर।
0: जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से जूनियर समर कैंप की शुरुआत हुई। पर्यटन कला और संस्कृति विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी ने इस शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। 20 जून तक आयोजित होने वाले इस कैंप में बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को निखारने के लिए इस वर्ष 500 से 600 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाए हैं। जवाहर कला केंद्र के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर अनुराधा गोगिया ने बताया कि कैंप के दौरान बच्चों को रंगमंच के साथ साथ कला सहित विभिन्न विधाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
5: नृत्य से संबंधित, संगीत संबंधित जो गतिविधियां हैं जिसमें बांसुरी वादन, गायन और पियानो है, इसमें बच्चे गिटार भी सीख सकते हैं। इसी तरह से कथक नृत्य, राजस्थानी फोक डांसेस, इनका समावेश किया गया है। साहित्यिक में स्टोरी ट्रीज, इस तरह की गतिविधियां हैं जिससे बच्चे कहानी लेखन, कहानी वाचन सीख सकें। लगभग 550 से 600 बच्चे इस कैंप में भाग ले रहे हैं। एक्टिविटीज सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में रहती हैं और लास्ट 3 डेज बच्चों के द्वारा परफॉर्मेंस भी किया जाए।
0: और अब मौसम। प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। चिलचिलाती धूप और लू से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। विभाग के अनुसार अगले सप्ताह प्रदेश के अधिकांश भागों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी जिलों में दिन का पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राज्य में एक बार फिर से हीट वेव का दौर शुरू होगा। वहीं 18 मई से पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। झुंझुनू में जागरूकता रैली निकाली गई। ANM ट्रेनिंग सेंटर की छात्राओं के द्वारा निकाली गई इस रैली के माध्यम से डेंगू के बचाव और मच्छरों की रोकथाम के उपायों की जानकारी दी गई। जैसलमेर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की कर्मियों की ओर से मच्छर रोधी गतिविधियां की गई और लोगों को समझाया गया। वहीं करौली में जांच करें, सफाई करें और ढकें थीम पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डेमो, पोस्टर, पैम्पलेट और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनगणना 2027 के तहत राज्य में आज से मकानों के सूचीकरण का काम शुरू। CBI ने आज नीट UG 2026 प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां हुई। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे और प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में। अगले

0: तहत तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सोमदत्त त्रिपाठी ने तैयार किया है। वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर भीलवाड़ा जिले में शिक्षा के अधिकार को धरातल पर उतारने की मुहिम जारी है। राज्य सरकार की ओर से पिछले सप्ताह जारी आंकड़ों के अनुसार आउट ऑफ स्कूल के बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के मामले में भीलवाड़ा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। ये लक्ष्य 1 अप्रैल से शुरू किए गए प्रवेशोत्सव के दौरान हासिल किया गया है। इसके तहत जिले में चिन्हित किए गए करीब 15,500 बच्चों में से 14,790 बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिया जा चुका है। अब भीलवाड़ा जिले में लगभग 5.25% पात्र बच्चे ही स्कूली शिक्षा से वंचित हैं, जो प्रदेश में सबसे कम है। जिले के तिलोली गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणादायी पहल देखने को मिली। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 10वीं और 12वीं के 6 मेधावी विद्यार्थियों को शानदार परिणाम देने पर हवाई यात्रा की सौगात मिली। युवा भामाशाह दशरथ सिंह राठौड़ ने इन होनहारों को जयपुर से दिल्ली के लिए हवाई यात्रा पर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना और अन्य छात्र छात्राओं को मेहनत के लिए प्रोत्साहित करना है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी हाल ही में भीलवाड़ा प्रवास पर रहे। उन्होंने मांडल विधानसभा क्षेत्र में पेयजल विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान जलदाय मंत्री ने कहा कि सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने के मिशन पर काम कर रही है। जिन इलाकों में भी पीने के पानी की समस्या है, वहां टैंकरों के जरिए पानी आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बीसलपुर बांध में पानी की काफी आवक हुई है। ऐसे में अजमेर, ब्यावर, टोंक और जयपुर जिले में पानी की नियमित आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में पानी की दिक्कत नहीं है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बीते दिनों भीलवाड़ा आए। उन्होंने जैन समुदाय के संगठन जीतो की ओर से आयोजित सामूहिक नवकार मंत्र जाप कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि आज के दौर में धर्म और संस्कृति से जुड़े रहना जरूरी है, जिससे नई पीढ़ी को भी इसका लाभ मिले। जीतो के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जिले की चिट्ठी में अब बात ग्राम रथ अभियान की। हालांकि जयपुर में इस महीने होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ईंधन बचत की कवायद के कारण इसका आयोजन अभी रोक दिया गया है। ग्राम 2026 व्यापक प्रचार प्रसार और लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए ही ग्राम रथ अभियान शुरू किया। इसके तहत सभी जिलों के ग्राम पंचायतों पर ग्राम रथ पहुंच रहे थे। भीलवाड़ा जिले में भी जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधु के निर्देशन में ग्राम रथ अभियान संचालित किया गया। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने भी जिले का दौरा कर ग्राम रथ का जायजा लिया। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर खरीफ फसल की बुवाई के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज और खाद के भंडारण के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी जिले के प्रवास पर रही। उन्होंने सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम रथ अभियान में शिरकत की। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ग्रामीण रथ अभियान के तहत आसींद क्षेत्र में रात्रि चौपाल में शामिल हुए। अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के मौके पर जिले में अनेक स्थानों पर कार्यक्रम रखे गए। वहीं पुलिस प्रशासन की सतत निगरानी के चलते इस दौरान जिले में एक भी बाल विवाह नहीं हुआ। जिले में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। हालांकि मौसम में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जिले में कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई और कुछ जगह ओले भी गिरे। हालांकि थोड़ी राहत के बाद उमस और तेज गर्मी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि गर्मी में पेय पदार्थों का सेवन अधिक करना चाहिए। उन्होंने प्रचंड गर्मी के मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं से विशेष सावधानी रखने को कहा है। भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, जनगणना 2027 रा तहत राज्य में आज मकाना रे लिस्ट बनावन रो काम शुरू हुयो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला में सीबीआई आज एक और आरोपित ने पकड़ियो, हाल ताई 9 जना गिरफ्तार करी चिया। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ावो देवन सारू 500 स्कूला में नुआ कोर्स शुरू करया जावेला। और प्रदेश रा घणखर हलका में जबरदस्त गर्मी, आवता सप्ताह में पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़बारा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, जनगणना 2027 रा तहत प्रदेश में आज मकाना री लिस्ट बनावन रो काम शुरू फेक्यो। 14 जून ताई चलन वाला इन काम में प्रगणक घर घर जार मकान बनावन माय काम ली रही जी सामग्री और मौजूद सुबीता ने बारा माय 33 सवाल पूछ रहा है। भीलवाड़ा जिला माय ई काम सारू 4163 प्रगणक लगाई चिया है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू जनताओं प्रगणका ने सही जानकारी देर प्रशासन री मदद करन री अरज कीनी है। पाली जिला माय 3072 प्रगणक मोबाइल ऐप रे जरिए वास्तविक लोकेशन सागे जानकारियां भेड़ी कर रहा है। नीट यूजी 2026 परीक्षा रा पेपर लीक मामला में सीबीआई आज एक और आरोपित महाराष्ट्र रा पुणे री बोटनी री शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मंधारे ने गिरफ्तार कीनी। वाने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी विशेषज्ञ रा तौर नियुक्त कीनी ही। जांच एजेंसी रे मुजब मारी जूलॉजी और बोटनी रा पेपर ताई पूरी पहुंच ही। सीबीआई रे मुजब वा 14 मई ने पकड़ी जी आरोपित मनीषा वागमारे रे मार्फत नीट परीक्षा रा उम्मीदवार ने वारा पुणे रा घर माए खास कोचिंग दीनी। ई मामला माए हाल ताई दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर 9 आरोपिता ने पकड़ी जिया है। काल गिरफ्तार करी जिया 2 आरोपिता ने पुणे री अदालत सामी पेश करी जिया, जठाऊ वाने अदालत दिल्ली भेज दीना। लाला 24 घंटा माई सीबीआई न्यारी न्यारी ठोड़ाऊ कई आपत्ति जोग कागजात, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त कीना है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि एआई रा दौर माए देश री हिफाजत रा हल्का माए खुद रे पाण उबो भेवणोई देश री संप्रभुता री गारंटी है। वे आज जोधपुर में रक्षा प्रयोगशाला रा 68वां स्थापना दिवस रे मौके राखी जिया कार्यक्रम में बोल रहा हा। केंद्रीय मंत्री कहो कि दुनिया रा बदलता हालात में अब केवल पारंपरिक हथियार ही युद्ध रो जरियो नहीं है, बल्कि पेमेंट गेटवे और सेमीकंडक्टर चिप बनावण सरीखी तकनीक आई लड़ाई रा हथियार बनकी है। वह कहो कि देश हिफाजत रा हल्का माय काम आवन वाला साजो सामान दिसावर उ मंगावन री बजाय देश माई बनार खुद रे पाण उबो भेवनोड़ी तेजी बढ़ रियो है।
3: और ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह के विश्व दौर में विश्व प्रवेश कर चुका है, ऐसे समय में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हमारी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, आप सबको ईश्वर ने कौशल दिया है, आप सबको ईश्वर ने हुनर दिया है और आप सबको राष्ट्र ने अवसर प्रदान किया है। इस अवसर का उपयोग करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने, देश को विकसित बनाने और देश के इस ट्रांसफॉर्मेशन के वाहक आप सब लोग बनेंगे।
2: राजस्थान विधानसभा बनिया 75 साल वे बन रहे मौके 18 मई ने विधानसभा रा नुआ लोगो रो विमोचन और ऐतिहासिक दरूजा रो नामकरण करियो जावेला। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बतायो कि लारला 2.5 साल माए राजस्थान विधानसभा माए डिजिटल और पेपरलेस व्यवस्था, डिजिटल संग्रहालय, संविधान दीर्घा और जन दर्शन सरीखा कई खास नवाचार करी जिया, जाऊं इनरी देश माए खास ओळखाण बनी है। इन खास कार्यक्रम माए राज्यपाल हरिभाव बागड़े, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, विपक्षरा नेता टीकाराम जूली और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल समेत कई मान्योड़ा लोग शामिल फैला।

0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर रा भामाशाह टेक्नो हब रो दौरो कर स्टार्टअप्स और नौजवान कारोबारियां कानियों करिया जा रहा तकनीकी नवाचारां री जानकारी लीनी वे रक्षा शिक्षा और स्वास्थ्य और पोषण सरीखा खास हलका माए स्टार्टअप्स री कोशिशां देखी और वानी सराहना कीनी। मुख्य सचिव एआई और नवी तकनीक माथे आधारित भणाई लिखाई जुड़िया स्टार्टअप्स ने पीएम श्री स्कूलों जोड़वा माथे जोर तीनों
1: विजन है कि स्टार्टअप्स का बड़ा फ्लरिशिंग इकोसिस्टम रहे और इसी क्रम में वो आईस्टार्ट के साथ साथ ब्रह्मगुप्त फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं। आज मेरे समक्ष कई नए टेक्नोलॉजीज प्रस्तुत किए थे, ड्रोन टेक्नोलॉजीज था, मेडिटेक टेक्नोलॉजीज थे, न्यूट्रिशन में, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग में, इसी प्रकार से डिफेंस स्टार्टअप्स थे। तो काफी वाइड रेंजिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है और इसको बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट का कमिटमेंट है अपॉर्चुनिटीज के संदर्भ।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि भारत और नीदरलैंड दुनिया रा संकटन और सामोकरण सारू भरोसेमंद साफ और आवता बगत सारू तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनावन रे बारा माए मिलर काम कर रहा है। वे पांच देशां रा दौरा रा तेत आज नीदरलैंड रा हेग माए भारतीय समुदाय रा लोगा ने संबोधित कर रहा है। श्री मोदी ऊर्जा संकट सरीखी चुनौतियां रो निपटारो बेगो नी वेवन री सूरत माए दुनिया रा विकास माथे असर पड़बा सागे मोटी आबादी रे गरीबी री ओर बढ़वा री शंका जताई। प्रधानमंत्री कहो कि 21वीं सदी माए भारत मौका री धरती बन अर सामी आयो है जो तकनीक और इंसानी मूल्यां रा आधार आगे बढ़ रियो है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रे मुजब व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ावो देवन सारू 500 स्कूलों में नुआ कोर्स शुरू करिया चावेला। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर जिला रा मणाई में एक स्कूल में राखी जा कार्यक्रम में आ जानकारी दीनी। वह कहो के ई काम माथे 51 करोड़ रुपये उम्बत्ती रकम खर्च करी जावेला। मंत्री बतायो के बजट माए करी जा ऐलान रे मुजब स्कूला माए बुनियादी ढांचा रा विकास सारू 2000 करोड़ रुपया रो विद्यालय आधारभूत संरचना कोष बनायो चावेला। श्री पटेल बतायो के करीब 400 स्कूला ने सीएम राइज स्कूला रा तौर विकसित करी जावेला और 1000 स्कूला माए एआई आधारित लर्निंग लैब्स खोली जावेला। सैलानियारी हिफाजत और सुविधा सारू जयपुर पुलिस एआई आधारित भीड़ सुरक्षा प्रणाली और पिंक गार्ड मोबाइल ऐप सरीखा नवाचार कीना है। पिंक गार्ड मोबाइल ऐप री जानकारी देता थका जयपुर रा पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल कहो कि न्यारी न्यारी भाषावां माए काम करण वालों ओ ऐप स्मार्ट नेविगेशन और तुरंत मदद सरीखा सुविधाई मुहैया करावेला। वे बतायो के ई ऐप रे मार्फत सैलानिया ने सुरक्षित गेलां री जानकारी सत्यापित गाइडां री लिस्ट और मुश्किल भगत माए मदद मिल सकेला।
3: एक तो जयपुर के हमने 20 टूरिस्ट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे टूरिस्ट इनफ्लो ज्यादा है, उन टूरिस्ट स्पॉट्स की समस्त जानकारी इस ऐप में रहेगी। एक SOS बटन होगा जो कि हमारे अभय कमांड कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा, किसी टूरिस्ट को कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो SOS बटन के जरिए वो हेल्प मांग सकता है। इसके अंदर हमने उस टूरिस्ट प्लेस के ऊपर जो भी ऑथराइज गाइड्स हैं उनकी लिस्ट डाली है, उनके फोटोग्राफ डाले हैं, उनके मोबाइल नंबर भी उसमें एंटर किए हैं, इसमें हमने लोकेशन मैप भी डाला है। उस टूरिस्ट स्पॉट से जो नियरेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, थाना है, उनकी भी सूची और नंबर।
0: जयपुर राज जवाहर कला केंद्र में आज जूनियर समर कैंप शुरू हुआ। पर्यटन कला और संस्कृति विभाग रे शासन सचिव शुचि त्यागी इनरो उद्घाटन कीनो। 20 जून तक चलने वाला इन कैंप में मोटी तादाद में बच्चा नाम मंडाया है। जवाहर कला केंद्र री अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर अनुराधा गोगिया बतायो के शिविर में बच्चा ने रंग मंच सागे कला समेत न्यारी न्यारी विधावां री व्यावहारिक सिखावण दी जा रही है।
4: नृत्य से संबंधित संगीत संबंधित जो गतिविधियां हैं जिसमें बांसुरी वादन गायन और पियानो है, इसमें बच्चे गिटार भी सीख सकते हैं। इसी तरह से कथक नृत्य, राजस्थानी फोक डांसेस, इनका समावेश किया गया है। साहित्यिक स्टोरी की इस तरह की गतिविधियां हैं जिससे बच्चे कहानी लेखन, कहानी वाचन सीख सकें। लगभग 550 से 600 बच्चे इस कैंप में भाग ले रहे हैं। एक्टिविटीज सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में रहती हैं और लास्ट 3 डेज बच्चों के द्वारा परफॉर्मेंस भी किया जाए।
0: अरब मौसम प्रदेश का घनखर हल्का माए जोरदार गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुजब लाडला 24 घंटा माए फलादी 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सागे सब 19 ठोड़ रहे हो। महकमा के मुजब आवता सप्ताह प्रदेश का घनखर हल्का माए पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़बारा आसार है। इन दौरान उगनी रातुनी हल्का माए तापमान 45 डिग्री सेल्सियस ताई पुगण की संभावना है। इन बीच 18 मई आतुणी और उत्तराध हल्का माए जोरदार बायरो बाजण की संभावना है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके प्रदेश में आई कई कार्यक्रम रखी चिया। झुंझुनू माए एएनएम ट्रेनिंग सेंटर री टावरिया री ओरों जागरूकता रैली निकाल और डेंगू बचाव और मच्छरों की रोकथाम रे बारे माए जानकारी दी री जी। जैसलमेर माए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग रा कर्मचारियों री ओरों मच्छर मारण सारो जतन करी चिया और जनता ने जानकारी दी री जी। करौली माए जांच करें, सफाई करें और ढकें मुद्दा माथा चलाया जा रहा अभियान रा तहत शहरी और गांवी हल्का माए डेमो पोस्टर पंपलेट और सोशल मीडिया रे जरिए जाग जगाई जा रही है। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। जनगणना 2027 रा तहत राज्य माए आज मकाना री लिस्ट बनावन रो काम शुरू भयो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला माए सीबीआई आज एक और आरोपित ने पकड़ियो। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ावो देवन सारू 500 स्कूलों में नुआ कोर्स शुरू करया जावेला। और प्रदेश का घनखर हल्का में जबरदस्त गर्मी आवता सप्ताह पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़वारा आसार। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
5: FM 103.7 MHz पर श्रोताओं, हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
2: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर।
0: किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी सुनन्या हैंग भाया बहना ने आप रे विष्णु भैरव घने मान राम राम। और भाया बहना आज मारे सागे चौपाल माते आया है सदैव भाई। सदैव भाई राम राम।
4: राम राम राम राम विष्णु भाई आपने और चौपाल सुनला सगला भाया बहना ने और छोटा मोटा डाउट का डाउट क्या ने मारी तरफ हुई घना घना राम राम।
3: वाह सदैव भाई देखो लारला दो चार दिनों देखा तो कणी तो बढ़ती बाजन डूब जे हली और जिते तापमान चढ़े चढ़े जिते तो रेडियाले कौन डूब जाए आप फोन ही तापमान उतार चढ़ाव रहे आउनाला चौमासा के मायने थोड़ी घनी गड़बड़ कर सके।
4: बिल्कुल देखो के विष्णु भाई बात आहेडी है के जड़ते जो को तापमान है जैसा गर्मी रो मौसम है और गर्मी रे मौसम रो मायने गर्मी पड़नी चाहिए बढ़िया बात है और पण ओ जो को उतार चढ़ाव री जकी बात है कणी आंधी आ जावे आंधी भी आनी चाहिए बढ़िया लेकिन थोड़ा घना छांटा कटी पड़गा कटी नहीं पड़िया बीरो कहीं होवे के जो को मौसम रो जो को अब अंग्रेजी में सिस्टम कह सका और कह सका तो बीर मायनो सिंसे रहे के भाई आउनालो जमानो केड़ो वेला या केड़ो नहीं वेला और लगातार गर्मी पड़े पर छोकी बिरका होवे और पहले देखो कि आंधी आवती काली पीली है और आंधरू ओड़ोले ओड़ोले ठरकाऊ नेटाऊ आवती जन आप देखता के ओ आंधी आ रही है फिर पहली अब आजकल तो कहीं ठेस नहीं पड़े कणा गजे कणा कर ले आंधी
3: पहली तो
4: एक मिनट में ठा पड़े नाल तो मजो देखो के बड़े रह के जू के ई आद ने तो छांटा पड़े मतलब बरसात हुए दो जोड़ आद हुको
3: तो इनको मतलब है जो को तरीको जो को परिवर्तन को बदल को और ग्लोबल वार्मिंग पेड़ पौधा कम होगा चारा का नहीं देखा तो प्रदूषण होगा ये कारण वही है मोटो मोटो पर जो को है जो को पर आप जो की चीजें में सुधार कर सका भाई जी खेती बाड़ी मायने लोग उपज की मांगे कम होगी तो उपज बदलने वास्ते खाली खेती रे लारे नहीं रहे आप जो भाई दावदन है बिरसा के साथ पाल सका और खेती में भी नुआ नुआ तरीका ईयान का आया है जकन सु आप आय की बढ़ोतरी कर सका जी हम बात हुए देखो खेती का तरीका जब बदला तो एक तो फसल चक्र जानकार लोग जगत के वे भाई है ना फसल
4: बिल्कुल,
3: चक्र
4: बिल्कुल बिल्कुल देखो के पहले भी बढ़ेरा के होता के बात क्यों तरीको थोड़ो नार हो बया के होता के बहरे अब गए जो को पहल के कहीं भाई आग बाजरी भेज ना आपके बाजरी नहीं मोट बाज दो
3: फसल फोर फोर पाओ
4: फोर बार
3: भाई बिनी फसल चक्र के
4: बिनी हिंदी में माने फसल चक्र के तो बे पडोड़ा कोनिया लेकिन ज्ञानी हा होशियार हा जानकार और मेरे हाथ आते जगह कई तरीका और आया जगह वैज्ञानिक तरीका जगह आया है तो पहले तो कहीं एक दो ही चीज रे लारे पड़ी ओढ़ा तो बीर मायने के भाई कहीं एक बाजरी बाय दी तिल बाय देता मूंग बाय देता अब जो की तरीका है मेरे साथ साथ जे आप बागवानी री ओर जे ध्यान देवा जोर देवा तो मेहनत आप जीती कराना बीती मेहनत करा देना देखो कि कई गुणा ज्यादा आप आमदनी
3: कर सका सा बागवानी री आप बात करी तो लाला दिना मैं जो को गावा में घूमन गयो नी तो बट जो पोली हाउस लगाएड़ो और बट गया तो बीन मायने देखो तो कई जगह टमाटर बैठा खीरा काकड़िया बैठा ये नी भाई फसल जकी वे आप खरीब रही पर रुत हिसाब वे पण पोली हाउस के माने सदैव भाई 12 महीना है जो को आपा सब्जी ले सका तो नो तरीको गो आमदनी होगी
4: और पोली हाउस री जकी बात है बीर मायने 12 महीना लेवणो कारण ओ है के जकी जकी आपा फसला और जकी बारियां सब्जियां बीरो जो को तापमान जो को अगर ना वो तापमान बराबर संतुलित जो को है वो मिल जावे बीर मायने प्रकाश आवणो भी रहवे बराबर मायने नमी रहवणो भी रहवे और पानी रो जो को सिस्टम में देवनो वो भी बराबर रहे ये खातर है जो को 12 मास आप सब्जियां ले सका ए कहीं एक चीज आज एक और बात है मजो वो है के पोली हाउस बनावाना तो बीमाती देखो सरकार टेम टेम तो सब्सिडी देवे मायने जगह केवा जगह सिस्टम लगावा जैसे फुहारा लगावा हां और लगावा बूंद बूंद सिंचाई लगावा भी पैसा देवे पर बात हगलानी सो बात री एक बात है चेतनो भया अपन पड़ी
3: आपने पड़ी
4: सोच आपने बदलनी पड़ी
3: बिल्कुल
4: और मेहनत अपन देखो कि कितनी करा और इतनी मेहनत माने तो अपा ना सुना पे जो को आमदनी ले सका
3: ले सका सर एक बात है एक तो अपन लाटाखड़ा कार्ड सीधी जी की फसल आप बाजार ले जाओ और नहीं बेचने को तरीको बदलना पड़ी बिना प्रोसेसिंग करनी पड़ी बिना ग्रेडिंग करनी पड़ी भाई जीरे की बात हुई जी जीरो आप हृदय ले गए मारे 17,000 बिक्यो और बीज जीरे नहीं जो मोटो बीज नहीं आ रहा टाड़ा छोटो थोड़ा अलग करा तो भाई 17,000 वाले आप 22-23 में बिक जाए
4: बात एक बात और भी है के देखो के कई भाई कहीं करे सा आजकल जान फर्म पोंड है जो डिगिया आप के वहां तो बे डिगियों जो क्या जैसे जीरा री बात चाल की तो जीरा लेवे बिर मान देखो के कई भाई एड़ा भी है दवाई कौन छिड़के की तो वो जीरो देखो के कितो वेगो शुद्ध अबे एक खेत में तो दवाई छिड़की ओड़े एक खेत में बिना छिड़की ओड़े घर लावा जन में बेड़ो कर दा और जे बिना अगर नारो राग नारो

0: बेचा तो रुपया बिरू डेढ़ा मिले,
1: बिल्कुल मिले, जैविक जीरो,
0: जैविक जब एकदम पूरो और पूरो जकर मान कोई तरह रो की है जो को मिलावट को
1: मिलावट नहीं रहे सा। और देखो बातें चीतना तो चलती रही, दूजी बातें भी आपा ने करनी पड़ी। तो
0: देखो बातें तो यूं है वो विष्णु भाई के ओ प्रोग्राम है अपन को नहीं, यूं तो अपन ही, अपन भी किसान है, ओ किसान भाइयों प्रोग्राम है तो अपा आवाज की जानकारी देवा अपन खेली अपा आप देवा अपन भाई भी अपन देखो के हर दिन जावा कोई ना कोई भाई अत ही करा बे कहीं धंधो करे बे कहीं जानकारी देवे तो देखो कि मैं तो आज की कहीं है के तावड़ क्यों घणो पड़े वो जो को थोड़ो की अलस कर लियो पर मन लागे के थे हूं शेपर आंटा जगह हिसाब ना कन्ना माते दियोड़ा ना जन मन लागे थे कोई गाइंद्रो जरूर कर
1: आया गांव तरह तो करना ही पड़े भाई दो जना आमा ने एक ने तो करना ही पड़े तो आज गांव तरह करियो हर बट है जगह अच्छा देखो बकरी पालन बकरी फार्म और जो को के मोटो आरो लगेड़ो नु तो अरे बट देखे तो देखते ही रहेगा भयो जो की बंतल करी तो वहां भया तो करा पो
0: देखो एक मत रखो भया करो
1: तलोसा हाजिर है
2: भाया नित नई जानकारी लेर चौपाल माते हाजिर वहाँ। आज देखो एक एडी जगह पुग्या हाँ जब देखो मोटा पतरा छायड़ा है बहुत मोटो ताम जाम अटिने देखा तो भैंसे है जगी बंदी है अटिने तो एक पतरा के मायने बढ़िया तो बकरियां ही बकरियां दिख रही है कहीं नानी नानी कहीं मोटी मोटी बकरियां और एक भाई है जगह सार संभाल कर रही है नीरोचारी कर रही है करम बंतल राम राम सा
3: राम राम सा
2: शुभ नाम आप रो
3: हड़मान नाम है
2: हड़मान जी क्यों गाँव है
3: गोवा
2: गोवा तो गोवा की कांकड़ है
3: गोवा
2: तो अड़मान जी बकरियां वालो फार्म लगायो कद लगायो अड़मान जी
3: ओ 2024 में लगायो
2: 2024 में लगायो तो बकरियां तो मने खासी दिखे हो कती के गिनती में
3: अबार है 550
2: 550 बकरियां बकरियां बकरा छोटा मोटा हगला जी ना तो अड़मान जी बचाओ फार्म लगायो तो मोटो जन कहीं कोई लोन ऑन सब्सिडी या सरकारी की योजना का फायदा उठायो
3: हां सरकार केंद्र सरकार की स्कीम ही एनएलएम
2: अच्छा
3: नेशनल लाइव स्टॉक मिशन
2: अच्छा इन मायने को काम
3: आवेदन करियो और भाई मां पाने
2: तो अड़मान जी आवेदन किया कहीं करियो भाई जका हुने रेडियो पाने भी ठा पड़नी चाहिए कि भाई अड़मान जी अती बकरियां पाले तो मैं भी कोई धंधो एड़ो करा तो कहीं करे पहली भाई कहीं करनो पड़े
3: मैं राज पोर्टल मा ते ऑनलाइन आवेदन होया करे
2: ठीक है
3: वो आवेदन करनो पड़े
2: अच्छा राज पोर्टल अपन मोबाइल मा ते इमा खोलना
3: खोलना
2: तो पचबिंग मा ते जो को सीधो नाम पता वगैरह भरला
3: हां पता है भर लो
2: औरू काई की कागज
3: के वगैरह ये चूज अपन ही करनी पड़े
2: नहीं कागज की लगाना पड़े बीमे या सीधे ही बीमे
3: इन हां मांगे जी के देना पड़े सर्टिफिकेट वगैरह यान का है
2: अच्छा पच बैंक है जो को आपा खुद देखा
3: हां आपा खुद
2: भाई किसा बैंक को ले
3: किसा बैंक को ले
2: तो बैंक वाला है जो को सीधो ही दे दे अपन
3: नहीं बे आपकी प्रक्रिया पूरी करी पहली
2: कई कई प्रक्रिया भाई बे आर दे के या जमीन दे के कई मौको दे के
3: मॉर्गेज करी आप पहली जमीन या पट्टो अपन जो भी है
2: अच्छा तो आपके जी ओ घर कोई खेत है आपके
3: हां वो अपन घर कोई
2: तो इनके माय बैंक का आर दे क्यों पहली
3: हां पहली बे अगड़ा गूगल मैप पर लगाया
2: हां
3: गूगल टैग हुई
2: ठीक है पछे
3: भी हूं पूरा वेरिफिकेशन हुई गो पछे वैल्यूएशन निकली
2: हां
3: पट्टा वगैरह दिया
2: अच्छा
3: भी हूं बोलो लोन यो
2: लोन
3: सब्सिडी दी
2: अच्छा लोन कतो हुगो
3: लोन अपन 40 लाख हो
2: 40 लाख को भी हो तो ओ कितो कहीं पूरो कता को भी हो
3: ओ पूरो 1 करोड़ को प्रोजेक्ट है
2: 1 करोड़ रुपया को
3: 1 करोड़
2: तो 40 लाख तो मिलगो लोन
3: लोन और 50 लाख की सब्सिडी
2: अच्छा सब्सिडी भी हो
3: हां 50 लाख की सब्सिडी है और 10 लाख अपन घर इन्वेस्ट करना पड़ा
2: अच्छा 10 लाख घर लगाया जने जगो ओ जारुगो ऐसे पत्रात्रा थे लगाया या पचे सरकार
3: सब मई
2: पहली थोड़ा थाने लगाना पड़िया
3: तो
2: कुल मिलार 1 करोड़ को और बीमार आधी सब्सिडी होगी
3: आधी सब्सिडी
2: बैंक दे दी तो अब आ रहे थे बकरियां मायने ब्यावड़ी कितनी कहीं
3: अब आ रहे 200 बकरियां ब्यावड़ी
2: तो एक एक जानवरी है लारे दो दो है क्या
3: कोई के दो है कोई के एक है
2: तो एक ही की तो दूसरी नस्ल की दिखे हगली एक नस्ल की थोड़ी है कई हिंगड़ा की कई बिना हिंगड़ा की नस्ल है आपके
3: सोजत और सिरोही
2: तो आ नस्ल पचे कटू लाया कटू
3: मां सोजो तो ले रहा है जा
2: सोजो जा ले रहा है
3: 2024 हां
2: और सिरोही वाली
3: एबी बड़ी सिरोही वाली ये आटी मिल गया पांग कटासनी में नागौर में ली भी
2: अच्छा आगती भागती
3: अलग अलग हां
2: तो सोजो ताली जकी आ बकरी है इनकी काई विशेषता काई
3: सोजो ताली बकरी को थोड़ो काई है कि मार्केट ज्यादा है और विशेषता तो वाइट है
2: अच्छा सफेदी
3: और सफेदी है जकी इनकी चमड़ी है बा पिंक हो जाएगा गुलाबी
2: अच्छा गुलाबी तो इर मोल री बात करा तो एक पाठ बकरी है बिंगा कता कहीं रुपया लागे
3: एवरेज 15,000 रुपया है कोई का 2000 कम हो जाए, कोई का 2000।

0: ज्यादा हो जाए।
1: अच्छा, और सिरोही वाली आ?
0: सिरोही वाली बकरी है जी की, मान लो लाल लाल है जी की, हाँ, सिरोही है।
1: तो इनकी कहीं विशेषता कोई भाई लेनी चाहे तो कहीं देख ले, कहीं ठा पड़े भी आ है जी की सिरोही बकरी की पहचान है।
0: सिरोही का छबगा है लाल रुयान का है, सोचत है जी की व्हाइट वे एकदम सफेद।
1: ओ फर्क है,
0: ओ फर्क।
1: इनको मोल की तो कहीं रहे?
0: इनको मोल थोड़ो कम ही रहे, 2-3 हजार इन बकरियों।
1: अच्छा, तो सोचत वाली थोड़ी तेज है,
0: तेज है।
1: तो इनके पच्चे ला रहे बकरा करा जका है, बतिया बार कम दिख रही है, थोड़ा ही दिख रही है, कहीं बेचा कर
0: बार बेचा।
1: कताक बकरा बेचा?
0: 70 बकरा।
1: 70 बकरा बेच दिया तो कटे अट्टी आस पास में बेचा बाहर?
0: बेचा कोई व्यापारी है जी बाहर लेगा।
1: तो कहीं बकरा कता कताक मोटा है?
0: हाँ पगन, हाँ 12 महीना ऊपर ऊपर, हाँ कोई 1.5 साल का, कोई 12 महीना, कोई 15 महीना, कोई 13 महीना यान का।
1: एक बकरा का लगे टके कताक बैठा?
0: 35 हजार
1: एक जन। तो 70 बकरा बेचा जन काशा बटत कर ली
0: चौकी।
1: तो बकरा पर पाल पोस अलग रखो का ना मकान बेले?
0: अलग अलग
1: अलग अलग जिया बाड़ा बनाया है। तो खान पान वास्ते कहीं दो आने?
0: खान पान में मूंगा उचारो है, गंवार की फड़गटी है,
1: बकरा बकरियां सब नहीं?
0: हाँ, और दानो है।
1: दानो कहीं को दो?
0: जो
1: अच्छा,
0: और बाजरे।
1: तो सीधो ही यहाँ दो हो कि बंटो बंटो बनाओ?
0: बंटो बनाओ, दड़ा बने।
1: अच्छा,
0: दड़र है? दड़र पच
1: तो अलग अलग मात्रा की बेलियो करो या ये दो?
0: हाँ बेलियो भी करा।
1: कहीं को करो बेलियो?
0: जवारी कुतर को।
1: कुतर को लूंग वूंग कौन बेलो?
0: लूंग ना का अलग,
1: पालो
0: और पालो भी ना का, पालो तो कम ही ना का, लूंग ज्यादा ना का।
1: लूंग ना का तो लूंग पचे खेल दिया जावे मोल लिया पड़े?
0: मोल लिया
1: कतो कहीं लेना पड़े?
0: मैं 200 क्विंटल लूंग लियो अब क्या?
1: 200 क्विंटल भाई जानवर है जगह हाँ उठाए जगह
0: हाँ उठाए जगह।
1: तो जो कुल मिला मिला दो आने
0: मिला
1: तो आंखी जकी है नेरी नेरी ठाणा बनाए डेंग माई गलो।
0: हाँ,
1: कितनी बार नीरो दिन में?
0: आने 2 बार तो, एक बार तो थोड़ा बाहर घुमा लिया वहाँ
1: रोई में ले जाओ
0: कहीं 2 घंटों बाहर ले जाओ
1: कणाक ले जाओ सुबह
0: सुबह 7 बजे 8-9 बजे में।
1: तो बस आदमी राखी उड़ा है खुद जाओ
0: आदमी राखोड़ा
1: अटे आगती पागती फेर लो
0: आगती पागती।
1: तो दा पर तो कहीं किया रवा गी उजे
0: बस अब बार तो है कौन चरण
1: चरण नहीं भी
0: चौमासा में तो चरण हो
1: जाए तो चौमासे तो हनुमान जी पचे खेत भेजे आयोजन जगह कट रहे हो चरण
0: पच बंद करता पाचा
1: तो भी टाइम कहीं बीड़ा लेना पड़ेगा
0: बीड़ा ले
1: कहीं कहीं भाव ले बस बीड़ा
0: बीड़ा कोई 5,000 कोई 7,000 खेत है बढ़िया रोड मत गणे अपन नजदीक का रिंग रोड है।
1: रिंग रोड हरार है
0: गणे हरार
1: थे ए ले लो
0: ए ले ला।
1: तो अंक बकरियां की खान की बात करो सब बढ़िया चारो और खान है जो अंक किस हो गए
0: लोंग और जो?
1: अच्छा जो, तो जो है जो आने दो सब नहीं दो
0: सब नहीं अबार गर्मी में सब नहीं दे हमें।
1: अच्छा, और हियाल है जो को काई दोगे?
0: सियाला बाजरी गुगरिया।
1: अच्छा, तेल भी दो?
0: तेल भी देवा
1: मिला?
0: हां मिला।
1: तो अबार जी अब गर्मी आयोडी है और चारा बिया तो थाके व्यवस्था बढ़िया है फिर भी जी बढ़ती अलती आवे करे तो की दूजी सुविधा कोई है कोई पंखा का कूलर
0: है? कूलर है मोटा मोटा।
1: अच्छा,
0: अलग हूँ कोई बीमार हो जाए तो लगाया जाए और बाकी है तो गर्मी की है
1: जानवर गर्मी
0: जानवर की गर्मी
1: बस सहन कर ले वगैरह
0: सहन कर ले।
1: तो पानी आनी वाली पचे था के कुंडार मेलोड़ा मोटो
0: हाँ, बाहर डोल रखुड़ा है और हाँ,
1: हाँ।
0: खेली बनौड़ी है साइड में और पानी तो बरसात को उतारा डिग्गी बनौड़ी है।
1: अच्छा, डिग्गी भी बनाई है तो डिग्गी भी कहीं कोई सरकारी अनुदान दियो?
0: नहीं अनुदान कौन
1: दियो घर का पैसा
0: घर का
1: बकरियां की जकी आमदनी है भी कराई ली
0: भी कराई ली।
1: तो डिग्गी घनी मोटी तो कोनी?
0: घनी मोटी कोनी 50-60 एंकर की है।
1: तो ए जगह इतना मोटा पत्रा है आऊ पानी उतरे ही
0: आऊ पूरा पानी मिल जावे
1: तो 12 महीना पचे हजिया पानी
0: 12 महीना तो बना जाए तो 2-4 महीना आप टैंकर है लिया हुआ नाडियो।
1: अच्छा, टैंकर घर रोई रखो
0: घर को।
1: तो वर्मा जी कई बार देखो जिया बकरियां मायने गाया भैंसा में घनकरा रोग आवे तो थारे इतो मोटो देखो ये छांग राखो तो इमे कोई कणी लागे रोग कोई बकरियां?
0: नहीं, टीकाकरण करावा हाल तो कोनी है भगवान की कृपा
1: कोनी
0: है बाकी टीकाकरण होया अंग हर 6 महीना।
1: अच्छा, हर 6 महीनों करो?
0: 6 महीना
1: किसी ऋतु में करो?
0: अक्टूबर नवंबर में
1: ठीक है
0: और मार्च अप्रैल में।
1: अच्छा, जन अबार है जो अप्रैल लाल महीने करा लिया?
0: करा लिया।
1: तो कोई डॉक्टर साहब कोई कंप्यूटर साहब आवे बुलाओ
0: आवे, आवे।
1: अच्छा, तो सरकार की तरफ तो फ्री है आची?
0: बिल्कुल है फ्री।
1: कई लोगों ने जानकारी कम एक रुपया लेता
0: नहीं नहीं नहीं है? एक पैसा ही कौन लगा
1: कौन लेगा
0: टीकाकरण को एक पैसा ही कौन
1: लगा तो कहीं किसी किसी रोगों को टीको है जो लागे आंग पहली
0: FMD बोलिया करे खुरपका मुंहपका और एक PPR आया करे।
1: अच्छा,
0: ये दो ही बीमारी का लागे
1: मोटी यही आवे
0: मोटी यही
1: जे ए मान लो बीमारी हो जावे तो पच्चे कहीं उपाय कहीं करो
0: पच्चे ट्रीटमेंट करना पड़े डॉक्टर साहब बुला।
1: अच्छा, ट्रीटमेंट करो?
0: हाँ, अलग भी जानवर ने अलग राख
1: हाँ
0: क्वारंटाइन कर दा अलग भी ने दूजा संपर्क आउंदा कोनी
1: हाँ
0: और डॉक्टर बुला ट्रीटमेंट ही कराऊंगा।
1: अच्छा अलग रखो,
0: अलग रखो,
1: अलग ही रखो भाई। आज छूत की बीमारी है,
0: बीमारी है।
1: दूजोड़ा नहीं हुआ,
0: दूजो नहीं।
1: तो इतनी बकरियां जो दूजे भी थे को दोष हो तो दूध दूधड़ो काटो कहीं करो बस।
0: नहीं दूध तो कौन काटा मांगे, बच्चे पाड़ा है।
1: अच्छा
0: बच्चा नहीं छूंगा वहाँ,
1: सब बच्चा
0: ज्यादा उज्जे तो काट लो बोले बाई चांस, और बाकी को नहीं जड़ते बच्चा छूंगे जड़ते।
1: आप के भी कई तरह का रोग रहे, देखो वो ताव आवे के गोड्डा कलडा दुखे, डेंगू उगो और बो दुखे, चिकन गुनिया उगो, तो भी टाइम है जो दूध के जयपुर जड़ा शहर में दिल्ली जड़ा में 200 रुपया लीटर बिक्यो, तो थारा टिकने एडो बिक्यो के
0: मां के मां बेचा को नहीं आवे के नहीं है, शहर नजदीक आएगो आवे जगन बोतल भर देता।
1: अच्छा
0: ले जाओ
1: खाली सेवा,
0: मोटो काम है, मोटो काम मेरे पास दूध वालों काम हुए को नहीं, मारे दूध वालों भैंसिया है ही बचे।
1: अच्छा भैंसिया काम है,
0: भैंसिया काम,
1: भैंसिया भी खास अधिक है, कच्चा जानवर है।
0: 20 भैंसिया है,
1: 20 है जने बकरियां और भैंसिया दोनों टाइम मिल जाए।
0: नहीं टाइम तो कम मिले, बाकी भैंसिया 2008 हुए पुराना धंधो है, वो तो बाहर बकरी फार्म है जी को तो 2024 में खोलियो।
1: अच्छा अच्छा तो इन खाता भैंसिया पहले खोल लियो, तो भैंसिया नस्ल चौकी दिखे मन की नस्ल की?
0: मुर्रा नस्ल की है, टोटल
1: मुर्रा नस्ल की। तो कहीं पहचान कहीं है मुर्रा नस्ल की खास?
0: मुर्रा नस्ल की तो खास आई है के सिंह छोटा हुआ,
1: ठीक है, इडोनियाल जी है,
0: इडोनियाल जी है, और भैंस है जी की पूरी सुई हुए कोई लद्दक वगैरह या पुटा डालू या इनको कोई को नहीं,
1: एकदम बराबर
0: बराबर।
1: तो कट्टू लाया भैंसिया
0: में? मैं तो अटू गाँव में भी खरीदी, हरियाणा में भी लाया।
1: एक जे पहले भैंस की बात करा तो मोल कत्तो कहीं वे?
0: अबे तो महंगी होगी, अबे 1.5 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया नीचे भैंसी को नीचे।
1: मुर्रा
0: मुर्रा
1: 1.25 लाख रुपया,
0: 1.5 लाख।
1: दूध कत्तो कहीं हुए?
0: दूध एवरेज 6 लीटर 7 लीटर 6 लीटर
1: एक टाइम। दूध भी चौक हुए
0: बढ़िया?
1: तो दूध को पचड़मान जी कहीं करो अटाजिया में कोई ले नहीं आता?
0: नहीं मैं दे रहा हूँ
1: नागौर ले जाओ।
0: नागौर
1: तो टाइम को कतो कहीं दूध ले जाओ?
0: टाइम को आपन को खुद को दूध है 100 लीटर।
1: अच्छा तो ले जा रहे नागौर दियो, और शाम का भी ले जाओ?
0: हाँ शाम का।
1: दोनों टाइम ले जाओगे एक टाइम?
0: दोनों टाइम।
1: अच्छा दोनों टाइम ले जाओ। तो भैंसा गायंग आम में भी जिया बीमारियां आवे तो थारे भैंसा के टीकाकरण वगैरह हाथ ही करो या?
0: हाँ बिल्कुल भैंसा का लगातार
1: लगातार
0: हर टाइम होता ही डॉक्टर साहब आ जाए।
1: अच्छा तो एक मायने लगाए दो, कई बार कहीं भी अगर भैंसा ब्यावे को नहीं रे गया बन हो रही गया गया पड़ जाए कर जाए तो भी टाइम में जो को कृत्रिम गर्भाधान वगैरह कहीं करो?
0: बिल्कुल करावा, हाँ सुई लगवावा डॉक्टर बुला
1: भी हूँ कहीं नस्ल सुधार?
0: नस्ल सुधार है, बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट है।
1: तो कितना महीना उठा पड़ जाएगा भाई आ सुई लगा दिया कामयाब होगी?
0: 2.5 महीना 75 दिन बाद में आप गणा भी भैंस चेक करवा सको।
1: अच्छा वो ठा कहीं पड़ेगा भी आईट में आएगी भी टाइम लगावा कोई बोले?
0: इनका बे लक्षण है बोलनगार यान गुम खुंटा मात बांधी बांधी गुम्बो करी फिर बो करी और ओगना ही यान देगी यान का लक्षण
1: तो आंके पास निरंतर नालो ओ मोटो होल गुणियोड़ा चारा को?
0: हाँ चारा भी स्टॉक है।
1: तो कुत्तरी है और की
0: बकरियां अलग है, भैंसियां कुत्तर है,
1: भैंसिया के ज्वार की बाजरी?
0: ज्वार की बाजरी को नहीं
1: तो इतनी तो भैंसिया ही जाके अब भी मोल लावनी पड़े आपने
0: सब चारों गुरु मोल लेवा।
1: अच्छा अगले लेने पर तो कुत्तर का जगह भाव बार कहीं चले?
0: कुत्तर बार 15-16 रुपए किलो है
1: जन तो अजवार की काशी महंगी चले और बाजरी वाली?
0: बाजरी की 1,000-1,100।
1: तो बकरियां तो थे को जी भाई गर्मी के मायने सहन कर ले गर्मी, भैंसिया ने देखी गर्मी कम सहन वे तो आरे पचे ओ यहाँ ओ लोग बनाएड़ो थे
0: प्रबंध करूड़ो है लगी लगा
1: भाई यहाँ पर्दा भी मंदी के
0: बनाएड़ा भी है फुहारा भी है ऊपर
1: फुहारा भी लगाएड़ा
0: हाँ फोगर सिस्टम लागूड़ा है और कूलर भी लागूड़ा है मोटोड़ा
1: वातावरण ठंडो
0: रहा वातावरण ठंडो रहा टेंपरेचर है जी को थोड़ा डाउन रहा।
1: तो जी हां अभी इतनी बकरियां हैं आपके और भैंसियां भी है तो जका भाई रेडियो होने तो बने भाई जी खेती के हाथ है तो और रोजगार करा जन सही रहे कि काई कहने चाहो
0: बढ़िया लागे जो कोई करनो चाहिए आदमी ने खेती के हाथ है
1: खेती के हाथ है
0: दोनों खेती का पूरक है
1: बिल्कुल पूरक
0: जब तक आगे बिना खेती पूरी नहीं है क्यों खेती 4 महीना होगा हमें बाद में खेती को ही अगलो जुड़ूड़ो धंधो है
1: भैया बार जी खेती है को नहीं की जन ई टाइम ओ धंधो
0: चल रहा है
1: तो जी टाइम खेती रहे भी टाइम पता आगे सार संभाल किया कहीं
0: बढ़िया हुआ खेती रहे जनाब क्यों के खेता में जावे घास वगैरह
1: अच्छा
0: और वो घास आपा नहीं तो निनान करा आदमी लेवा पड़ावा करा वो अन नांग देवा
1: तो हरमान जी अब कहीं विचार है आने वाला दिनांक में और बकरियां बदौन में हो कि कम करो कहीं
0: नहीं इतनी रहा का अच्छा। कम करा ने ज्यादा करा ये तो ही
1: अच्छा इतनी राख
0: हां इतनी राख
1: कुल मिला छो की नस्ल की राख रही है
0: बढ़िया राख रहे
1: और भैंसिया साथ साथ है और खेतीबाड़ी भी करो
0: खेतीबाड़ी
1: का ट्यूबवेल है कहीं
0: नहीं ट्यूबवेल तो मांगे पानी खा रहा है
1: अच्छा
0: और बाकी खेती तो एक बार ही है
1: तो एक बार खाली चौमासाड़ी
0: बो चौमासाड़ी
1: काई किसे फसल ले दे गो हम गणी वे
0: मूंग वे मांगे ज्यादा
1: मूंग ही बहुत खेता में गण करो
0: मूंग ज्वार
1: तो लारलो चोमासो केड़ो काई
0: बाजरी चोको बढ़िया शानदार
1: मूंग कता काई होगा
0: मूंग होगा मंग 50 क्विंटल और बाजरी होगी
1: 20 क्विंटल लिया कि हल्ला लिया
0: नहीं 12

0: डेढ़ कुंटल,
1: डेढ़ कुंटल होगा। और बाजरी,
0: बाजरी होगी दो ढाई कुंटल होगा।
1: बाजरी देसी थे कहेंगे आजकल तो
0: थैले ले
1: रहो कटू मत बाजारू ले
0: बाजारू
1: तो कई जी टाइम थैले ले ला जाओ पी टाइम थोड़ी की सावधानी रखो कहीं जानकारी थाने है गया कोई पक्को बिल लाओ करो कहीं
0: बिल तो लिया अबे दो तीन साल हुई पहले तो कौन लेता
1: पहले कौन लेता
0: अबे तो बिल लिया
1: क्यों लाओ कारण कहीं
0: कारण तो जानकारी में आवे आजकल है कि बीज है जी को नकली भी आने लागो और आगे के लिए प्रूफ भी आप जरूरी है कि भाई इन दुकान को खरीदियो आप वो बिल को प्रूफ है
1: भाई ऑल बस बस आगला दे
0: बस दे सके
1: वासावाड़ मान जी आज आप मिल रहे इतनी चोखी जानकारी दी भी आपने घणो घणो धन्यवाद
0: धन्यवाद।
2: तो वासावा विष्णु भाई देखो कि गोवारा पशुपालक है हनुमान राम जी और बकरी पालक है बहुत बढ़िया बात करी। तो देखो कि अब लाडले सप्ते आप एक सवाल पूछो भैया ने
1: सवाल पूछो सा बारानी खेती के मायने सब उपयुक्त खरीफ जी फसलां पावा बे कौन कौन से गणकरी फसलां बाजरी है मूंग मोट गंवार तिल है और लगो लग आज रो सवाल है कि बकरियां की कोई एक उन्नत नस्ल को नाम बताओ।
2: बिल्कुल साहब भाई देखो पड़ोत्र भेजेला और देखो कि आज अपन जी नागौर कृषि उपज मंडी है बिर मायने बाजार भाव इन मुजब रिया मूंग बिक गया 5,000 रुपये 7,600 रुपया तिल जका है काला तिल 8,000 ले 9,300 रुपये रिया
1: और सफेद तिल 9,000 10,000 जमारी बोली 3,000 4,500 लागी तो गंवार 5,000 ले 5,525 तई बिकी
2: और भाया तार में बिक्यो 4,900 ले 5,540 जीरा रा भाव रिया 14,000 ले 19,300 रुपया
1: दाना मेथी 5,000 5,750 इस गोली 11,000 13,800 और सूपरी बोली 7,000 ले 13,000 रुपया प्रति क्विंटल लागी
2: और चिणो बिक्यो 4,741 रुपया असलियार भावरिया 5,058 रुपया और सिंधी सो 6,071 रुपया ए तो नागौर कृषि उपज मंडी रा हाजरा भाव।
1: वाह सर देखो गणकरी बंतल वैर और भी करार मन भी है पर चौपाल री जकी रंगत है वा तो वा कोई गीत भजन सुई
2: देखो साके यानी खतरीदारी करनी पड़ी अपना जका हनुमान जी है तो इया वास्ते आज किशु भजन सुना रिया
1: तो आज शनिवार बाबा रो बार तो घेवरचंद चले रगाड़ो ओ भजन सुनावा।
3: लाल लंगोटा बाबा हाथ में गोटा गोटा

0: तो सदैव देखो भजन तो भयं ते पूग तो वियो और बात वे चालता चालता सीख दी। तो देखो दाव दना पाना है जगह भी है तो सार संभाल करें यहाँ ध्यान रखें, पर लूरी चपेट के मायने कोई भी अपा के पशु नहीं आवे, थोड़ी सी बांधन करण और पानी पीवन को पूरा ध्यान रखा मांगे।
1: और अब देखो कि झगड़ी निंदे का ना किसानों ने जो टाइम हुए पूरो तो आप सहदेव भाई
0: और विष्णु भाई ने दिलाओ सीख
1: राम
0: करा
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

किसान वाणी अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को फिल्म धड़कन में। प्रेम धवन के बोलों को संगीत से सराबोर किया था रवि शंकर ने। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आरजे महावीर के साथ। यह फिल्म संगीत की अगली पेशकश लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म मेरा गांव मेरा देश से।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म मेरा गांव मेरा देश में। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सराबोर किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लीजिए सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर के मिले जुले स्वरों में फिल्म आप आए बहार आई से ये नगमा।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म आपके दीवाने से, माफ़ कीजिएगा, आपके दीवाने फिल्म का नगमा। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सराबोर किया था राजेश रोशन ने। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का अगला नगमा।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार को फिल्म आपके दीवाने में। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सराबोर किया था राजेश रोशन ने। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत की अगली पेशकश में किशोर कुमार और लता मंगेशकर के मिले जुले स्वरों में फिल्म आपकी कसम का ये गीत।

यह है फिल्म संगीत की अगली और आखिरी पेशकश फिल्म स्वयंवर से। गुलजार के बोलों को संगीत से सराउर किया है राजेश रोशन ने और इसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने कुछ इस तरह से।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में फिल्म स्वयंवर का गीत। गुलजार के बोलों को संगीत से सराबोर किया था राजेश रोशन ने। और श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 103.7 MHz पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल।

जल ही जीवन है, इसका दुरुपयोग रोकिए, सदुपयोग कीजिए। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अहमद अली आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम हेलो फरमाइश में। तो शुरू करते हैं आज की फरमाइशों का सिलसिला और लेते हैं प्रोग्राम की पहली कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: मैं अहमद खान बक्कोसी से बोल रहा हूँ।
0: तो अहमद जी आप क्या करते हैं?
1: कुछ नहीं करते साहब, गर्मी पड़ती है, घर पर ही आराम करते हैं।
0: अच्छा, तो आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: मेरे हुजूर फिल्म का गाना है और रुक से जरा मका उड़ा दो मेरे हुजूर।
0: तो अहमद खान साहब आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर फिल्म मेरे हुजूर का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सर जी, नमस्कार
0: नमस्कार जी, बोलिए।
1: सर जी। मैं जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ सर,
0: कहाँ से?
1: पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से। सर
0: तो क्या करते हैं आप?
1: जी मैं तो अब सेवा मुक्त हूँ जी, बस आनंद लेते हैं जिंदगी का और गीत संगीत सुनते रहते हैं और
0: जी
1: मित्रों के पास बैठते हैं, बस गप्पे हाँकते हैं।
0: जी बहुत अच्छी बात है। तो आज आपने फोन किया है, कौन सा गाना आज सुनना पसंद करेंगे आप?
1: सर जी गीत है फिल्म अनोखी रात का,
0: जी
1: रफी साहब जी की आवाज है
0: जी
1: और थोड़ा सा मेरी इच्छा है कि मैं उसको गुनगुना के बता दूं।
0: जी बिल्कुल बताइए।
1: मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर
0: क्या
1: ली।
0: बात है, बहुत अच्छा बहुत
1: मिले
0: अच्छा।
1: न फूल,
0: ठीक है, तो आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे
1: हाँ
0: हैं?
1: जी, हम गांव थीला से उमाराम शेख बोल रहे हैं।
0: अच्छा, क्या काम करते हैं?
1: हम तो खेती का ही काम करते हैं, कोई ट्रैक्टर और चलाते हैं थोड़ा।
0: अच्छा, तो आप भी खेतों में क्या काम कर रहे हैं?
1: अभी तो बर्दाश्त आ गई, शीतर साल हो गया,
0: जी, अभी आराम कर रहे हैं।
1: आराम कर रहे हैं।
0: अच्छा, तो गाने सुनना पसंद करते हैं?
1: हाँ
0: हाँ, तो अभी आज के इस प्रोग्राम में कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: हाँ मैं नागर,
0: कौन सा गाना?
1: वो मेरे दिल का गिया करार कौन बजावे बांसुरिया।
0: ठीक है, तो आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर फिल्म नागिन का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ सर, मैं जान मोहम्मद बोल रहा हूँ। गाना सुनना है लवारी फिल्म का,
0: लवारिस फिल्म का कौन सा गाना सुनना चाहें?
1: जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों, लवारी
0: जी
1: फिल्म का गाना।
0: जी तो आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर लवारिस फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश। नमस्कार सर,
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा।
0: तो आप क्या काम करते हैं?
1: मैं रिटायरमेंट हूँ, इनकम टैक्स के सर 2 साल। गाना
0: जी, तो आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: सर सुना दीजिए। गर्मी का धूप, जेठ की दोपहरी में पांव जलत है,
0: ठीक है, तो आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर
1: गली
0: यह गाना।
1: नंबर 1।

0: हेलो फरमाइश। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: प्रेम कुमार प्रजापत बोल रहा हूँ, गांव चंपा से। जी,
0: क्या करते हैं आप?
1: दरी बनने का काम करते हैं।
0: नागौर के प्रोग्राम सुनते हैं कभी?
1: हाँ, नागौर का प्रोग्राम सुनते हैं ना सभी। किसान वाणी है आपका, हेलो गुरबंद है, हेलो फरमाइश है।
0: आज आपने फोन किया है, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: कुर्बान सिंह का गाना सुना दिए, तू
0: कौन सा?
1: जब जब मुझको पुकारे।
0: ठीक है, तो आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर ये गाना।

कहें, उनसे हमारी ये विनती है कि वे अब 2 महीने बाद फोन करें ताकि नए श्रोताओं को अपनी फरमाइश रिकॉर्ड कराने का मौका मिल सके। और चलते चलते आपको बता दें कि आज के इस प्रोग्राम में हमें तकनीकी सहयोग दिया जितेंद्र कुमार ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अशोक कुमार गोयल। तो दीजिए अगले प्रोग्राम तक अपने दोस्त अहमद अली को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों पर आधारित फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो फरमाइश। श्रोताओं, FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम चिरमी।

राजस्थान की कला संस्कृति अपने आप में जीवंत है, समृद्ध है। यहाँ का लोकाचार, यहाँ के गीत, यहाँ की वेशभूषा, खान पान, रहन सहन अपने आप में अद्वितीय है। बात करते हैं नृत्यों की, तो लोक नृत्य यहाँ के मशहूर है, पूरी दुनिया में प्रस्तुत है। ऐसा ही कुछ इस कार्यक्रम में चिरमी के साथ।

बात चिरमिरी करते हैं। एक छोटा सा पौधा है जिसके काले लाल रंग के बीज होते हैं, और ये पौधा लोकगीतों में चिरमिरी को एक मासूम लड़की की तरह माना गया है, प्रतीक के रूप में। जीवंत उदाहरण है, नव नवविवाहित लड़की अपने पीहर में आने पर विवाह के पश्चात चिरमिरी खेलती है, और इसी पर है ये गीत। अब प्रस्तुत है सीमा मिश्रा के स्वर में ये अगली प्रस्तुति, पीहू पीहू।

पियू पियू ये एक लोकगीत है जो कि विशेष रूप से प्रेमिका विरह और प्रेम के चित्रण के रूप में दर्शाती है अपने प्रीतम के लिए। प्रकृति का मानवीकरण दिखाया गया है जिसमें पक्षियों के द्वारा अपने प्रेम को इंगित किया गया है। कुछ ऐसा ही है अगले गीत में। FM 103.7 MHz पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम चिरमी।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम चिरमी। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पल में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार संध्या।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की

0: 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि ये सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल

0: 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और योग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए।

0: आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 9 बजे लीजिए सुनिए दर्द भरे गीत फिल्म संगीत में।

ये है फिल्म संगीत की पहली पेशकश, गुलाम अली के स्वर में फिल्म आवारगी से। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सराबोर किया है अनु मलिक ने।

FM 103.7 MHz पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत में दर्द भरे गीत। ये है फिल्म संगीत की अगली और आखिरी पेशकश मोहम्मद रफ़ी के स्वर में, फिल्म दो बदन से।

0: अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को फिल्म दो बदन में। शकील बदायूनी के बोलों को संगीतबद्ध किया था रवि ने, और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के अंतर्गत दर्द भरे गीत। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम।
1: का गाना आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में। शैलेंद्र के बोल थे सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में जिस शख्सियत की आज बातें हो रही हैं, उनकी कहानी शुरू होती है हिंदी सिनेमा के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर के साथ। वो एक्शन डायरेक्टर जिसने स्लमडॉग मिलियनियर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के स्टंट्स का डायरेक्शन किया।

आज के फनकार हैं इनके बेटे। हमने बात की जिस एक्शन डायरेक्टर की, उनका नाम है श्याम कौशल और आज के फनकार हैं इनके बेटे जाने माने अभिनेता विकी कौशल। रज रज

0: directa selfie, le le re.
1: फिल्मी दुनिया में बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है इस एक्शन डायरेक्टर का, लेकिन ये नहीं है हमारे आज के फनकार, हमारे आज

विक्की कौशल मुंबई के एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए। वैसे तो इनका परिवार पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था, लेकिन विक्की कौशल मुंबई के मलाड उपनगर में पैदा हुए, वहीं पर पले बढ़े। और असल में उनके पिता ने 70 के दशक से आगे कड़ा संघर्ष किया और वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर बन गए थे। जाहिर है घर में फिल्मों का माहौल था और इसीलिए विक्की कौशल को फिल्मों का माहौल घुट्टी में मिला था।

विकी कौशल की माँ वीणा एक गृहिणी है और इसके अलावा परिवार में एक भाई भी है सनी कौशल, जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और माय फ्रेंड पिंटू और गुंडे जैसी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। बहरहाल बातें विकी कौशल की हो रही हैं, उनके बचपन की हो रही हैं। हमने आपको बताया कि विकी का जो परिवार है वो मलाड में रहता था और बचपन से ही फिल्मों का माहौल मिला क्योंकि पिता थे एक्शन डायरेक्टर। बचपन से ही विकी कौशल के शौक थे फिल्में देखना और क्रिकेट खेलना। मुंबई में उनकी स्कूली शिक्षा जब हो रही थी तो वो छोटी छोटी स्किट्स करते थे, ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे और इसके अलावा फैंसी ड्रेस और डांस कॉम्पिटिशन में भी हिस्सेदारी किया करते थे। पिता ये सोचते थे कि बेटा टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाए, एक अच्छा इंजीनियर बने। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विकी कौशल ने आगे दाखिला लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और इस तरह से अपने पिता की इच्छा के मुताबिक वो बन गए एक इंजीनियर। एक आईटी कंपनी में विकी कौशल काम कर रहे थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी लेकिन मन में कहीं एक बेचैनी थी। बेचैनी का एक उबाल आया, उन्होंने ये महसूस किया कि ये वो काम नहीं है जो वो जिंदगी भर करना चाहते हैं, उन्हें तो फिल्मों में करियर बनाना है। थोड़े दिन उन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी और इसके बाद अपने पिता से कहा कि वो फिल्मों के सेट पर जाना चाहते हैं। थोड़े दिन ये भी किया और आगे चलकर मुंबई में किशोर नमित कपूर की एक्टिंग एकेडमी में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया ताकि अभिनय की बारीकियां सीख पाए। आगे चलकर विकी कौशल ने अनुभव हासिल करने के लिए नसीरुद्दीन शाह और मानव कॉल के थिएटर ग्रुप्स के साथ ड्रामा भी किया, रंगमंच पर भी सक्रिय रहे और फिर उनकी मुलाकात हुई अनुराग कश्यप से। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बन रही थी और इस फिल्म की यूनिट में विकी कौशल बतौर सहायक निर्देशक शामिल हो गए।

साल 2012 चल रहा था। गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 में विकी कौशल ने न केवल सहायक निर्देशन किया बल्कि छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। इसके बाद हुआ ये कि अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक नए निर्देशक नीरज घायवान को मौका दिया, जिसने बनाई फिल्म मसान। और इस फिल्म के जरिए विकी कौशल रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आए। एक ऑफबीट कला फिल्म में, बिल्कुल अलग तरह की फिल्म में, और उन्होंने अपनी जबरदस्त पहचान कायम की।

साल 2015 में मसान आई और साल 2016 में आई विकी कौशल की फिल्म रमन राघव। आज लोग इस फिल्म में उनके अभिनय की बहुत तारीफ करते हैं। साल 2015 में उन्होंने फिल्म बॉम्बे वेलवेट में भी एक छोटा सा किरदार निभाया था।

वैसे एक दिलचस्प बात आपको बता दें, साल 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक फिल्म बनाई लव शव तेज चिकन खुराना, इसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। 2016 में विकी कौशल की एक फिल्म आई जुबान।

2018 में विकी कौशल ने एक रोमांटिक फिल्म की जिसका नाम था लव पर स्क्वायर फुट। अब तक एक संवेदनशील अभिनेता के तौर पर विकी कौशल की अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी। फिर यूं हुआ कि एक जाने माने लेखक हैं हरिंदर सिंह का, जिनका नॉवेल कॉलिंग सहमत पढ़ा मेघना गुलजार ने, जो अपनी नई फिल्म के लिए कहानी की तलाश कर रही थी। मेघना गुलजार ने कॉलिंग सहमत पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राजी। राजी में विकी कौशल ने एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का किरदार निभाया था और आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया था। सहमत और इकबाल की शादी हो जाती है और उसके बाद घटनाक्रम कितना नाटकीय बन जाता है, इसी की कहानी थी राजी।

फिल्म संजू के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार उन्होंने अभिनेता गजराज राव के साथ शेयर किया था, जिन्हें फिल्म बधाई हो के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता माना गया था। साल 2018 में विकी कौशल ने काम किया फिल्म मन मर्जियां में।

0: साल 2019 विकी कौशल की एक फिल्म आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म में विकी कौशल ने विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया था। फिल्म उरी न केवल कमर्शियल सक्सेस की तरफ बढ़ती चली गई बल्कि इसने विकी कौशल का झंडा भी बहुत ऊंचा बुलंद किया।
1: जिद है मेरी दर्द

इसके बाद विकी कौशल सरदार ऊधम सिंह पर बनी फिल्म सरदार ऊधम में नजर आए। साल था 2021। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। साल 2022 में विकी कौशल की एक फिल्म आई गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म में उनकी सह कलाकार थी भूमिका पेडनेकर और कियारा अडवाणी। साल 2020 में विकी कौशल ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था भूत पार्ट वन द हॉन्टेड शिप। साल 2021 में विकी कौशल ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ से ब्याह रचा लिया। जिंदगी

0: विकी कौशल एक बहुत प्रभावशाली अभिनेता हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें विकी कौशल की फिल्मों का इंतजार रहता है।
1: कांधे पे सूरज

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता विकी कौशल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

अभी आप सुन रहे थे देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चरण से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10 बज चुके हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। कल सुबह ठीक 8:51 पर हमारी अगली